स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को

बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है। कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें। पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से, जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया
अब आप फ्री हैं। उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद
सुखद समय प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है। और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास। हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए? फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे,
सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी?

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: अरे अरे ए, ए, ए, ए, ए।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अरे तुम काका बताई भैया हमरा हाल का है।
3: बताए दे।
2: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

से भागम भाग के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी

0: वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है,
1: वो चंद्रमुखी है,
0: वो मृगनैनी है, वो रूपवती है,

0: So, भाई चलिए खई के पान बनारस वाला, वो भी मॉर्निंग मॉर्निंग, सुबह सुबह, और कब की सुबह, संडे की सुबह। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और देखिए ना भाई साहब, आज आ गया है संडे का दिन, और संडे मतलब वो दिन जब पूरी तरह से आप एकदम चिल कर रहे हैं, और एकदम चिल मूड में आप आज सब कुछ सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, कहने वाले हैं। यानी सब कुछ जो है वो आज एकदम चिल, आराम से रिलैक्स मूड पे जा रहा है। बट इसमें भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भैया आज ही सारा काम निपटा कर ही पूरा दम लेने वाले हैं। फिलहाल अगर आप भी उनमें से हैं, कहें तो चलिए आपको फास्टेस्ट डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर आप हैं हमारी तरह भाई चिल वाले, संडे मतलब संडे, तो अच्छी बात है। सो फिर आइए बताते हैं क्या है आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सो संडे का दिन होता है और सबसे बड़ा होती है बात कि भाई आज का दिन हम कैसे गुजारने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, आज का डे किस तरह से जाने वाला है, राइट? सो इसी पर आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो बयां कर रहा है. क्या बयां कर रहा है? सही जगह पर जितना वक्त गुजारोगे, सही जगह पर जितना वक्त गुजारोगे, भ्रामक और अशांत जगह पर वक्त गुजारना उतना मुश्किल होने लगेगा तुम्हारे लिए. जी हाँ, सही जगह जितना वक्त गुजारोगे, भ्रामक और अशांत जगह वक्त गुजारना उतना मुश्किल होने लगेगा तुम्हारे लिए. अब आप इस बात को फील करते हैं कि आप किसी जगह जब होते हैं अपने ही आसपास जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, सो वहाँ गुजारने के अलावा जब कहीं और रहने लगते हैं तो आपका मन उचाट होने लगता है. इवन मैंने तो कई बार सुना है कि यार हमको अब कहीं महफिलों में जाने का अच्छा नहीं लगता, हम घर पर ही ठीक है. सो इस तरह से न जाने क्यों हैं हम बदगुमान हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमने वक्त गुजारना शुरू कर दिया अपनी छत पर, हमने वक्त गुजारना शुरू कर दिया अपनी खिड़की के पास, हमने वक्त गुजारना शुरू कर दिया अपनी नॉवेल्स के साथ में, हमने वक्त गुजारना कर दिया है एक ऐसे पर्सन के साथ में जिसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल हैं. इस तरह की जगह, इस तरह की चीज़ें हमको भ्रामक जो होती है, जहाँ चकाचौंध है, पता है इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, पीछे कुछ और है, या बहुत ज़्यादा अशांत है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, जिसमें हासिल कुछ भी नहीं है, वहाँ फिर मन नहीं लग पाता, वहाँ वक्त गुजारना मुश्किल होने लगता है. अगर आप पीस के आदि हो जाते हैं, आप शांति के आदि हो जाते हैं, आप अपने एक रूम में भी आराम से सुकून से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं बहुत इत्मीनान के साथ में, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर जगह जाए ही जाएँ, हर जगह आप वैसे बन के ही रहें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. क्योंकि अंदर से जो आपका मन करता है वही सच है आपके लिए, पर हम अगर कोई भी चीज़ लेकर के ज़बरदस्ती करते हैं अपने साथ, सो वो फेयर नहीं है. यानी अंदर से जो फीलिंग आ रही है, जो महसूस हो रहा है, दैट इज़ द राइट थिंग. अगर अपने को हम मजबूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो वो रॉन्ग नंबर है, इससे बचना होगा. इसलिए अगर जिसकी आदत हो रही है बुक्स के साथ में, या उसको कुकिंग करना पसंद है वहाँ पर, या कोई फ्रेंड के साथ में, या किसी ख़ास इंसान के साथ में, या किसी ख़ास चीज़ के साथ में, किसी को डायरी के साथ में, किसी को छत के साथ में, कोई खिड़की के पास में, कोई अपने कमरे में, कोई ऐसा कॉर्नर है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप पहाड़ों में जाते हैं, किसी पीसफुल जगह जाते हैं और वहाँ आपको पीस मिलने लग जाता है, शांत जगह मिलने लग जाती है, उतना ही आप शहरों की तरफ, आप ट्रैफिक की तरफ, आप भीड़ में, आप चकाचौंध से बचने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आपको उसका मज़ा मिल चुका होता है. और इसका मज़ा एक नशा है, शांति भी एक नशा है. सुने होंगे सस्ते नशे बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन ये अजीमो तरीन नशा है, ये शौक है, ये बड़ी चीज़ है, ये ज़िंदगी का मज़ा देती है, इसका नशा है. और ये नशा मुझे लगता है आपको भी कर ही लेना चाहिए. पीस का नशा, शांति का नशा, आराम से बैठने का, सुकून से एंजॉय करने का नशा, यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे. सो आज का संडे का दिन है, वक्त है किसी ऐसी जगह वक्त गुजारिए जहाँ पर आपको पीस मिल जाए, जहाँ आप शांति महसूस कर पाए, आपको लगे ये जगह सही है, यहाँ मुझे सुकून है, यहाँ मुझे अपना पन लगता है, उस जगह वक्त गुजारना बहुत बेहतरीन है. सो थॉट कहता है, सही जगह पर जितना वक्त गुजारोगे, भ्रामक और अशांत जगह पर वक्त गुजारना उतना मुश्किल होने लगेगा आपके लिए. सो बता दिया मैंने आपको क्या कह रहा है आज का संडे स्पेशल थॉट. सो क्यों ना इस संडे को
एक ऐसे कॉर्नर पर आज 10 मिनट ही गुजारने की कोशिश करते हैं जहां हमको बैठना पसंद है, या जहां पर आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जहां बैठ के पढ़ा करते थे, या जहां से बैठ करके शाम देखा करते थे, या जिस जगह बैठ करके आप अपने फेवरेट कार्टून्स देखते थे या अपनी नॉवेल्स पढ़ते थे, या फिर कोई ऐसा गेम जो आप घर में ही खेल लिया करते थे, या किसी ऐसे शख्स से ऐसी जगह मुलाकात जहां आप अक्सर बैठे और आपको अच्छा फील हुआ हो। तो चलिए ये आज ज़रूर करिएगा और संडे को सच में कहीं ना कहीं आज का यादगार संडे बना करके अपनी पीसफुल जगह को ज़रूर जी लीजिएगा एक बार वापस से। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया गोंडा एफएम 99.6 एफएम गोंडा शहर की दरगाह विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

0: ऑल इज विल तो अक्सर आपने मूवीज में सुना होगा। वैसे मुझे लगता है कि कितना भी बुरा हो जाए, पर अगर आप हैं इस जहां में एग्जिस्ट करते हैं, तो सारी प्रॉब्लम का सलूशन एक ना एक दिन और एक वक्त के बाद जरूर मिल जाता है। फिलहाल एक बार वापस से हम भी मिल गए आपसे आपके मॉर्निंग वाले शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा वीडियो मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite RJ Adnan.

आपने ट्यून किया हुआ है 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से अपने कार में, अपने ट्रांजिस्टर सेट में, अपने सेलफोन्स में। इसके अलावा आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम को रेडियो गार्डन से, वर्ल्ड रेडियो से, कहीं से भी। इसके अलावा आप मौजूद हैं 89.6 एफएम की अपनी एप्लीकेशन से, जिससे आप डायरेक्ट जुड़ जाते हैं अपने विविड आरजे से एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि आप जो कुछ लिखते हैं वो सिर्फ लिखा नहीं जाता है, वो यहाँ मिल जाता है। सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं, और वक्त है उसी 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से जो लोग सुनते हैं और चैट पर आ करके लिखते भी हैं उसी ऑप्शन पे, सो यहाँ तक पहुँच जाता है। और कुछ मैसेजेस हमारे पास में आ चुके हैं आपके, चलिए हम बताते हैं किसने क्या कुछ लिखा है आज के मॉर्निंग वाले शो में। सो शुरू से शुरू करते हैं, और प्रबल मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। मनीष शर्मा मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। प्रीति शुक्ल जी फ्रॉम बहराइच से मौजूद है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, बोलते बोलते सच में लवली मॉर्निंग हो गई, क्या बात है। ऐसा अगर हो लाइफ में कि भाई आप जो बोल रहे हो वो बोलते बोलते हो जाए, तो मतलब आप जो है स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। सो मौसम विभाग को आपसे संपर्क करना चाहिए और आपकी हेल्प लेनी चाहिए, हम लोगों को भी, जिस दिन कहें कि आप बोलिए और सोचिए और हो जाए। नाइस। आशु मिश्र जी हैं फ्रॉम लखनऊ, आप लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। ज्योति मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग डियर सर, कैसे हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे। भाई अब प्रीति जी ने बताया है तो सच में डे तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है फिलहाल उस लिहाज से, थैंक यू सो मच टू यू। एंड हमारी अनुष्का जी हैं फ्रॉम श्रावस्ती, आप लिखती हैं गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ग्रेट डे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका दिन भी बहुत बेहतरीन हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और भैया हमारी सविता जी भी मौजूद हैं गोंडा से ही, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सो चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको थॉट ऑफ द डे के रिएक्शंस की तरफ, कि आप लोगों को थॉट ऑफ द डे कैसा पसंद है। वैसे तो आपने सुना और मुझे लगता है पसंद आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन आप सुनते हैं तो आप कहीं तो आप रियलाइज़ करते हैं, कहीं तो आप फील करते हैं, और ये बहुत ख़ास बात है अगर आप फील करते हैं, क्योंकि अपने लिए फील करना चाहिए दोस्त यार, ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन आया है वो आया है ज्योति सिंह की तरफ से, सुपर आउटस्टैंडिंग थॉट, थैंक यू सो मच की थॉट पसंद आया। प्रीति जी ने बहराइच से लिखा, आज का थॉट 100% प्रेरणा देने वाला औसम थॉट है, कुछ कुछ गोंडा एफएम से जुड़े रहना भी अपने मन को सुकून देने वाला भी सिद्ध होता है, क्या बात है, बेशक हो सकता है आपके लिए, एंड इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपको ये अगर फील होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। आशु जी लिखती हैं, राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, प्रकृति का साथ हो तो हर मोड़ पर सुकून मिलता है और मन को नई उम्मीद मिलती है, वेरी नाइस थॉट सर जी, बेशक सही कहा आपने, क्योंकि हम प्रकृति से ही बने हुए हैं, सो जब प्रकृति के आसपास रहते हैं उसको फील करने लग जाते हैं, बहुत कुछ हमको मिल जाता है। लिटरली परसों की बात है, मेरा एक भाई आया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, बिजनेसमैन है, उसके बाद जब हम लोग कुछ आउटर पे गए घूमने और लौटने के टाइम पे हमने झिंगुरों की आवाज़ सुनी, तो यही बात हुई कि यार कितना दिन हुआ इस आवाज़ को, पहले घर के आसपास आती थी, इसको सुनते थे, अब तो सालों साल हो जाते हैं आवाज़ आ ही नहीं पाती है, तो शायद वो आवाज़ अपने आप में एक नई ज़िंदगी देने का काम करती है, चाहे झिंगुरों की आवाज़ हो या ढलती हुई शाम में परिंदों का चहचहाते हुए घर जाना हो, या फिर आसमान में रंग बदलते हो, या पास से गुज़रते पौधों से आ रही खुशबू को महसूस करना हो, ये सब एक ज़िंदगी देने का काम करते हैं, बेशक सही फरमाया आपने। एंड इसके बाद जो है सविता दुबे जी ने भी लिखा है कि मैं आजकल सिलाई मशीन पर टाइम बिताती हूँ, मोबाइल से दूर होकर आज का सुविचार बहुत सही लगा, क्या बात है। सो सिलाई मशीन पे आप बैठ चुकी हैं और कई कपड़े आप सिल भी चुकी होंगी, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। एंड आज भी मेरे अपने घर में जो बहुत पुरानी सी सिलाई मशीन है, उषा कंपनी की आती थी, मुझे अभी भी याद है, उस पर लिखा हुआ था, इतना ही पढ़ ही पाते थे। सो वो
हमेशा से देखना, घर पे चलते रहना और उसे जो भी फटे पुराने कपड़े होते थे वो सही हो जाया करते थे। मतलब वो एक कह सकते हैं ना कि वो सिर्फ एक सिलाई मशीन ना होकर के वो एक जादुई मशीन थी, जिसमें हम अपनी फटी हुई शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, पैंट्स ये सब सही करवा लिया करते थे। सो लिटरली कुछ चीज़ें होती हैं जो मैजिकल होती हैं लाइफ में। एंड अनुष्का जी ने भी लिखा है, वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे सर, थैंक यू सो मच कि आपको भी आज का थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, अच्छा आपने कहा है आप भी, वैसे किस चीज़ में हम भी, ये बताइए प्रीति जी, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। एंड लिटरली बड़ा मज़ा आता है, मॉर्निंग का शो होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, हम सब लोग एक साथ आ जाते हैं गोंडा FM पर और एक फैमिली में हम बहुत एंजॉय करते हैं। और जब बात आती है संडे की, तो भाई आप सुबह सुबह करके रियाज़ भी कर रहे होते, क्योंकि पता है कि भाई हम छोड़ने वाले हैं नहीं, हम एक बार जाने से पहले कहेंगे अच्छा कुछ गाना चाहेंगे आप, कुछ सुनाना चाहेंगे आप, उसके बाद आपके भी मन कुचाले मारने लग जाते हैं कि आय हाय हाय हाय पूछ ही लिया, आखिर इसी का तो इंतज़ार था। तो चलिए अच्छी बात है, इसी का इंतज़ार है। ख़ुद को डेडिकेट कर सकते हैं आप, अपने किसी ख़ास इंसान को डेडिकेट कर सकते हैं, फैमिली को कर सकते हैं, किसी चीज़, शाम, दोपहर, दोपहर को तो खैर नहीं करेंगे मुझे पता है, सुबह को कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। मतलब अगर गाने का मन है, एंजॉय करने का मन है, बिना इस बात के कि यार क्या कोई जज करेगा, क्या कोई मुझे रियलिटी शो में सुन रहा हूँ, ना ना ना ना, रियलिटी शो में बिल्कुल नहीं सुन रहे, रियल जिंदगी में सुन रहे हैं। रियलिटी शो इज़ डिफरेंट थिंग एंड रियल लाइफ इज़ डिफरेंट थिंग। सो हम इस वक्त रियल लाइफ में हम तो बस गाते हैं, एंजॉय करते हैं और संडे को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बनाते हैं। और आज तो वैसे भी बहुत कुछ है आपके पास पहुंचाने के लिए मेरे पास। सो चलिए फिलहाल फिकर नॉट, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आज संडे है और आज तो वैसे भी टेंशन लेना बिल्कुल सख्त मना है, मना ही है। बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है 89.6 FM की तरफ से कि बिल्कुल भी आपको टेंशन ना लेना ही नहीं है।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

भाई साहब डेट पता है आपको, आज 31st मई हो गया, यानी मई लास्ट है, कल से जून स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मई के जाने से पहले, जून के आने से पहले, आज 31st ऑफ मई यानी 31 मई को एक दिन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम मनाते भी हैं। सो 31 मई को आखिर कौन सा ऐसा दिन है जो हम मनाते हैं और जो लगभग लगभग घरों की प्रॉब्लम्स है, चलिए देखते हैं कि भाई चैट बॉक्स पर आ करके आप में से कौन कौन आज 31 मई के एक ख़ास दिवस मनाए जाने को लेकर के जवाब देते हैं और बताते हैं ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के आज जागरूकता दिवस मनाया जाता है और लगभग लगभग घरों की प्रॉब्लम्स ये आ रही है। और ये बताना है आपको आपके अपने 89.6 FM के मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान को, कहाँ पर भाई, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की जिस एप्लीकेशन से आप सुनते हैं उसी पर चैट का ऑप्शन होता है, जिस पर जो कुछ लिखते हैं आप 89.6 FM के आरजेस तक लाइव पहुंच जाता है। और अगर अभी आप रेडियो गार्डन या फिर फ्रिक्वेंसी से ट्यून करके सुन रहे हैं और आपको नहीं पता कि भाई ये एप्लीकेशन कहाँ मिलने वाली है, सो जहाँ से दुनिया भर की एंड्रॉयड यूज़र्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, प्ले स्टोर वहाँ से, और आईफोन यूज़र्स की ऐप स्टोर से मिलने वाली है। करना इतना है कि आप अगर प्ले स्टोर पर जाते हैं या ऐप स्टोर पर और आप टाइप करते हैं RADIO स्पेस GYANASTHALI ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 स्पेस FM, सो आपको बाई ATC लैब्स डेवलपर के साथ मिल जाएगा। लाल और काले रंग में आपको इसका आइकन नजर आएगा जिसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद आप को चैट का ऑप्शन मिलेगा और उसी चैट पर जो कुछ मिलेंगे वो हम तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा और इस तरह आप दुनिया में किसी भी कोने से होंगे अनइंटरप्टेडली आराम से सुनते रहेंगे अपना कुंड वाणी कुंडा शो।

0: अरे भैया जो आज दिन है ना, ये खर्चे सिर्फ शनिवार शनिवार नहीं बल्कि एवरी डे कराता है। ये है ही ऐसा दिवस। फिलहाल हमारे दो होनहार लिसनर्स ने बता दिया है और बिल्कुल सही फरमाया है कि सविता दुबे जी ने कहा है तंबाकू दिवस है आज, और हमारी आशु जी ने लखनऊ से कहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। सो बिल्कुल सही फरमाया आप दोनों लोगों ने कि आज जो है वो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी तंबाकू ना खाने का दिन मनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाली आज नहीं खाना है, अरे इसका मतलब ये कि आज इस बात की इम्पोर्टेंस को समझो मेरे लाल, कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, किस तरह ये आपकी और हमारी लाइफ को बर्बाद करता है, और उनसे जुड़े हुए परिवार और लोगों और रिश्तों में भी ये खटास डालने का काम करता है। हालांकि इसमें खटाई नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर पावर ज़रूर होती है कि रिश्तों में खटास डाल दे।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, तो भाई आज तंबाकू निषेध दिवस है और आपको पता होना चाहिए कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दुनिया भर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस बहुत भयानक संकट को याद करने के लिए रुकते हैं। साल में 80 लाख से ज़्यादा जान लेता है ये तंबाकू। सरल सोचिए, सिर्फ तंबाकू जो है 80 लाख से ज़्यादा जान लेता है पूरे वर्ल्ड में। सो ये एक अभियान नहीं है, बल्कि ये इस बात को याद दिलाता है आज का दिन कि तंबाकू का इस्तेमाल आज भी दुनिया भर में जो डेथ के सबसे ज़्यादा रोके जा सकने वाले वजहों में से एक है, यानी जो वजहें हैं इतनी बड़ी डेथ के लेकर के, उसमें से सबसे बड़ी वजहों में से एक है तंबाकू का इस्तेमाल। और पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं कई सारे देश इसकी चपेट में है। इससे आज़ादी पाने के तरीकों को अगर समझा जाए तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता, और ये तरीकों पर आज ही बात होती है, यानी 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे पर ही होती है। सो 2026 की अगर हम बात करें, इस साल की थीम क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो वैसे इस साल की थीम जो है वो है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। ये है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 की थीम, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आकर्षण है, खींच लेता है तंबाकू खाने के लिए, इसका पर्दाफाश करना है। निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना है, उससे लड़ना होगा, क्योंकि जो लोग इसकी लत का शिकार हैं उनके लिए एक बार में छोड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि कई लाखों में ऐसे केसेस हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, वापस से वो नॉर्मल लाइफ में आए हैं और तंबाकू को उन्होंने हराया है, उसका मुकाबला किया है। जोखिम की बात तो देखिए, आप वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पहले से ही जानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ये किस तरह से छोटे मोटे जो इसके गुण हैं वो दिखने लगते हैं, लक्षण, और उसके बाद जो है ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और ये बहुत ज़्यादा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इवन कैंसर हो जाता है, और न जाने कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, मसूड़ों की बीमारी हो जाती है, मुंह का कैंसर हो जाता है, कोरोनरी हार्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत असर डालती है ना, और कहीं ना कहीं आँखों पर, गुर्दे पर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर, ये सभी पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल ई सिगरेट और वेपिंग के बारे में भी हम आपको सच्चाई बता देते हैं। अभी हाल के ही कुछ सालों में ई सिगरेट और वेपिंग जो उपकरण है उसको पारंपरिक तंबाकू के सुरक्षित विकल्प के रूप में आक्रामक रूप से प्रचारित किया गया, और ख़ासकर युवाओं यानी यंगस्टर्स के बीच में, और ये एक ख़तरनाक गलत धारणा है जिस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का विषय जो है इन उत्पादकों के आकर्षण को उजागर करना, सीधे तौर पर इन उत्पादों को आकर्षक बनाने और इनके जोखिमों को कम करने के आंकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो प्लानिंग्स हैं उनको पूरा करना है। सो तंबाकू छोड़ने के फ़ायदे, अरे जी बहुत फ़ायदे हैं जी आपके, तो आप खुद सही रहेंगे, राइट, बहुत अच्छे से रहेंगे आप। और अगर हम बताएं तंबाकू छोड़ना कितनी देर में कितना फ़ायदा होता है, सो अगर ऐसा मान लीजिए कि आप तंबाकू छोड़े हुए आपको जस्ट 20 मिनट हुआ है, तो आपकी जो हृदय गति है यानी जो दिल धक धक करता है और ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसका लेवल मेंटेन हो जाता है 20 मिनट के अंदर, अगर आप तंबाकू खा के छोड़ चुके हैं। 12 घंटे बाद जब इसका असर दिखता है तो ये पूरे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई हो जाती पूरे में। 2 से 12 हफ्तों के अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है,
फेफड़ों की जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ती है, जिससे क्या होती है कि बॉडी जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। एक साल बाद क्या होता है तंबाकू छोड़ने के बाद, आपको जो है वो हार्ट डिजीज़ का ख़तरा जो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है उसकी तुलना में आधा हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, जो लोग धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो आधा हो जाता है अगर आपने तंबाकू को छोड़ दिया है। एक साल का वक्त हो गया है, इसका असर दिखने लगता है आपकी स्किन पर, ये ज़्यादा चमकदार होने लगती है, चिकनी होने लगती है, बाल जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, रेशमी हो जाते हैं, दांत और नाखून पहले से ज़्यादा साफ और मज़बूत दोनों हो जाते हैं। 5 से 15 सालों के बाद क्या असर दिखता है कि स्ट्रोक का ख़तरा धूम्रपान जो नहीं करते हैं वो ना के बराबर हो जाता है, और वक्त के साथ में आपकी स्किन की उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है, तेज़ी से जो बढ़ रही होती है वो रुक जाती है, धीमे हो जाती है, उसकी लोच बढ़ जाती है, बाल मज़बूत बने रहते हैं, मसूड़ों की जो बीमारी है और आपकी जो स्किन डिजीज़ है, जो चमक फीकी पड़ना जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब ख़त्म हो जाती है जब आपको तंबाकू छोड़े हुए 5 से 15 साल के बीच का वक्त होता है। तो अब ज़रा सोचिए कि 20 मिनट के बाद से ही ये सारे असर नज़र आने लगते हैं और लगभग 5-6 साल बाद तक ये सारी चीज़ एकदम सही हो जाती है। तो एक तरह से ये खुशखबरी भी है, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। उनके लिए प्रॉब्लम है कि भाई अगर आपने शुरू किया तो सोचिए 5 साल का वक्त ले जाएगा और क्या क्या प्रॉब्लम दे जाता है। एक तो एक सामाजिक इमेज भी अच्छी नहीं होती है, दूसरा है कि भाई बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं जिसको नुकसान पहुंचाता है, तीसरा है हमारा पैसा भी खर्च होता है और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ये तो हम हॉस्पिटल जा कर के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई हॉस्पिटल से बचे रह गए तो समझ लो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, यानी सच में अगर कोई बहुत बड़ी दौलत है तो वो है हमारी हेल्थ, हमारी सेहत। सो आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हम 89.6 FM की तरफ से बोलते हैं कि भाई नो मीन्स नो, ऑफकोर्स इसको हराना है और हमें लोगों को भी जागरूक करना है ताकि वो भी इसे हरा पाने में और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या बात है भाई, क्या बात है। आपका स्वागत है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। भाई आपको पता है कि आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। सो आखिर हमारे आसपास पिछले साल भी हमने इस पर बात किया था, शायद कुछ लोगों ने इस पर कहा था कि हाँ वो काम ज़रूर करने वाले हैं। हो सकता हो सब में से किसी एक ने किया हो, कुछ लोगों ने किया हो और उसका कुछ असर ही सही लेकिन मिला हो। ये सब जानेंगे, साथ ही क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है हम देखते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ऐसी स्टोरी है जहाँ बदलाव हुआ है तो वो भी हम ज़रूर सुनेंगे आपके मॉर्निंग वाले शो में, जिसका नाम है
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

0: तो भाई चलिए देखते हैं कि कौन है आखिर कॉल इन प्रोग्राम में आज हमारे साथ पहले लिसनर, जिनको बात करनी है वर्ल्ड नो टोबैको डे पर। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: जी गुड मॉर्निंग, अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: आश मिश्रा
0: जी लखनऊ से। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका हम गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आज का विषय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है हर शख्स इससे रूबरू हुआ है, वो जानता है, भले ही वो इसके चपेट में हो या ना हो, लेकिन उसको पता है इसके बारे में। क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास दिन के बारे में?
1: अभी आजकल तो जो इतना तेजी से फैला है माउथ कैंसर,
0: माउथ
1: अपनी जिंदगी को साथ सब खिलवाड़ कर रहे हैं फिलहाल। किसी को भी कुछ भी समझाए, किसी को समझाए। फिलहाल घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, ना मायके में माई को ये टली खाता है, ना हमारे यहाँ हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की बात। हमारे बच्चे भी नहीं, हमारे हस्बैंड भी नहीं ऐसा कुछ करते थे।
0: जी जी जी।
1: और तो ससुराल में है, लेते हैं, खाते हैं, नहीं मानते हैं सर जी। जब हमारी शादी हुई थी, हम बहुत छोड़ाने की कोशिश किए, शादी की नहीं छूटी तो फिर नहीं छूटी सर। उसके बाद फिर अगर हम कुछ बोले तो हम गुस्से में जाते सर, इसलिए मैंने छोड़ दिया बोलना। सर जी खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी इंसान मारता है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है, परिवार को खाली परेशान करता है इंसान।
0: सही बात है। ये एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा जो होता है पैसिव स्मोकिंग। इसमें होता है कि आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई करता है तो मतलब ये है कि आप भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, मुझे तो बहुत नफरत है स्मोकिंग से, और मेरे बेटे को भी और बेटी को भी बहुत नफरत है। वो तो टोक भी देते हैं सर, अगर अगर कहीं हम गए हैं, अगर अगर कोई कुछ कर भी रहा है सर, तो ये बात है सर।
0: अगर कोई आसपास कर रहा है तो उसको टोक देते हैं?
1: बिल्कुल सर, बच्चे टोक देते हैं।
0: वाओ।
1: क्योंकि मैं तो जाके दूरी खड़ी हो जाती हूँ, मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है सर।
0: सही बात है।
1: बिल्कुल सर,
0: क्योंकि ये बात सच है, अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं और नहीं करना चाह रहे, लेकिन किसी के आसपास करने की वजह से बिला वजह आप स्मोकिंग ही कर रहे हैं, यानी ना चाहते हुए भी आप कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा गुस्सा आने वाली बात है, मतलब लिटरली। और कहीं ना कहीं उसकी स्मेल से कि कई बार लोगों को वॉमिटिंग होती है या बहुत बुरा लगता है, उनका जी मचलाने लग जाता है।
1: बिल्कुल सर, मैं घर में मिनट की सर बहुत पहले काम करती थी
0: जी,
1: तो वो पहले तो नहीं खाती थी तम्बाकू, लेकिन वो फिर खाने लगी। मुझे आंगन में मुझे मिला उसका तम्बाकू गिरा हुआ। फिर हमने बहुत सोचा कि कहाँ से गिरा, कहाँ कौन है घर में, कोई आई नहीं,
0: कोई आई नहीं।
1: फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई सामान गिर गया है कहीं, नहीं तो हम कहे देखो पहले कुछ गिर गया हो तो बताओ। अब हंसने लगी, फिर हम जान गए, हम कहे लो तुम्हारा सामान यही है, मेरे घर में ये मत करना तुम।
0: सही बात।
1: बहुत टोका मैंने उसको सर, लेकिन वो मानी नहीं सर। वो आज भी अब तो आती नहीं, मैंने छुड़वाई दी मैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल सर।
0: अच्छा,
1: काम स्वयं करते।
0: ये जैसे कुछ लोग गुटखा खाते हैं और वो जब आसपास रहते हैं तो उसकी स्मेल सच में बड़ी खराब होती है, मतलब मुझे भी लिटरली लगती है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: तो मतलब एक तो उनके होने से जो आपके पतनाले हैं वो सब लाल लाल हो जाते हैं, दीवारों और घर के कोने वगैरह। दूसरा ये कि वो कुछ छूते हैं या उठाते हैं तो उसमें भी उसकी स्मेल आ जाती है।
1: सर जी, मेरे घर में हमारे क्या होता है, जो मैं बच्चे के फूफा आए थे
0: जी,
1: वो लेते हैं तम्बाकू, वो आदत थी कि निकाल के मुझसे ऐसे फेंक दे। मेरा बेटा टोक दिया सर।
0: अच्छा,
1: अपनी बुआ से बोला कि हाँ बुआ जी, फूफा जी से कह दीजिए कि घर में ना खाया करें, बाहर कहीं भी खाया करें, मुझे पसंद नहीं। बिल्कुल
0: सही बात है। अच्छा, एक चीज अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है, तंबाकू का इस्तेमाल करता है और वो नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो आज से 10 साल बाद उसका क्या हाल होने वाला है?
1: सर वही हाल होने वाला है सर, बस मुंह का वो खराब हो जाएगा, मुंह दांत के सारे खराबी हो जाएंगे, बाद में झेलेगा और परिवार को भी झेलाएगा। बिल्कुल सर, अगर नहीं मानता है तो।
0: नहीं मानता है तो
1: जी बिल्कुल सर, हमारे जीत जाएंगे, वो भी खाते हैं, आप छोड़ दीजिए।
0: अच्छा
1: बिल्कुल सर,
0: कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी को डांटा हो या मतलब ऐसा समझाया हो, या तो वो उन्होंने खाना ही छोड़ दिया हो या तो आपके सामने खाना छोड़ दिया हो?
1: हाँ, मेरे सामने छोड़ दिया सर खाना।
0: अच्छा,
1: बाद में पीठ पीछे खाए तो क्या फायदा।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब हर कोई मैच्योर है, लेकिन कई बार होता है कि भाई आप खुद सामने से नहीं देख सकते कुछ चीजों को, तो
1: बिल्कुल,
0: आप कहते हैं कि मेरे सामने तो
1: मत ही करना। बिल्कुल, आप जाके और कहीं कर मेरे
0: साथ। सही
1: आजकल तो लेडीज है सर, लेडीज है, वो आता है गुल, उसके उसको करे बिना तो वो रह नहीं पाती है। जैसे तो नशा होता है,
0: वो भी नशा होता है। क्या लगता है आपको, सस्ते नशे में आता है वो? करेक्ट, सही बात है। लेकिन ये बड़ी अच्छी आदत है कि अगर बच्चे आपके और आप खुद भी ऐसा करते हैं कि जहाँ टोक सकते वहाँ टोक देते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है सही बात है। एंड मुझे लगता है स्मोकिंग करने वालों को भी और तम्बाकू इस्तेमाल करने वालों को सोचना चाहिए कि आप उन लोगों को भी परेशान करते हैं जिनको नहीं चाहिए होता है, उनको भी जबरदस्ती उन तक जाती चीजें। सही बात है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया और बड़े अच्छे से बताया भाई कि आप किस तरह से इसका विरोध करती हैं और किस तरह से आपके बच्चे भी वही फॉलो कर रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए आपका, थैंक यू। और भाई ये थी हमारे साथ में आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ, और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर कोई स्मोकिंग करता भी है तो वो टोक देती हैं सामने से, साथ में उनका बेटा हो या बेटी हो, वो लोग भी टोक ही देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार आपको बोलना ही पड़ता है, आप नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, वो बात ही नहीं हो पाएगी, इसलिए बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। आइए चलते हैं भाई अगले लिसनर की तरफ और देखते हैं कि उनके पास आखिर तंबाकू से जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं और कौन सी स्टोरी है जो आज वो हमसे साझा करने वाले हैं। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
0: जी, हाय, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम सविता दुबे, और मैं तंबाकू के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने एक बार पुलिस वाले को डांट दी थी, तंबाकू खा के मेरे को समझा रहा था।
0: पुलिस वाले को डांट दिया था? अरे वाह। अच्छा, क्या हुआ था, जरा बताइए स्टोरी पूरी।
2: असल में हुआ था कि हमारे घर वाले लोग टॉयलेट नहीं बना दे रहा था, मैंने इसके लिए तीन तीन बार कंप्लेन की, आया था पुलिस वाला, तीन तीन बार समझा के गया, तो मुझे उल्टा समझा रहा पुलिस वाला, तू अभी रुक जाओ, जब ये लोग जो जो कह रहा है वही मान लो। क्या असल में टॉयलेट बनाने का पैसा भी आ गया था, सब कुछ था, पर बना नहीं रहा था जानबूझ के।
0: अच्छा।
2: तो इसके लिए मुझे समझा रहा था कि थोड़ा दिन रुक जाओ, तो इसी बात पे मैंने पुलिस वालों को, पहले आप अपने आप को तो संभाल लीजिए, तम्बाकू खा के इस तरह से बोल रहे हैं आप, कौन सा अच्छा काम करे देश के लिए, और हमें बोल रहे कि आप टॉयलेट ना जाकर मैं खेत में जाऊँ, ऐसा बोली थी मैंने पुलिस वालों को, डांट दी थी, तो बोलेगा क्या उसको, मुँह चुप हो गया। और हमारे घर में हमारे पतिदेव और हमारे जो छोटा वाला जेठ, वो खई नहीं खाता है, इसके लिए मेरे हमारे बड़े भैया नहीं खाता है खई नहीं, कहीं भी जाएगा एक किलो खई नहीं लेके आएगा, मैं बहुत डांटती हूँ बड़े भैया को, इसको लेके बहुत हमारे घर में खई नहीं को लेके बहुत बातें सुनाती हूँ मैं। और हमें भी पान का नशा लगा दिया था, कई एक जगह दुकान से हमें पान ला ला के दे रहा था 15 दिन, तो लाल मीठा पान, हमने मीठा पान ला के दे रहा था और हम भी खा रहे थे। उसके बाद कुछ दिन बाद चला गया कहीं काम पे, तो मेरे को तो पान का नशा जैसा हो गया था, मतलब पान और पान का नशा, फिर बोले नहीं मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, पान खाना बंद कर दी।
0: सच में ये मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने एक तो पुलिसमैन को बताया भाई, समझाया कि वो ड्यूटी पे आके इस तरह से तंबाकू खाते हुए कैसे समझा सकते हैं, एंड दूसरा आपने भैया को लेकर के बताया कि किस तरह से आपने खुद को पान की लत से छुड़ाया है।
2: जी।
0: तो कौन सा पान खाते थे आप, सादा पान खाते थे या तंबाकू?
2: पान नहीं, मीठा पान खाती थी, हमें ला के देता था दादा पापा, जाता था दुकान पे तो मीठा पान ला ला के देता था, तो मेरे को खाते खाते आदत बन जाता ना कुछ भी चीज का, तो बन गया था आदत, मीठा पान खाती थी, उसमें भी तो सुपारी रहता है, ज्यादा क्या कहते हैं सब रहता, पर खाना नहीं चाहिए, जानती हूँ अगर नशा हो जाएगा तो आगे भी मेरे को नशा ही जैसा हाल हो जाएगा। तो फिर मैंने पान खराब बंद कर दी, तो दुकान वाला ही बोल रहा है कि अरे भाभी पान खाया करो, पान खाने से भूख बढ़ता है, होंठ लाल, वो अजीब अजीब बात कर, होंठ लाल रहता है, पान खाने से गला का आवाज अच्छा होता है। हम बोले नहीं खाना है पान, ताकि उसका लाभ हो रहा था ना, 5-5 रुपए मिल रहा था, खर्चा भी हो रहा है उसको, मिल जा रहा था इसके लिए।
0: सही बात है। अच्छा कई लोग ये कहते हैं सविता जी कि भाई उनको एनर्जी मिलती, वो खाते हैं तो काम करने की ताकत मिलती है, वो खाते ही नहीं है तो उनके अंदर ताकत ही नहीं आती। आप खुद एक महिला हैं, आप बाहर भी काम कर रही हैं, आप घर का भी काम करती हैं, आप कई जगह जाती आती भी हैं, आप अपने पति को भी सपोर्ट करती हैं, आप प्रकृति के लिए भी काफ़ी कुछ करती हैं। आप बताइए, क्या आपको कभी लगा नहीं कि भाई बिना तंबाकू के आपका काम नहीं चल पाएगा?
2: चल पाएगा, मन के जोड़ के आगे किसका जोड़ चलता है, किसी का जोड़ नहीं चलता है। हम बाहर भी आती जाती हूँ बस में, इसमें कुछ दिन पहले थोड़ा उम्रदार महिला थी, पहले तो आज की यहाँ पे हर एक महिला खा रही है, हर एक महिला मतलब जो हर एक महिला खाती है यहाँ पे, कोई कोई हो जो नहीं खाती है। आज की में वो सुपारी रहता है, पान रहता है, साथ में चून लगा के मैं देख रही हूँ, पहले पैकेट खा रही है सुपारी लिए, उसके बाद तंबाकू लिए, उसके बाद चूना मल रही है। और उन्होंने हमें पूछ लिया कि तुम भी लोगी, हमें खाते नहीं, हम खाली देख रहे कि इसमें इतना प्यार से उसको फाड़ा जा रहा है, मला जा रहा है, वो सोच के मेरा मैं सब खाती नहीं, जगह नहीं था ना, भीड़ था, तो बैठ गई, मजबूरी में बैठना पड़ा। मैं बोले ये सब चीज से हम बिल्कुल बिल्कुल बहुत दूर हूँ, क्या करूँ, मजबूरी था।
0: सही बात है। तो मुझे ये पूछना है कि सविता जी को ताकत कैसे मिलती है, क्योंकि वो तो तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करती हैं ना करने देती हैं, और लोगों का बहाना होता है कि भाई इसको खाते हैं तभी ताकत आती है, तो फिर आप कैसे कर लेती हैं?
2: मुझे ताकत आता है, मैं अपना टाइम बिताती हूँ बगीचा में, सुबह का टाइम मेरा काम है बगीचा देखना, पेड़ पौधों से देखना वहाँ पे, और मैं अभी कुछ दिन से मैं 2 मिनट एक ये बैठ के ध्यान करती हूँ, जोर से सांस लेना और धीरे से सांस छोड़ना।
0: क्या बात,
2: कुछ दिन से कर रही हूँ, और मैं पिछले साल से इस साल बहुत मैं अच्छी महसूस कर रही हूँ अपने तबीयत के बदले, ताकि वो जो था ना फैटी लिवर, वो सब शायद मुझे लग रहा है खत्म हो गया है।
0: वाह क्या बात है।
2: पहले थोड़ा भी काम करती थी बहुत थक जाती थी, अब बिल्कुल नहीं थकती हूँ।
0: आपको पता है कि आप एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए।
2: जी, और मैं आजकल थोड़ा मशीन में भी काम करने लगी हूँ, मेरे को ऑर्डर मिल रहा है कपड़ा सिलाई करने के लिए, ताकि मैं बचपन से ही सीखी थी, हमारे घर में था मशीन उषा कंपनी का, तो मैं आदत था, तो आज वो गोंडा वगैरह भी जाती हूँ वहाँ से मेरे को सिलाई का मिल जाता है ऑर्डर, तो वो भी करती हूँ, काम भी करती हूँ अपना घर पे टाइम से सिलाई। अरे घर का भी काम करके जाना पड़ता, नहीं तो चलता नहीं ना, हमें तो घर का काम आगे निपटाना पड़ेगा।
0: exactly.
2: और आपको भी सुनती हूँ,
0: ये भी एक काम हो जाता है।
2: हाँ, आपको तो सुनना ही पड़ेगा, ताकि आप काम को सकते हैं, आपको सुनना जरूरी है।
0: क्या बात है, मतलब घर का आप काम कर रहे हैं, आप मशीन पे काम कर रहे हैं, उसका भी आपको ऑर्डर मिल जाता है, आप FM भी सुनते हैं, आप लोगों से भी मिलते हैं, आप पति को भी सपोर्ट करते हैं, आप घर को भी देखते हैं, क्या बात है। मतलब सच में आप इतना सारा काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सीख है जो कहते हैं बिना तंबाकू खाए उनकी आंखें नहीं खुलती, तो ये देखो भाई किस तरह से सविता जी सब कुछ मैनेज करती हैं और कितनी खुशी खुशी करती हैं, उनको देख के और सुन कर ही इंसान तरोताज़ा हो जाता है। आप सच में एक प्रेरणा स्रोत है हम सभी लोगों के लिए, और आपने कॉल किया और ये सारी चीज़ें बताई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
2: शुक्रिया, सभी को शुक्रिया, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते। तो भाई ये तो थी हमारे साथ में सविता दुबे जी, जिन्होंने हमसे बातचीत किया, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी बातचीत हमारी सविता जी की। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है जिनको बताना है तंबाकू के विषय में, आखिर उन्होंने क्या देखा समझा है। हाँ जी हेलो जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को, ताकि हम आपका नाम बाकी श्रोताओं तक पहुँचा सके। एक सेकेंड, मुझे लगता है थोड़ा सा ओके। हाँ अभी आपकी आवाज़ आ गई जी, बताइए अपना नाम।
3: कह रहे हैं हमारा नाम वही है, बारिश हो रही है।
0: बारिश हो रही है तो जाहिर है आप अंबर हैं।
3: जी अंबर है।
0: कैसे हैं आप?
3: और सब बढ़िया, अपना बताइए आप कैसे हैं?
0: सब बहुत मस्त है, बस तंबाकू से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मतलब हम तो हैं ऑलरेडी काफी दूर। क्या हाल है आपका?
3: सब बढ़िया है, ना खाते हैं और ना खिलाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, लेकिन
3: और,
0: मुझे लगता है कि
3: और जिसको जिसको खाना है उसको लाख मना कर लो, कुछ भी कर लो, वो खाएगा ही खाएगा, वो छोड़ नहीं सकता है।
0: दोस्तों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपका कि खाते हो?
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा एक्सपीरियंस है, गंदा वाला एक्सपीरियंस है कि भाई साहब का इंतकाल हो गया, मरते दम तक वो खाते ही है।
0: अच्छा।
3: हाँ जब उनका इंतकाल हुआ उसके एक दिन दो दिन पहले उन्होंने खाया, कोरोना की बात है, हमारे बहुत मित्र थे, आरिफ नाम था। अब वो नहीं रहे, कोरोना में ही मुंह में अंदर तालू में कैंसर हो गया था और अक्टूबर नवंबर में पता लगा था, एक दाना था एकदम सरसों के दाने के बराबर उनको दाना हुआ था, वो इलाज कराए, डॉक्टर यहाँ बताया कि ऐसे नॉर्मल दाना हो गया है। और वो धीमे धीमे बड़ा होते चला गया, उसके बाद बनारस गए टाटा मेमोरियल में, वहाँ डॉक्टर बताया कि कैंसर है और मुश्किल से 6 महीना उनकी लाइफ थी।
0: और उसके बाद?
3: उसके बाद वो चले गए।
0: ऐसे
3: ये एक इंसिडेंट हुआ था मेरा साथ 2012-13 में, जब अच्छा। मैं दवा का काम करता था, वहाँ केमाल थे, वो अक्सर कहते थे, अब जब मिलते थे, अंबर भाई आपकी मसाला छोड़ देंगे, और छोड़ते थे, फिर पकड़ लेते थे 2-3 महीने में।
0: अच्छा
3: अच्छा, हुआ क्या, उनको पता नहीं क्या था, छोड़ते पकड़ते छोड़ते पकड़ते, और फिर उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा 2-3 महीने बाद उनको जीभ पे कैंसर हो गया।
0: अच्छा, मतलब ये जमान में?
3: हाँ जीभ में कैंसर हो गया, उनकी जीभ कट गई। उसके बाद वो 2-3 साल जिए होंगे मुश्किल से, उसके बाद वो भी चले गए।
0: इससे हमारे ख्याल से इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है, कितना भयावह।
3: अभी अभी एक लेटेस्ट इंसिडेंट पिछले साल हुआ, 2 साल पहले, हमारे यहाँ एक ठेकेदार आते थे, घर वगैरह बनाते थे, उनके जीभ में कैंसर हो गया, मसाला खाते थे, उनकी जीभ तो मतलब कटवा भी रहा है, ठीक भी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था फिर हो जाएगा आपको, पिछले साल उनको मतलब 1.5 साल में उनको दोबारा हो गया कैंसर।
0: 1.5 साल में दोबारा कैंसर हो गया?
3: हाँ वही जीभ में हो गया,
0: उसी जगह।
3: 3 इंसिडेंट तो मेरे उसमें ही है, आंखों देखा। और खाने वाले खाते हैं, लाख मना कर लो, उनको पता नहीं है क्या, हमारे समझाने से नहीं समझेंगे वो, उनको पता है कि खाने से में होता है कैंसर, लेकिन वो खाते हैं। पीने वाले पीते ही हैं, उनको पता है कि लीवर फट जाएगा, उसके बाद ही पीते हैं।
0: क्या लगता है अंबर जी, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके आगे वो हार मान रहे होते हैं और लगातार फिर भी वही करते चले जाते हैं, आपको क्या लगता है?
3: लत लगी है बस, और क्या ही कह सकते हैं।
0: लत का क्या कोई तोड़ नहीं है क्या, या कोई इलाज नहीं है क्या?
3: नहीं सर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सामने कई पीने वाले हैं, एक हमारे मतलब शॉप पे नौकरी करते थे, मुश्किल से उनकी आयु होगी 24-25 साल
0: जी,
3: 3-4 साल उन्होंने कंटिन्यू दारू पी, खूब पी, सो उठ के दादू और शाम तक सोते सुबह दादू, खाली पेट दादू, और चले गए। अभी 2 साल पहले 1.5 साल पहले चले गए वो। एक बच्चा था, वाइफ थी, छोड़ के सबको चले गए। पीने वाले पीते हैं सर, नहीं मानते हैं।
0: कोई तो ऐसा केस होगा जो चेंज होते हुए आपने ना देखा हो लेकिन सुना होगा किसी के मुंह से कि हाँ।
3: सर बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम गिनती के मिलेंगे जो छोड़े हैं।
0: अच्छा, तो क्या फर्क आपको लगता है, जो लोग नहीं छोड़ पाते उनकी तादाद ज्यादा है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जो छोड़ लेते हैं उनकी तादाद कम है, लेकिन हमको ये पता है कि हाँ वो छोड़ लेते हैं, क्या फर्क है दोनों लोगों में जबकि दोनों को लत थी?
3: अब कुछ सा दिमाग का भी खेल होगा, हम तो ये मानते हैं, जैसे हमारे पूरे घर में पूरे मतलब भाई पतिदार में कोई नहीं खाता है
0: जी,
3: और मामा के हमारे सब खाते हैं।
0: अच्छा,
3: कुछ दिमाग का भी खेल है ना, कि मतलब नहीं खाना है तो नहीं खाना है, कुछ भी हो जाए।
0: करेक्ट, सही बात है,
3: है ना। अब हमको कुछ भी है, मतलब खाए नहीं है, दोस्ती आदि में लोगों ने खिलाया बचपन में, उसके बाद नहीं खाया मैंने, शौक शौक में खाया 1-2 बार, उसके बाद नहीं खाया, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, कुछ भी हो जाए उसके पीछे, आप मुझको 1 करोड़ रुपए दे दो हम नहीं खाएंगे।
0: सही बात है।
3: और खाने वाले को 1 लाख दे दो खा लेगा,
0: बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है ये विल पावर का खेल होता है कि आखिर दो लोगों को लत होती है, एक छोड़ पाता है एक नहीं छोड़ पाता, ये विल पावर है। जब आप ये मान के चलते हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये ऐसा ही होता है, तो आप नहीं कर पाते हो,
3: नहीं कर पाएंगे। और चाह ले इंसान तो क्या नहीं कर सकता,
0: क्या नहीं कर सकता,
3: कोई भी उसके लिए प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छुटकी में सॉल्व कर सकता अगर इंसान चाह ले।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर चाह ले तो कर सकता है, क्योंकि उसको पता होता है वो उसकी चीज है, तो वो जब चाहेगा तब कर सकता है, उसके हाथ में है। सच बताया तो वो उसके हाथ में है,
3: उसके हाथ में ही है।
0: खाना नहीं खाना, देखिए आपके हाथ में था, आपके कई सारे फ्रेंड्स इसके लत का शिकार रहे, फिर भी आज तक आप इसके, और ना आपका पूरा परिवार रहा, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है विल पावर की बात है।
3: और सर जी परिवार छोड़िए, ये मेरी चौथी पीढ़ी है जो नहीं खाती है, मैं चौथी पीढ़ी में आता हूँ जो नहीं खाता हूँ। मेरे पिताजी नहीं खाते, मेरे बाबा जी नहीं खाते थे, मेरे बाबा जी के बाबा जी नहीं खाते थे।
0: क्या बात है, वाह,
3: ये चौथी पीढ़ी है।
0: मतलब
3: हो सका तो क्या पता आने वाली पीढ़ी भी ना खाए।
0: अरे वाह, नहीं बिल्कुल हो सकेगा, और मुझे लगता है इसको लेकर के बहुत व्यापक चीजें की जा रही है, और कहीं ना कहीं इससे दूर तो किया जाएगा अगली पीढ़ी को।
3: सर जी मानता कहाँ कोई है, सरकार कुछ भी कर ले, जब तक इंसान नहीं करेगा तब तक कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा।
0: वो तो हम ही और आपको करना होगा, जाहिर सी बात है।
3: और सरकार जैसे बैन भी लगा देती है तो क्या मिलता नहीं है, चोरी छुपे मिलता है। मिलता तो है, ये ब्लैक पे मिलता है। जनवरी में भाव बढ़ गया था, 15-20 महीना में मार्च फाल्टस था, 5 रुपए का मसाला 7 रुपए में, 8 रुपए में, 10 रुपए मिला, लोग खरीदे खाए। कोरोना में 5 का मसाला 25 रुपए मिला, 30 रुपए मिला, खाने वाले खाए।
0: वही है,
3: बताइए
0: खुद पे अगर आपको कंट्रोल नहीं है।
3: हाँ, खुद पे कंट्रोल नहीं है, किसी का खुद पे कंट्रोल नहीं है,
0: बस ये।
3: और इंसान करना भी नहीं चाहता है। कुछ लोग तो उसपे खाते हैं सर, कूल बनने के लिए खाते हैं, दिखाने के लिए कि हम देखो खाते हैं, कूल है।
0: करेक्ट
3: ना?
0: नहीं, जैसे आपने कहा करना नहीं चाहता, खैर इस बात को तो हम नहीं कह सकते। कुछ लोग चाहते हैं जरूर हैं, तो उसका भी कुछ सोल्यूशन होता है। जैसे कहते हैं लोग, कुछ लोग खैनी खाते हैं गुटखा, तो उसका सोल्यूशन बताते हैं कि च्युइंगम अगर आप अल्टरनेट के तौर पर आप शुरू करते हैं। तो कई लोगों ने ऐसे भी अपनी आदतों को रिप्लेस किया है, मतलब एकदम से ना छोड़ करके उसकी जगह कुछ दूसरी चीज ली।
3: वो करना चाहते हैं ना,
0: करेक्ट,
3: तो वो कर लेंगे। कुछ लोग वो गुल आता है, गुलमंजन करते हैं, आदत अपनी।
0: अच्छा,
3: उसको मसाला छोड़ के, तंबाकू छोड़ के गुलमंजन की आदत लगा ली है। आदत तो तंबाकू की लगी ना, क्या गुलमंजन नुकसान नहीं करती है? नुकसान वो भी करती है।
0: बिल्कुल सही,
3: नुकसान खैनी भी करती है। आदत तो आपने छोड़ के दूसरी लगा ली है, तो तंबाकू ही उसका दूसरा फॉर्म है।
0: हाँ नहीं, मतलब दूसरे फॉर्म का मतलब ये नहीं है, दूसरे फॉर्म का मतलब है कि आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते थे, आप च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते थे, ये इस तरह से।
3: आप इलायची, आप टॉफी खा लीजिए,
0: आप टॉफी खा सकते हैं, करेक्ट।
3: कई सोल्यूशन है, माउथ फ्लस में बहुत कुछ आता है, पास पास चुटकी है, सुपारी वगैरह, बहुत कुछ आता है बिना तंबाकू का। आप उसको, उसका सेवन करिए। आप
0: वही कह रहे हैं, धीरे धीरे करके आप ऐसा कर सकते हैं। एक साथ तो हम भी मानते हैं कि चलिए कोई चीज टफ है, बट आप धीरे धीरे करके रिप्लेस कर सकते हैं,
3: लेकिन बस सर माइंड का खेल है, अगर इंसान चाहे तो कर सकता है।
0: नहीं बिल्कुल सही कहा, वो उस बात से हम भी अग्रीड है, बेशक सही कहा आपने। एंड थैंक यू सो मच अंबर जी कि आपने कॉल किया और इतने विस्तार से अपने दोस्तों की कहानी से।
3: कॉल आपकी लगती कहाँ है, आपका तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, दो दो महीने बाद, तीन तीन महीने बाद नंबर आता है।
0: ये देखिए आपकी इच्छा थी इसलिए लग गई, अगर आप हार जाते इच्छा तो ना होता।
3: नहीं, हारेंगे तो नहीं, हारना तो कॉपी में लिखा ही नहीं है,
0: नहीं, तभी, लिखा ही नहीं है। तभी तो हमारी आपकी बात होती रहती है। बिल्कुल सही फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सो भाई जी,
3: हमें लग रहा है कि कुछ दिनों बाद अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
0: अरे ये कभी नहीं होने वाला।
3: अरे सर कब बात हुई थी आपको याद है हमारी?
0: इसकी कोई लत नहीं होने वाली है, इसकी कोई लत नहीं होने वाली, डोंट वरी।
3: नहीं नहीं, हमारी आपकी कब लास्ट टाइम बात हुई थी आपको याद है? हमें तो याद है।
0: अच्छा,
3: कम से कम हो गया 4-5 महीना पहले बात हुई थी।
0: कोई नहीं, अब होती रहेगी।
3: नंबर आएगा तब तो होगी।
0: नहीं नहीं, नंबर सिस्टम बिल्कुल नहीं होने वाला अप्लाइड। थैंक यू सो मच,
3: चलिए ठीक
0: है, बहुत शुक्रिया आपका जी। सो भाई, ये तो थे हमारे साथ में अंबर जी, जिन्होंने हमसे बातचीत किया। साथ में ही अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल आखिर किसकी आ रही है, क्योंकि आज का हमारा विषय जो है वो है तंबाकू पर हम बात कर रहे हैं, नो टोबैको डे मना रहे हैं आज। और ऐसे बहुत सारे हमारे गोंडा में, हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, इवन हमारे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी न किसी लत का, किसी नशे का शिकार हो जाते हैं, और स्पेशली अगर हम तंबाकू की बात करें। सो किस तरह से इसको छोड़ा जा सकता है, अगर आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी है तो आप बता सकते हैं, या अगर आपकी खुद की ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ अपनी स्टोरी साझा करिए, क्योंकि आज दिन है बताने का। हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, अपना नाम बता दें।
4: जी रईस बोल रहा हूँ, इंदा
0: मार्केट से। प्लीज़ थोड़ा सा आप उस डिवाइस से दूर हो जाए जहाँ से आवाज़ आ रही, क्योंकि फिर आवाज़ बार बार इको हो रही है।
4: जी साहब दूर हो गए।
0: ओके नहीं, दूर उस डिवाइस से होना, हमसे नहीं होना आपको।
4: नहीं नहीं, आप तो नहीं साहब, रेडियो से तो दूर हो गए।
0: बिल्कुल, कैसी है फैमिली आपकी?
4: एकदम अल्हम्दुलिल्लाह, आपको इतनी मुबारकबाद साहब।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
4: वालों को भी।
0: जी आपको भी। सो रईस जी, आज 31 मई है और हम नो टोबैको डे मना रहे हैं, यानी तंबाकू निषेध दिवस।
4: जी सर।
0: क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई रहा है जो कभी इस बात का आपने देखा हो कि भाई वो शिकार रहे हों, लेकिन उन्होंने खुद को इस आदत से निकाल लिया हो, या आपने कहीं कोई ऐसी मदद किया हो, या आप खुद इस चंगुल से बाहर निकले हो?
4: नहीं, मैं तो साहब इसको खाता नहीं हूँ और मैं इसके खिलाफ भी हूँ साहब।
0: अरे वाह।
4: क्योंकि जो मसाला जो खाता है
0: जी,
4: और जब आपने भी देखा होगा साहब कि जब खा के थूकते हैं बहुत ढेर सारा, कितना भद्दा और गंदा लगता है।
0: बहुत गंदा। बहुत सही बात कही आपने, बहुत भद्दा लगता है।
4: बहुत भद्दा और गंदा लगता है साहब।
0: सही बात है।
4: और मेरी जानकारी में जितने भी लोग हैं, शायद मैं अगर मैं ध्यान भी करूं
0: जी,
4: तो सब लगभग खा ही रहे हैं, जो मिलने वाले हैं, दोस्त यार हैं, जो काम करने वाले स्टाफ में से होते हैं, जो सिलाई करते हैं
0: जी,
4: या और भी लोग खाते ही रहते हैं साहब। लेकिन मैंने किसी को आज बहुत कम ही देखा हो, शायद मुझे ध्यान भी नहीं है कि किसी ने छोड़ दिया हो। हाँ, दोस्तों में से ये सुना कि हाँ भाई छोड़ रहा हूँ, कुछ दिन छोड़ा था और फिर खाना लग गए।
0: अच्छा, हो नहीं पाता है?
4: नहीं हो पा रहा सर। नहीं, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे सीरियसली।
0: वजह क्या लगती है आपको, क्या वजह होगी इसके पीछे?
4: दरअसल वो, हम इसको यही कहेंगे कि साहब उसके चंगुल में है, नशे में, और आलसपन है अंदर से, उनका मन नहीं है, जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं,
0: इच्छा
4: छोड़ दें इनको।
0: वही विल पावर, छोड़
4: दें साहब। सही
0: बात जी साहब,
4: छोड़ दें साहब इसको, छोड़ने की वही नहीं। और मैंने तो ये भी सुना है, सुबह जो खैनी खाते हैं
0: जी,
4: अगर माना सही ना खाएं तो जो दिमाग का उनका नेटवर्क है ना, वो काम करना ही बंद कर देता है।
0: वही मैं कह रहा था ना, कई लोग यही बोलते हैं।
4: जी साहब, अब पता लगे कुछ सर में दर्द हुआ, कुछ सर में दर्द है तो पता लगे कुर्सी खा लेंगे वो, चूना उना मिला के ठोक पीट कर, तब उनका दिमाग शांत हो जाएगा साहब।
0: दिमाग शांत हो जाएगा, सही बात है।
4: और बहुत से तो ऐसे भी है खैनी वाले, माफ करना, जब सुबह जाते हैं वो मतलब मॉर्निंग में बाथरूम, तो खैनी खा के जाते हैं, बोलते हैं कि प्रेशर आता है, ये उनकी।
0: सही कह रहे हैं आप। मुझे ये जहाँ तक पता है कि भाई ये दिमाग पर जाकर जो असर करता है, क्योंकि ये नशा होता है, कहते हैं कुछ देर के लिए हैंगओवर चढ़ता है तो वो मज़ा देता है, लेकिन वो मज़ा एकदम लाचार कर देता है। मतलब आप सोचिए कि आप अपने मन के मालिक नहीं रह जाते, आप जान रहे हैं कि आपका पैसा जा रहा है, आपकी चीज़ें ख़राब हो रही है, सामाजिक इज्जत घट जाती है, लेकिन उसके बावजूद इंसान नहीं कर पाता है।
4: जी सर, बिल्कुल सही बात।
0: और आपने खुद को कैसे बचाए रखा, हम ये भी जरा जानना चाहेंगे।
4: दरअसल साहब, शुरुआत में जब मतलब युवा था मैं, तो मैंने भी जैसे कि खाने की कोशिश की, तो जब आप शुरुआत में उसको खाएंगे, अगर आपने खाया होगा, तो बहुत ज्यादा कड़वा और करछा, मतलब कर्स मारता है, बहुत टेस्ट अजीब सा लगता है।
0: अच्छा।
4: और घूमेगा सर आपका, सर जरा सा सर आपका जो घूमेगा, तो मैंने जो मतलब ट्राई किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर अंदर से मन भी नहीं हुआ खाने के लिए सर।
0: मतलब आपने सोचा होगा ऐसा कौन सा टेस्ट है, दुनिया दीवानी हो, इतना गंदा टेस्ट है इसका, बताओ। इसके पीछे लोग दीवाने
4: हैं। जी सर।
0: क्या बात है। तो आपने तो टेस्ट भी बता दिया कि भाई ईमानदारी से आपने ट्राई किया था, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज से आज दूर हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
4: जी सर।
0: अच्छा, अगर कुछ आपको करना होगा इसको लेकर के, मतलब तो आपको क्या लगता है, आप क्या कर सकते हैं, जो आपके बहुत खास लोग हैं उनको क्या कह सकते हैं इसके बारे में?
4: उनको यही कहना चाहेंगे कि साहब देखो ये आपका खुद का पैसा जा रहा है और आप खाते हो, सामने वाले को अच्छा भी नहीं लगता है, फिर खा के सूखते हो बदला भी लगता है, तो बस इसको छोड़ दो आप, इसके जगह कुछ बदलो, इलायची खा लो, चिंगम खा लो, और एक प्रचार भी आता है निकोटेक करके, कुछ बताते हैं कि हमें आप पर यकीन है, आप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, तो उसको ट्राई करना चाहिए, बदलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जब तक इंसान जिंदा है कोशिश करे और बदलने की कोशिश करे, क्योंकि हमसे मतलब है वो मसाला ना कि मसाले से हम है।
0: क्या शानदार बात बोल दी कि भाई जो मसाला है, जो गुटका है, वो हमसे है ना कि हम उससे हैं। वाओ, बहुत प्यारी बात कही, बहुत प्यारी बात कही आपने। थैंक यू सो मच रईस जी कि आपने कॉल किया और आप इस चीज से दूर हैं, इस बात को भी बताया आपका, और हम दुआ करते हैं कि आप
4: मुर्शिद
0: हो। जी लत थोड़ा कम हो गई है,
4: बहुत दिन हो गया।
0: खुश रहिए, हमारी दुआ है आपके लिए।
4: थैंक यू, शुक्रिया
0: सर। थैंक यू सो मच। सो भाई ये तो थे रईस जी जिन्होंने हमसे बातचीत किया, और लगातार हम बातचीत आपसे करते जा रहे हैं, जाने की कोशिश करते जा रहे हैं कि भाई आपके आसपास कोई ऐसा है या आपकी कोई खुद की स्टोरी ऐसी है तो भी आप हमको कॉल करके बता सकते हैं। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस से आएंगे तो हम लेते हैं आपकी कॉल्स लगातार।

0: हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं। और आज का विषय बड़ा ही ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कौन है। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम आपका क्या नाम है? अरे दीपांशी नाम, हमें लगा गुटका भाई करके आपने बताया। हमें लगा ये कौन सा नाम, हमें लगा गुटका भाई बता रहे, मेरा नाम गुटका भाई है।
1: नहीं, मेरा नाम है शर्मिली जी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए फिलहाल दीपांशी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। द लाफिंग दीपांशी, हंसने वाली दीपांशी आ गई है। दीपांशी आपका वेलकम करते हैं। और आज का विषय आपको पता है ना कि आज हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहे हैं। ओके, सो एक मूवी में एक डायलॉग था, सुना होगा।
1: कौन सा?
0: भारतीयों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा।
1: पता नहीं सर, मैं देखती नहीं।
0: बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसी मूवी और ऐसे डायलॉग और ऐसे सीन नहीं देखते। वैसे आपके आसपास में कोई ऐसा है जो इस लत का शिकार है, या कभी आपने किसी को?
1: मेरे पापा, मेरा छोटा भाई।
0: अच्छा, पापा और छोटे भाई दो लोग इस लत का शिकार हैं।
1: और छोटे भाई को तो मैंने बहुत मारा डांटा, लेकिन वो मानता ही नहीं है। पापा की तो ड्राइवरी करते थे, तो उनकी अब मानो उम्र हो चुकी है, उनका क्या।
0: ओके, तो पापा की तो आपने कहा कि भाई एक एज हो गई है जिनके लिए सच में काफी मुश्किल है, चैलेंजिंग है, ये मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन भाई जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: तो क्या कर सकते हैं, वो किसी से डरता नहीं है और चुपके चुपके खाता था। जब मुझे पता चला तो मैंने डांटना और मारना शुरू किया, तो मम्मी ने बोला तुम मत बोलो, रहने दो, पापा आएंगे संभालेंगे। पापा से चोरी चोरी करके खाता रहता था, वो भी ड्राइवरी सीखने लगा। और उसी चक्कर में देखो सर, बच्चों को बर्बाद करने वाले बहुत है गाँव में, लेकिन अच्छा ही दिखाने वाले कोई नहीं है।
0: Correct.
1: तो संगत, वो जो कहते नहीं, जैसी संगत वैसी मंगत, तो संगत की असर हो गई भाई इस पर।
0: तो आपकी संगत का असर कहे नहीं, वो कुछ नशा करने से अच्छा कुछ हंसता रहता आपके साथ में अपना बढ़िया आराम से।
1: हमारे घर में सबसे ज्यादा हमें ही हंसने वाले
0: बहुत अच्छी बात है भाई, अगर ऐसे पागल होते हैं लोग तो फिर तो हर घर में एक होना चाहिए, ताकि हर घर का खुशी वाला माहौल बना रहे।
1: हमारे साथ लोग पढ़ती हैं, लड़कियां जब मिलती हैं तो कहती हैं, मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद में पता चल जाता है मेरी कानी उंगली के बराबर भी नहीं है।
0: ऑलराइट,
1: जो मस्कुल, जो मजाक, जो फीलिंग हमारे अंदर रहती है ना, उनकी फीलिंग बदल जाती है।
0: अच्छा,
1: और मैं तो जैसी हूँ वैसी रहती हूँ, मैं पता नहीं कब बदलूंगी या नहीं बदलूंगी, ऐसे मर जाऊंगी।
0: कैसी हैं आप?
1: मैं आपको तो महसूस हो ही रहा होगा मैं कैसी।
0: हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, हम बस पूछ रहे हैं।
1: समझ में नहीं आता सर, कैसी हूँ मैं खुद।
0: अच्छा, मतलब वैज्ञानिक अभी रिसर्च कर रहे हैं, राइट? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो एक कोच का विषय है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो लोग सच में सुन रहे हैं इस शो को और छोड़ना चाहते हैं, इस लत से दूर होना चाहते हैं, दीपांशी को क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे?
1: मेरा मानना ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि अब तो चिकन भी आने लगा है, संक्रमण भी आने लगा है, खाने के लिए, तो जैसे आप तम्बाकू हर वक्त चबाते रहते हैं, तो आप फिर ले लीजिए, कुछ खाने के लिए अपने बगल में रखिए, उसे जैसे आपके अमल है उसे खाने के लिए आप उसे खा लीजिए। आप डायरेक्टली तम्बाकू मत छोड़िए, क्योंकि कुछ भी कोई चीज की लत होती तो तुरंत नहीं छोड़े जा सकते हैं। धीरे धीरे करके आप कोशिश कीजिए कि आप जैसे आपका मन कर रहा है गुटखा खाने, तम्बाकू खाने का, तो आप कुछ और खा लीजिए उस वक्त, थोड़ी देर के लिए आपका मन मान जाएगा। आपका बहुत मन कर रहा एक बार खा लीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे करते करते ऐसे छोड़ जाए। और तम्बाकू की रही बात तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, मैं बचपन से खतरनाक थी। मैं चौथी या तीसरी ऐसे में थी जब पढ़ाई कर रही थी, मैं तो एक टीचर थे हमारे, तो मैं लंच कर रही थी, वो गुटखा खा के आए मेरे सामने थूके और वो इतना डंडा मुझे लगा, गरम गरम पैड़ी बनी थी मैंने उसके मुंह पर मार
0: गरम गरम पैड़ी मुंह पर मारती, ओह माय गॉड,
1: और मार के उसको पीन हो गई। आज तक उन्होंने सर ने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया, मिल गया तो मुंह घुमा लेते
0: तैड़ी याद आ जाती होगी, तैड़ी का आलू फंस गया होगा मुंह में
1: अगर वो दिन याद करती हूँ सर ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या होता अगर कोई खड़ूस आदमी होता तो
0: सही बात है
1: इतना मतलब सच में सर अक्सर मैंने उस वक्त, मुझे फिर मम्मा की याद है, अगर मम्मी पापा हमारे यहाँ होते मैं तो गई
0: करेक्ट
1: लेकिन सर वो मुझे मैं खाई, खाते वक्त चाहे गुटखा खा के थूको या वैसे थूको, सबको अजीब लगता है सर। तो मेरे अंदर खूबी यही है कि अगर मैं खा रही हूँ तो कोई गंदी चीज नहीं, कोई ना ही कुछ बोले और ना ही इधर उधर की कोई एनर्जी का, ना ही थूके और मेरे आगे से कोई थाली हटाले
0: थाली हटाले तो उसका क्या होता है
1: अटैक
0: 3-2-1 खत्म। चलो भाई, अब कभी भी मिलना दीपांशी से तो थाली और खाने के ऊपर कभी कुछ मत कहना, नहीं तो अटैक हो जाएगा आपके ऊपर। करेक्ट,
1: क्योंकि हंसना और मेरी जिंदगी है,
0: हंसना और खाना बहुत अच्छी बात है भाई। जो आप हैं, आप वैसे खुद को एक्सेप्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी लाइफ में दो ही चीजें, हंसना खाना और खिलाना।
0: हंसना खाना खिलाना क्या मतलब, क्या खिलाना?
1: अरे जो मैं कुछ भी खाती हूँ तो सबको शेयर कर देती हूँ, मेरी बचपन की आदत।
0: अच्छा, बचपन की
1: आदत। आजकल के बच्चे जो होते हैं वो तो कुछ भी नहीं देते हैं, छोटे से नहीं देंगे, बड़े हो जाएंगे ऐसे खा लेंगे खुद, और जो बैठे हैं वो डांटते रह
0: जाते हैं। आप डांट खाते हो तो भी खिला देते हो दूसरे को? अच्छा, तब ठीक है। मुझे पूछना था, जैसे आपने कहा था कि कोई च्युइंगम खा सकता है, कोई इलायची खा सकता है, अगर कुछ ना मिले तो कोई डांट खा के भी मसाला छोड़ सकता है अपना?
1: नहीं सर, तमाकू, तमाकू कोई अच्छी चीज है, सब कैंसर हो रहा है, देख रहे हैं कितने लोग मर चुके हैं उसी के वजह से, परेशान है। तमाकू के लिए आप जैसे 1 रुपए का 2 रुपए का जो भी आता हो, तमाकू आते हैं, अच्छी आते हैं, लेकिन उतने की टॉफी भी आती है, इलायची भी आती है,
0: सस्ती तो आती है, बल्कि सस्ती आती है।
1: हाँ, आपको वो नुकसान भी नहीं करेगा।
0: करेक्ट,
1: आपकी आदत भी छूट जाएगी,
0: आदत भी छूट जाएगी। और फिलहाल ये दुआ है दीपांशी की भी और हमारी भी, कि अगर ऐसे कोई लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं तो जरूर छोड़ें, उनकी विल पावर उनको बस बस मजबूत करना है। थैंक यू सो मच दीपांशी की, आपने कॉल किया और इतने प्यार से सारी चीजों को बताया, थैंक यू। सुबह ये तो थी हमारे साथ में दीपांशी, और अब हम चलते हैं अपने अगली कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो,
2: गुड इवनिंग सर जी, हम
0: गुड आफ्टरनून,
2: गुड इवनिंग,
0: आपने तो शाम का शो कर दिया, अभी तो मॉर्निंग चल रहा है
2: सर, क्या करें आप, इतना दिन से हम लोगों को मौका दे रहे कि आपसे बात करें, और कभी कभी मेन डे पे हम भी बात करें तो आप मेरा कॉल ही नहीं रिसीव करते हैं।
0: अरे क्या बात कर रहे, बिना कॉल रिसीव हुए कैसे बात हो रही है आपसे नहीं, वैसे भी करने वाले थे, आप तक आने ही वाले थे। सो कैसी हैं आप?
2: सर अच्छे ही हैं सर, अच्छे भी नहीं भी सब।
0: क्या हो गया
2: घर में? जब घर में तवे को खाने लगे हैं तो भुक्त भोगी साथ में हम भी होंगे, भुक्त भोगी सर।
0: हाँ ये बात तो है, जैसे अभी अब हम लोग बात कर रहे थे कि कोई और यूज करता है लेकिन इसका असर किसी और पे भी पड़ता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप?
2: मेरे घर में मेरे जेठ जी को हुआ था 2017 में, तो मैं टाटा में करा के आए, अपना ठीक ठाक है, चल रहा है, 2-3 चेकअप पे जाते हैं साल डेढ़ साल पे। अगर मेरे हस्बैंड इतना देखने के बाद भी वो वकालत पैसा ही सर ऐसा है कि वहाँ फिर सर खाते ही है, उनको चाहे जितना समझाओ उल्टे ही अब बोल देंगे, तो क्या कहें सर।
0: तो आपने कभी कहा नहीं कि हम आपके खिलाफ केस लड़ लेंगे अगर ये सब आप नहीं मानेंगे तो?
2: सर ये है तबेको, किसने बनाया तबेको, उसके हाथ और माइंड दोनों डेड हो जाएं, मेरे घर में उछल पुछल मचा रखने वाला तबेको।
0: नहीं सच में, मतलब ये तो बात आपने बिल्कुल सच कहा, ये हंसी से अलग, मतलब ये बहुत सीरियस मुद्दा है कि कितने लोगों की लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ता है।
2: क्या कहते हैं कि हमने खुद बहुत जब से हम शादी करके तब से खा रहे समझाया कि हम भी खाएंगे, लेकिन माने ही नहीं, हम भी खाना शुरू कर देंगे लेकिन नहीं माने, अनप तनप बक देते तो हमने छोड़ ी दिया। क्या सुने, वकील है, उनको समझा कोई नहीं पाएगा। सर इतना होने के बावजूद उन्हें 2019 में वो हुआ था, क्या कहते हैं, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया था और उन्हें छल्ला भी पड़ा, तो उसके बावजूद वो खाने, बताइए हम क्या करें।
0: ये बात तो सही है।
2: अब क्या उनसे, जैसे कुछ उनसे लो पंगा तो फिर अनाप तनाप सुनो। सर पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पर्सन को समझाना और मुश्किल होता है सर, मेरे पढ़ने
0: पढ़ाने तो सही का। नहीं नहीं ये बात बिल्कुल सही का, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है कि भाई हर आदमी को फिर लगता है कि अरे मैं यार मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे तुम क्या बता रहे हो, बट ये कहीं ना कहीं और गलत हो जाता है कि आप गलत चीज़ों को कैसे प्रमोट कर सकते हो, कोई भी हो।
2: सर सर मेरे फादर इन लॉ तो टीचर थे इंटर कॉलेज में, वो नहीं खाते थे, मेरे बाबा ससुर भांग जो होता था खाते थे, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक रहे तब तक ठीक ठाक रहे, लेकिन अब ये मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड को पता नहीं कैसे लत पड़ गया, और चाहे जितना भी हमने कोशिश किया नहीं छुड़ा पाए सर, तो क्या करें।
0: देखिए एक चीज जैसे कहते हैं ना लोग कि उन्होंने खाया उनको कुछ नहीं हुआ, बात कुछ होने की नहीं है। अगर कोई नशा कुछ भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति से कमजोर हो चुका है, तभी वो उसको हावी कर रहा है, तभी उसको किसी और चीज की सहारा लेना पड़ रहा है।
2: घर में जेठ जी भी खाते थे, उनको ये प्रॉब्लम हुई, उसके बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली, कचहरी में क्या इतना मौके लाते हैं, खिला दिए, ऊपर का मिल गया खाने को, छोड़ना ही नहीं है, घर में कोई कुछ भी कहे।
0: करेक्ट, सही बात है, और बहुत बुरा असर होता है, फैमिली झेलती है हर पल इसको लेकर के, झगड़े लड़ाई भी हो जाते हैं कई बार, कहासुनी भी होती है, और ये मुझे लगता है कि यह समझना चाहिए, मतलब कोई भी हो चाहे जो हो, ये लगभग घरों की दिक्कत है।
2: जी, हमने उनको दिया कि सौंफ दिया और कई तरह के दिए कि लो ये खाओ, लेकिन नहीं उसको नहीं खाना, हम खा रहे हैं बट उनको नहीं खाना है।
0: करेक्ट,
2: क्या कर सकते हैं सर, भुक्तभोगी हम भी है, साथ में क्या करें।
0: करेक्ट, अब बस हम यही कह सकते हैं कि भाई आप भी कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसे सेंटर्स का सुझाव दे सकते हैं, बहराइच में भी आप ढूंढने की कोशिश करिए, क्या कोई ऐसी जगह है जहां के ऊपर कांटेक्ट करके पहले आप डायरेक्ट उनसे बात करिए कि भाई,
2: पहली बात सर वकील है प्लस वेल एजुकेटेड हैं, उनको समझा ही नहीं सकते हैं, मैं क्या बताएं सर।
0: तो कोई वकील साहब को ही पकड़िए उनको समझाने के लिए जो नहीं खाते हो
2: सर, वो ऐसे हैं जब उनको कुछ, जब अपने ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तब सामने आ जाएगा, बस
0: समझ रहे हैं, हम समझ
2: ऐसे आदमी जाने,
0: कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश करते हैं, आप कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है,
2: और करते रहेंगे, क्या करते
0: हैं। हाँ, अगर आप अपने बच्चों को
2: देखा जाएगा।
0: बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चों को रोक के रखें इस चीज से तो वो बहुत बड़ी बात है, वो बड़ी अचीवमेंट आपके लिए।
2: नहीं, मेरा बेटा तो कुछ नहीं,
0: बस बस, तो ये बहुत बड़ी बात है।
2: उसमें सर निर्देश लिखा है पैकेट में, अगर जो पैकेट वाले हैं उसमें निर्देश उन्होंने दे रखा है, हम दिखाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
0: सही बात है,
2: कुछ नहीं फर्क पड़ना
0: है। सही बात है, नहीं आप
2: सरकार को प्रॉफिट हो रहा है, सरकार क्यों बंद करे, उसको प्रॉफिट हो रहा है सर, लिख दिया अपना निर्देश कि जान लेवा है, लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, वो बीमार होते हैं मरीज जाएंगे अपना, उनको क्या करना, हॉस्पिटल चल रहा है, टाटा बिरला और बनता जा रहा है, टाटा हॉस्पिटल सब जगह चल रहा है, इनको क्या करना है।
0: लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चों को उससे दूर रखा, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपने अगली पीढ़ी को इससे बचा लिया।
2: हाँ, अरे उतना खाती उतना नहीं, खाता नहीं, ये
0: ये मिथ्स है और ये बहुत गलत मिथ्स है, इसको बिल्कुल भी हम प्रमोट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता,
2: जो अनिल पीढ़ी उसको तो हम सही होने देंगे, ऐसा जो है तो है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा कि आपने खुल करके उस चीज़ को बताया, और आप लगातार अपनी अगली पीढ़ी पे काम कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच,
2: नहीं
0: बहुत बहुत अच्छा किया आपने, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी।
2: और हम डेली देते हैं हमेशा सर, अब हम देते हैं कि और कॉलर जुड़े बात करें, लेकिन मेन मेन टाइम पे हम भी चाहते हैं कि मेरा कॉल रिसीव करें।
0: अरे नहीं बिल्कुल बिल्कुल होती रहेगी, बिल्कुल होती रहेगी, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो भाई ये तो थी हमारे साथ में बहराइच से प्रीति शुक्ल जी। और जिन्होंने बताया भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रीति जी की नहीं है, ये न जाने कितने सारे घरों में है जिसको लेकर के हम लगातार परेशान हैं। मतलब हम अपने घरों में कई बार लड़ाइयों को देखते हैं, झगड़ों को देखते हैं, घर का माहौल ख़राब होता है। मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में हमारी सुकून से ज़्यादा हमारी फैमिली से ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये एक दिमाग को कुंद करने वाला, उसको कमज़ोर करने वाला एक नशा होता है जिसको हमें दूर करना होगा और दूर करना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उससे दूरी बनाएं और अपने लाइफ को बेहतर मोड़ सके। साथ ही कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हम करेंगे तो शायद हमारी फैमिली में उसका असर बेहतर होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं इस बात को भी हम जान लेते हैं कि हाँ सच में इन चीज़ों से हमको दूरी बना लेनी है और इन चीज़ों से हमको दूर रहना है। ना सिर्फ दूर रहना है बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इससे दूर रखना है और इससे दूरी बनाना है। फिलहाल बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छे से जवाब दिया आप लोगों ने, अपनी स्टोरीज को रखा, अपने पॉइंट्स को रखा, अपने व्यूज़ को रखा, आपने बताया कि आप किस तरह से अपने आसपास देख चुके हैं, अपने आसपास का आप लोगों ने अपने घर वालों का एग्जाम्पल्स भी दिया। एंड ये अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दूरी बनाने के बजाय अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों के करीब जाए, उनकी हेल्प करें। शायद वो उतना नहीं कर पा रहे हैं सपोर्ट खुद को, तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए खड़े हों और हम उनका सपोर्ट सिस्टम बन करके आगे आएं। और साथ ही साथ जहां पे उनको चीज़ें बढ़ती हुई देखनी है, जहां पे वो करने वाले हैं, हम उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ आगे करते रहें, ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हम करेंगे तो बेहतर होगा। और आज चूँकि 31 मई है, यानी 31 मई, और ये दिन बहुत अच्छा रहा जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स यानी 89.6 FM के चाहने वालों ने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा, बहुत अच्छे से जाना। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं और लास्ट कुछ मैसेजेस आ गए हैं, उन मैसेजेस की तरफ रुख कर लेते हैं। सो नगेश्वर मौजूद हैं, नगेश्वर ने भी लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। दयालक शर्मा जी मौजूद हैं, लिखा है भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख लोगों की मौतें हो रही है जिसका वजह है धूम्रपान, गुटखा और खैनी। जी हाँ, और जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, आपके एरियाज में कई चिकित्सा सुविधाएं जैसे गुरुग्राम, NCR में आर्टेमिस हॉस्पिटल, जहाँ पे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सहायता को मिलकर बहुविषयक नशा मुक्ति कार्यक्रम प्रदान कर रहे। नशा मुक्ति कार्यक्रम बहुत जगह चलाए जाते हैं, इसमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रबल मिश्र भी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। इम्तियाज़ मौजूद हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज का शो आई होप कि आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। शैलेंद्र जी खजुराहो से मध्य प्रदेश से आपका भी वेलकम करते हैं, और साथ ही साथ हमारे वो श्रोता जो रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और 89.6 FM को फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं। कैसा लगा आज का शो ज़रूर बताइएगा। सुनिए ये सॉन्ग।

0: घर नानी के घर जाएंगे।
1: नानी के घर, नानी के घर, नानी के घर जाएंगे।
0: हलवा पूरी, मीठी चूरी और जलेबी खाएंगे। नानी, नानी, नानी, नानी, नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जाएंगे। नानी, नानी, नानी, नानी, नानी के घर जाएंगे।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं बंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
12: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
13: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
12: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
13: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
12: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
13: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
14: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
15: गोंडा शहर की धड़कन।

0: legs.
1: Yes, but we have only two legs, क्योंकि we are humans. So एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके अपने Humpty Dumpty with गीता दीदी वाले शो में. और सबसे पहले वेलकम भाई गीता दीदी का, जो इस शो की होस्ट हैं.
2: हेलो अदनान.
1: हाय दीदी, कैसी हैं?
2: आज तो बड़ा मस्ती भरा दिन है, बहुत मजा आ रहा है.
1: मजा क्या, आप तो निकलते ही मजे लेके आई हैं बारिश के. हम तो स्टूडियो में बैठे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चला.
2: अरे बहुत मजा आ रहा था आज तो, मतलब बारिश देख के किसी की मम्मी में इतना हिम्मत नहीं कि बच्चों को रोक सके.
1: हाँ, ये बात तो सही बात है, क्योंकि बचपन में हम लोग भी नहीं रुकते थे.
2: हाँ सच में,
1: है ना,
2: पानी बरसा तो बस बाहर ही रहना है.
1: अच्छा, कभी आपने किया कि मम्मी पापा गुस्सा रहे हो कि अरे सर भीग जाएगा, बीमार हो जाओगे, तो आपने काली पन्नी उठा करके पन्नी सर में पहन ली होगा.
2: बिल्कुल,
1: अब लो इसका भी तोड़ निकल आया.
2: डोंट वरी मम्मा,
1: करेक्ट.
2: मेरे पास ये छाता है.
1: छाता है, ये सही बात है. ये बचपन होता ही बड़ा अल्हड़ सा है, बेगाना सा है, बहुत अच्छा होता है. सो मैम, बचपन वाली कविताओं में तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन कहानियां आप सुनाती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. आज कौन सी कहानी है?
2: आज सस्पेंस खत्म हो जाता है. अच्छा, अगर मैं पहले से बता दूं तो थोड़ा सा सस्पेंस जो होता है वो खत्म हो. वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना.
1: अरे ये तो मूवी और गाना है.
2: तो ऐसे कुछ आज हमारी कहानी भी है.
1: अच्छा,
2: कि अब ज्यादा हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको अपना लक्ष्य देखना चाहिए, अपना लक्ष्य और अपने विवेक पे ध्यान देना चाहिए. क्योंकि ताले का मुंह तो बंद किया जा सकता है, लेकिन इस संसार रूपी ताले का मुंह कोई नहीं बंद कर सकता है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. सो मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है.
2: जी हाँ,
1: तो चलिए भाई सुनते हैं. और इससे अच्छी क्या बात है कि हम इस बात को भी आज समझेंगे कि लोगों पर ध्यान न दे करके अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है. क्या बात है, वाह.
2: तो शुरू करें कहानी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल.
2: तो एक बार की बात है, एक साधु महाराज जी थे जो कई वर्षों से तपस्या और साधना करते हुए गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली भ्रमण किया करते थे. वो किसी भी स्थान पर अधिक समय पर नहीं रुकते थे. एक दिन चलते चलते चलते वो एक नदी के किनारे बने एक पनघट पे पहुंच गए, जहां पे बहुत सी स्त्रियां पानी भरने के लिए आया करती थीं. अब लंबी यात्रा के कारण वे बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उन्होंने सोचा कि ये नदी जो है इसका जल भी शीतल है और इस जल को पी करके यहीं पे थोड़ी देर विश्राम कर लें. सो उन्होंने नदी का जल पिया ठंडा ठंडा और वहीं पर एक समतल पत्थर सा था उस पर लेट गए और एक छोटा पत्थर था जिसे उन्होंने अपने सर के नीचे रख लिया और कुछ ही क्षणों में वो गहरी निद्रा में सो गए. फिर क्या हुआ, वह पनघट गांव की स्त्रियों का प्रमुख जल का स्रोत था. दिन भर वहां जो पनिहारने थी उनका आना जाना लगा रहता था. थोड़ी देर बाद कुछ पनिहारने पानी भरने के लिए वहां पहुंची और वहां पे उन्होंने उस साधु को सोते हुए देखा. तो उसमें से एक पहली जो पनिहारिन थी बड़ा मुस्कुरा के बोली, देखो तो साधु बन गए हैं, लेकिन तकिए का मुंह अभी तक नहीं गया. तकिया भले ही पत्थर का हो पर सिर के नीचे रखा तो है ही. अब जो साधु महाराज थे उनकी निंद्रा खुली और उनके कानों तक ये बात पहुंच गई. उन्हें लगा कि शायद वो वास्तव में किसी वस्तु के मुंह में बंधे हुए हैं. सो उन्होंने तुरंत उठकर वह पत्थर एक और फेंक दिया और फिर बिना किसी सहारे के ही लेट गए. थोड़ी देर के बाद दूसरी कुछ पनिहारन वहाँ पर आई और उन्होंने वह दृश्य देखा और बोली, अरे ये कैसे साधु महाराज हैं? जरा सी बात सुनकर नाराज हो गए. अभी तक क्रोध और अहंकार इनके अंदर से गया नहीं है, तभी तो जरा सी बात पे इन्होंने पत्थर फेंक दिया. अब ये सुनकर साधु असमंजस में पड़ गए. उन्होंने सोचा, मैंने तो मुंह छोड़ने के लिए पत्थर हटाया था, लेकिन लोग उसका भी दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं. वो चुपचाप बैठ गए और थोड़ी देर तक विचार करने लगे, सोचने लगे कि आखिर सही क्या है. तभी तीसरी पनिहारिन वहां पहुंची. उसने साधु के चेहरे पर चिंताएं देखी और बोली, बाबा ये पनघट है, यहाँ रोज अनेक लोग आते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही बातें करते हैं। यदि आप हर व्यक्ति की बात सुनकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहेंगे तो साधना कब करेंगे? सर, दूसरों की बात में उलझकर कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकता। अब साधु को उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी, उचित लगी, लेकिन तभी चौथी पनिहारन ने एक और गहरी बात कह डाली। वो बोली, महात्मा जी क्षमा कीजिए, मुझे लगता है कि आपने संसार की बहुत सी वस्तुएं तो छोड़ ही दी हैं, लेकिन संसार की राय को अभी तक नहीं छोड़ा है। आपका चित्त अभी भी लोगों की बातों में उलझा हुआ है। यदि आपको पाखंडी कहे कोई तो उसको कहने दीजिए, यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो उससे भी प्रभावित मत होइए। आप जैसे हैं वैसे ही रहकर अपना कर्तव्य और साधना करते रहिए। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, दुनिया का काम है कहना। आप ऊपर देखकर चलेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो कितना घमंडी हो गया है, नीचे देखकर चलेंगे तो लोग कहेंगे देखो किसी की ओर देखता ही नहीं है। आंखें बंद करेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो देखो ध्यान का दिखावा कर रहा है, और चारों ओर देखेंगे तो लोग कहेंगे इसकी नजर का कोई ठिकाना नहीं, देखो कैसा चगर मगर करके देख रहा है। और यदि इन सब बातों से परेशान होकर स्वयं को बदलते रहेंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ अवश्य ही कहेंगे। अब साधु महाराज ने बड़े ध्यान से उन सभी की बातों को सुना। पनिहारिन आगे बोली, महात्मा जी ईश्वर को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन इस संसार को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि संसार की अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंततः स्वयं ही दुखी हो जाता है। इसीलिए लोगों की बातों से अधिक अपने विवेक की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। यह सुनकर साधु के मन का सारा भ्रम दूर हो गया। अब उसे समझ में आ गया कि सच्ची साधना बाहरी वस्तुओं को छोड़ने में नहीं है, बल्कि लोगों की प्रशंसा और आलोचना से ऊपर उठने में है। उस दिन के बाद उसने ना तो लोगों की निंदा से दुखी होना सीखा और ना ही प्रशंसा से प्रसन्न होना। वह अपने मार्ग पर स्थिर होकर आगे बढ़ता रहा। तो क्या समझे अदनान जी?
1: ये जो चार लोग कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, तो आपने जिसे कहा था लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है
2: सुनना
1: और उसको सुन करके अनसुना कर देना।
2: तो दुनिया को संतुष्ट करना बहुत ही असंभव है।
1: सच में।
2: हाँ, लोग हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, इसीलिए लोगों की राय के पीछे भागने के बजाय अपना कर्तव्य करते रहना।
1: बिल्कुल। सो ये बात हमने भी देखी है कि कई बार हम लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है, और अंततः हमको लगता है कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर हमको ये भी पता होता है कि हम अपनी जगह सही हैं और हम अब इस वक्त पे हम यही कर ही सकते हैं, और कुछ है भी नहीं।
2: और है क्या अपने हाथ
1: और में? है क्या अपने हाथ में? अब अगला जो सोच रहा है वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि इसको ऐसा करना चाहिए जैसा वो सोच रहा है। तो इस सोच में आप मत पड़े, और जैसा आपको बेहतर लगे अपने लिए बिना किसी के नुकसान पहुंचाए वो आप काम कर।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: So, कैसी लगी स्टोरी भाई? गीता दीदी को जरा बता दीजिए। और गीता दीदी जा रही हैं वापस से वही पन्नी लगा के सर पर बच्चों को लेने के लिए।
2: लेकिन कमेंट्स क्यों नहीं आते हैं?
1: कमेंट्स इसलिए नहीं आते हैं कि ये लोग पन्नी लगा लगा के बाहर निकल गए,
2: बरसात का मजा लेने लगे।
1: बरसात का मजा ले रहे हैं। और जैसे ही घर पे आप आइए कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि भाई क्या लगा आपको आज की ये स्टोरी को सुन करके।
2: तो पकौड़ी और चाय का इंतजाम करने के लिए लोग बेताब हैं, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है, और आप इसका आनंद लेते रहिए और सुनते रहिए 89.6 FM। ये है गोटा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
3: भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को, अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हेलो बच्चों,
1: नमस्ते दीदी।
0: कैसे हैं भाई आप लोग?
2: बहुत अच्छे
3: दीदी।
0: आज तो मौसम बहुत मजेदार था ना
2: जी दीदी।
0: तो देखो, हमने तो बहुत इंजॉय किया। अब आप लोग बताइए आपने क्या क्या किया है। थोड़ी देर पानी बरसा एकदम छम करके
3: दीदी। हाँ, इतनी तेज धूप में बारिश हो रही।
0: यही तो मजा आता है। मम्मा कहती है धूप है, घर के बाहर मत निकलना। और तुरंत ही जो है भगवान जी क्या करते हैं, बारिश कर देते हैं। और फिर मम्मा नहीं रोक सकती है बच्चों को घर में, है ना
3: जी दीदी।
0: तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जैसे ही मैं नहाने जा रही थी ढेर सारी बारिश एकदम से आ गई। मुझे बहुत मजा आया, ठंडी ठंडी बूंदों का आनंद लिया। तो अब बस जल्दी ही बरसात का मौसम भी आने वाला है। और रोज छमछ, क्योंकि इसका सानिध्य का बर्थडे भी आने वाला है।
3: दीदी मेरा बर्थडे जुलाई में है।
0: हाँ, तो अब छमछ जब बारिश होगी कि नहीं होगी
3: दीदी?
0: तब सारे बच्चे चलेंगे आपके घर और हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और पानी में एंजॉय करेंगे, है ना। वो एक स्पेशल बर्थडे होगा आपका। तो आप ये बताइए कि आज क्या क्या नाश्ते हुए हैं घर में
3: दीदी? मेरा बर्थडे तो संडे को पड़ रहा है।
0: संडे को पड़ रहा है तो आप क्या करें, ये तो एक मैटर हो जाएगा कि आप तो यहीं रहोगे, घर पे कैसे एंजॉय होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आपका बहुत धूमधाम से हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्यों बच्चों?
1: जी दीदी।
0: हाँ, और मजा आएगा। तो चलिए, अपना इतना बड़ा ग्राउंड है कॉलेज का और यहाँ पे छम छमा छम छम बारिश होगी और हम लोग यहीं पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो चाह, अरे नाश्ते वाली बात तो मैं भूल ही गई। क्या क्या आज बताइए सत्यम, आपने आज क्या नाश्ते में लिया? हाँ, मुझे मालूम था कि बरसात हो रही है तो तुरंत ही कहा गया होगा कि भाई चाय बनाओ और पकोड़े बनाओ, आज तो मौसम बहुत ही खुशगवार है। और अतुल,
4: अतुल मैं लावा खा कर आया।
0: लावा
5: वोल्केनो वाला?
0: नहीं नहीं, बचपन में जो मम्मी उसको लावा बोलती थी, जो मक्का होता है ना, है ना
4: जी,
0: पॉपकॉर्न, उसको भी लावा ही बोला जाता है। तो चलो भाई सानिध्य, बोर हो रही है हम लोग की बातों से, वो जल्दी से कुछ सुनाना चाहती। तो सानिध्य आज क्या सुनाओगी
3: दीदी? कविता।
0: कविता कौन सी?
3: बहना पर।
0: बहना पर, अच्छा आपकी बहना तो राधिका है
3: जी।
0: तो राधिका के लिए लेके आई हो पोयम? चलो देखो सुनते हैं भाई, अपनी बहन से इतना प्यार करती है। अभी थोड़े दिन पहले सिस्टर डे था ना
4: जी।
0: हाँ, लेकिन हम लोग सिस्टर डे पे यहाँ नहीं थे, इसलिए आज जो है सानिध्य अपनी बहन के लिए एक प्यारी सी कविता सुनाने वाली है।
3: तिउर उठी हो मेरी बहना, हाथी ले लो, ढोड़ा ले लो, हरे रंग का तोता ले लो, मेरी प्यारी दुड़िया ले लो, हस्तर बोलो मेरी बहना, तिउर उठी हो मेरी बहना।
0: अरे वाह भाई, देखो राधिका कहीं भी बैठी होगी, खेल रही होगी, कुछ भी कर रही होगी और ये प्यारी सी कविता सुन करके मन ही मन मुस्कुरा रही होगी और दीदी को बोलेगी थैंक यू दीदी, आइए मैं आपके सारे खिलौने ले लूँगी। तो भाई बहुत प्यारी सी इनकी कविता थी। और चलो आज चलते हैं हम समर की ओर। और समर आज कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं अपने दोस्तों को। तो समर आज क्या बताने वाले हैं?
5: हाँ, तो मैं आज वैसे तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा सवाल जो हर टीनेजर के मन में होता है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये घूमती रहती हैं तो ये गिरती क्यों नहीं है। क्योंकि एक बार मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी और एक कार्टून देखते थे हम लोग जब अपने छोटे में थे, तो डोरेमोन।
0: डोरेमोन,
5: हाँ, तो उसमें
0: पोकेमोन, डोरेमोन ये मैंने खूब देखे।
5: वो तो उसमें एक बार वो सैटेलाइट गिर जाती है, तो मैं भी सोचता था कि अगर वो गिर जाती तो कितना अच्छा होता, और वो गैजेट जैसा उसमें कुछ निकलता है फिर। और तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि गिरती क्यों नहीं है सैटेलाइट, जबकि उसकी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो लगातार सैटेलाइट को खींच रही होती है। जैसे हम कोई भी कुछ भी चीज़ स्पेस में फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, ग्रेविटी उस पर लगती है, लेकिन क्या सैटेलाइट्स इसके बिल्कुल
0: विपरीत काम
5: करती हैं, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले तो सैटेलाइट्स काम क्या करती हैं, वो टीवी जो चलता है वो सैटेलाइट की वजह से मिलता है, और जीपीएस जो होता है वो सैटेलाइट की वजह से होता है, और ये जो कुछ दिन पहले सारे मोबाइल्स पे वो आ रहा था ना कि अगले 24 घंटों में अगले 3 घंटों में बहुत जोर से बरसात,
0: मौसम का हाल बता सैटेलाइट से ही
5: वो सब कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो अलर्ट आने के पीछे सैटेलाइट ही थी। और
0: आजकल तो सैटेलाइट के पीछे एआई है जो तुरंत ही मौसम का हाल,
5: और ये जो हम बोल रहे हैं रेडियो, ये हम लोग
0: भी सैटेलाइट की
5: और आप सुन रहे हैं ये भी सैटेलाइट की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि ये गिरता क्यों नहीं है, ग्रेविटी तो उस पर भी लगती है, तो ये पता इसका एक सीधा सीधा जवाब है कि सैटेलाइट गिर रहा होता है लेकिन वो गिरता नहीं है। ये ऐसे नहीं गिरता कि बहुत सारे, जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब हम दही को मक्खन में बदलते हैं तो उसमें वो जो घुमाते हैं ना
0: बिलोन, तो
5: वो बीच बीच में छाछ बच जाता है और साइड साइड में मक्खन लग जाता है। तो साइड साइड में मक्खन क्यों चला जाता है, एक ही साइड जा सकता है ना, सारे साइड में क्यों चला जाता है? तो एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
0: बीच में मथानी जो चलाते हैं,
5: हाँ, उसकी वजह से वो सारा साइड साइड में चला जाता है। तो यही चीज सेम चीज काम करती है सैटेलाइट्स की वजह से, जब सैटेलाइट बहुत तेज स्पीड से घूम रहे होते हैं तो उन पे भी एक, जैसे मक्खन तो हर जगह होता है ना दूध दही में, तो वो पुश होता है टुवर्ड द वॉल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो अर्थ है वो भी एक विपरीत फोर्स लगाती है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी वजह से नहीं गिरता। सबसे पहला तो ये है। दूसरा तो ये भी है कि कुछ सैटेलाइट, जो तीन तरीके की मेनली सैटेलाइट्स होती हैं जो होती हैं, एक होती है लोक ऑर्बिट जो होती है 400 से 2000 किलोमीटर तक, जो वेदर सैटेलाइट होती हैं, इंटरनेशनल मिशन होते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं। आपने कभी रात में देखा होगा तो तारे बहुत जोर से बहुत सा एक तारा चमकता हाँ, तो वो भी सैटेलाइट्स ही होती हैं, वो लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं या फिर आईएसएस होता है जो हमको जमीन से दिखाई दे रहा होता है। एक ऑर्बिट ये लगभग 90 मिनट में करती हैं। एक होती है मीडियम ऑर्बिट, इसमें जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं, मैप्स की सैटेलाइट होती हैं और फ़ोन लोकेशन की सैटेलाइट्स होती हैं। और एक होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये बहुत बहुत बहुत दूर होती हैं, लगभग 35,000 किलोमीटर दूर। तो ये इतना तेज घूमती हैं जितना अर्थ रोटेशन करता है, मतलब जितना तेज अर्थ घूम रहा है उतना ही तेज ये भी घूम रही हैं। तो उसके साथ इसकी ग्रेविटी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह मैच हो जाता है कि ये गिरती रही हैं। और ये सबसे बड़ा तो खेला ये होता है सैटेलाइट्स में कि कौन सी सैटेलाइट कहाँ रखनी है। जैसे अब आपको, जैसे हम लोगों ने देखी है ना, अपोलो जब गया था पहली बार तो वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग ने एक फ़ोटो खींची थी अर्थ की, तो वो फोटो बहुत वायरल हुई थी, उसमें दिख रहा है कि नीला अर्थ है, तब से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। लेकिन आज जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमको ऐसा अर्थ नहीं दिखता, हमको अर्थ दिखता है चारों तरफ से स्पेस के वेस्ट से भरा हुआ। इस अर्थ जो है वो चारों तरफ से, जैसे कुछ सारी सैटेलाइट जो होती हैं वो ऊपर ही टूट जाती हैं और वो भी उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाए करती हैं, तो पूरा कूड़ा भरा हुआ है अर्थ के चारों तरफ। इस तरह है आज का, जो आज अगर अर्थ की फ़ोटो लेंगे तो हम, तो मेन तो यही है उत्तर की सैटेलाइट्स इसलिए नहीं गिरती क्योंकि उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो ग्रेविटी को बैलेंस कर लेती हैं, इसी वजह से
0: इसीलिए वो
5: ऊपर
0: स्टेबल है।
5: हाँ, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हम किसी पत्थर में एक धागा बांध के बहुत जोर से घुमाते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो कभी कभी सीधी दिशा में जाने लगता है, बहुत दूर हमसे, जबकि हम उसको घुमा सर्कुलर मोशन में रहे होते हैं। तो वो भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही नतीजा है कि वो पीछे की तरफ, हम खींच ग्रेविटी तो हमारी तरफ लग रही है,
0: यानी किसी भी दिशा में
5: हाँ
0: जा सकता है। तो ऐसे ही जो हमारी सैटेलाइट है वो किसी भी दिशा में स्थापित हो चुकी हैं।
4: दीदी अब आप भी एक स्टोरी सुना दीजिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है।
0: ये कहानियां सुनने का मौसम आ गया है
4: जी दीदी।
0: गीत का मौसम तो मैंने सुना था कि गाना गाने का मौसम भी होता है, लेकिन कहानियां सुनने का मौसम भी है। ये हमारे अतुल जी बता रहे हैं, तो सुनोगी सानिध्य कहानी और सत्यम कहानी सुन। अब देख रहे हैं बोटिंग करा रहे हैं कि कहानी सुनना है। और अथर्व जी
2: जी जरूर
0: समर
5: तो मैं क्यों मना करूं।
0: तो ठीक है चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। तो कहानी सुनने के बाद आपको बताना होगा उसका, उसमें मॉरल जो छिपा होता है वो मॉरल आपको बताना होगा, है ना। हर कहानी के पीछे एक ना एक मॉरल छिपा होता है, तो वो मॉरल हम आपसे पूछेंगे। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं कि वो उसमें कौन सा मॉरल छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करने वाले हैं एक हम प्यारी सी कहानी, और देखते हैं कि देखो क्या होता है कि बहुत समय पहले एक बहुत घना जंगल था, और उसमें एक बहेलिया रहता था, ब्याध जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा कठोर था। कठोर क्यों था, वो बहुत बड़ा निर्दयी बन चुका था, क्योंकि वहाँ जंगल में देखिए अनाज तो होता नहीं है, पशु पक्षी ही होते हैं, तो वो उन पशु पक्षियों को शिकार करता और उन्हीं को मार करके उनका मांस खाता था। यही उसकी दिनचर्या थी, सुबह उठना, शिकार करना और पंछियों को जानवरों को मारना और उनको खा लेना
4: जी दीदी।
0: तो वह रोज की तरह हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगल में घूमता और इसी तरीके से पक्षियों को फंसाता अपने जाल में, फिर उनको मार देता, उनकी हत्या कर देता। ऐसे करते करते वो बहुत ही क्रूर स्वभाव का हो गया, है ना, निर्दयी हो गया बहुत। तो उसके जो दोस्त थे, उसके जो जानने वाले, उसके जो प्रियजन थे, इसीलिए उसके क्रूर स्वभाव के कारण उससे काफ़ी दूर हो गए। उसे कोई बोलता नहीं था और वो बिल्कुल अपना जीवन जो है अकेले बिता रहा था। तो इसीलिए उसके मन में ना तो और दया थी और ना ही वो किसी जीव के प्रति दया रखता था, कोई प्रेम का भाव उसके मन में था ही नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन वो हमेशा की तरह शिकार की तलाश में जंगल में निकल गया और काफ़ी देर भटकने के बाद उसने अपना जाल फैलाया और थोड़ी देर में उसके जाल में एक सुंदर सी कबूतरी फंस गई। शिकारी बहुत खुश हुआ और उसे लेकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। तभी जानते हो क्या हुआ
4: जी।
0: अचानक आकाश में आज की तरह बिल्कुल जैसे आज काले काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते ढेर सारा पानी भी बरसने लगा, मूसलाधार बारिश हो गई और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी। इसके कारण जो शिकारी था वो कपकपी लगने लगी, कांपने लगा और उसको कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। उसको लगा कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए कि जहां वो आश्रय ले सके। तभी उसने देखा एक पीपल का विशाल वृक्ष उसी जंगल में लगा हुआ था, तो वो भाग करके उसके तने के पास पहुंच गया और उस वृक्ष के खोल में प्रवेश करते हुए उसने कहा, इस समय जो भी यहाँ रहता है मैं उसकी शरण में आया हूँ, यदि कोई मेरी सहायता करेगा तो मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूँगा। तभी उस वृक्ष के खोल में एक कबूतर रहता था, वह अपनी पत्नी के वियोग में बहुत दुखी होकर बिलाप कर रहा था, क्योंकि वही कबूतरी उसके जाल, शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। जब कबूतरी ने अपने पति को इस तरीके से रोते हुए देखा, उसकी आवाज़ सुनी, तो उसका मन जो था खुश हो गया, वो प्रसन्नता से भर उठी। तो उसने सोचा मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा प्रेम करने वाला कबूतर मिला है, और बस इसीलिए मैं धन्य हो गई। फिर उसने अपने पति से कहा कि स्वामी मैं इस शिकारी के जाल में बंद हूँ और यह सब मेरे पूर्व कर्मों का फल है, आप मेरे बंधन की चिंता छोड़ दीजिए और इस समय ये आपके शरण में आया है, आपका अतिथि है, आप इसकी सेवा कीजिए। जो मनुष्य जीवों की या लोगों के का आतिथ्य नहीं करता है, उसके सारे जो पुण्य होते वो समाप्त हो जाते हैं। तो पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने ब्याद से विनम्रता से कहा, हे अतिथि, आप चिंता ना करें और इस घर में, इस घर को अपना ही घर समझें, और आपकी मैं बताइए क्या सेवा करूं। तो ब्याग जो है बड़ा ठंड से कांप रहा था, थर थर थर थर, और उसने कहा कि अगर थोड़ा मतलब मुझे सर्दी बहुत लग रही है, यदि आग का प्रबंध तुम कर सको तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब कबूतर तुरंत उड़कर इधर उधर जंगल में भटकने लगा, और कुछ देर में उसने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर ली और उसने बड़ी मेहनत से आग भी जलाई। बोला, आप इस आग में अपना शरीर सेंक लीजिए तो आपकी सर्दी जो है ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब शिकारी आग सेक कर कुछ मतलब आराम महसूस करने लगा, परंतु अब कबूतर को चिंता हुई कि अब इसकी भूख कैसे मिटाई जाए। तो उसने मतलब अपने घोंसले में देखा कि कुछ खाने का सामान हो तो वो दे दे, पर उसके पास कुछ भी नहीं था उस समय अतिथि सत्कार के लिए। तो उसने सोचा, चलो अपने प्राणों की ही बलि दे करके इसकी भूख मिटा देते हैं। और उस कबूतर ने बिना किसी भय के उस जलती हुई आग में कूद कर छलांग लगा दी और स्वयं जलने लगा, ताकि ब्याद उसकी देह खाकर अपनी भूख मिटा ले। अब यह दृश्य देख करके जो शिकारी था वो एकदम स्तब्ध रह गया, अरे ये क्या हो गया। अब उसके हृदय में पहली बार दुख, करुणा और पश्चाताप की भावना जाग उठी। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने तुरंत कबूतरी को अपने जाल से मुक्त कर दिया और अपने सारा जाल शिकारी के उपकरण को तोड़ करके शिकारी ने फेंक दिया उसी आग में, जाल अपना और जो भी टूल्स थे उसके पास सब फेंक दिया। और अब जो कबूतरी थी उसने देखा कि उसका पति जो है जल रहा है आग में, तो वो रोने लगी, बिलाप करने लगी कि अब क्या करें, अब तो उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। और वो भी उस आग में कूद गई। तो समझ में आया उसी समय अब आकाश में जो देवता थे वो देखने लगे उसका बलिदान। हाँ, और दोनों ने मतलब कबूतरी के त्याग और धर्म पालन और पूरा मतलब वातावरण वहाँ जंगल का पवित्र हो गया। तो इस जो ये घटना उसके सामने घटी, शिकारी के सामने, उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। उस दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अब वो किसी को मारेगा नहीं, सताएगा नहीं, किसी को खाएगा नहीं, यानी कि उसके मन में दया, करुणा और धर्म पनप गया। अब वो धर्म के मार्ग पर चलने लगा था। तो कहानी तो समझ में आ गई कि इसका मोरल क्या था, ठीक है ना? कौन बताएगा इसका मोरल क्या था?
2: अथर्व बताएगा। नहीं नहीं, अथर्व को अच्छे से समझ में आया।
0: देखो बच्चों, जो भी कभी हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हमें उसके प्रति हमेशा सत्कार की भावना, आदर की भावना, प्रेम, त्याग, करुणा, ये सारी चीजें होनी चाहिए।
2: एक कहानी से दीदी सारे मोरल्स, मतलब बहुत सारे मोरल्स निकल आते हैं।
4: जी दीदी,
0: मतलब किसी के भी, कोई कितना भी खराब व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, उसको जो है मतलब बदला जा सकता है, उसके मन को बदला जा सकता है अगर आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, दया है, प्रेम है, करुणा है, धर्म के प्रति आस्था है, तो आप उसके मन को तुरंत चेंज कर सकते हैं। तो कैसी लगी कहानी?
4: बहुत अच्छी दीदी।
0: तो चलिए, कहानी तो अच्छी लगी पर मैं तो थक गई हूँ, आप भी थक गए, तो चलो ले लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: छोटी, रोटी वोटी कुछ न मिली, पीछे पड़ी मोटी।
1: रे मामा रे मामा रे।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारा रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: तो वेलकम बैक दोस्तों। और आज आपको मालूम है कौन सा डे है?
5: दीदी, संडे।
4: हाँ, संडे के अलावा भी कोई डे है? आज नशा मुक्ति दिवस है। जानते हो ना, नशा करने वालों का घर कैसे बर्बाद हो जाता है, ना? तो हम लोग नशा मुक्ति दिवस इसीलिए मनाते हैं। और काफी लोग
6: दीदी, उसी से रिलेटेड एक और दिन है, मतलब वो जैसे नशा थोड़ा करना बुरी बात होती है, वैसे एक और चीज है जो बहुत ही बुरी है, तंबाकू खाना। हाँ, आज वर्ल्ड नो तंबाकू डे भी है।
4: वो भी है। तो देखो भाई, होता क्या है कि नशा में तो सारे नशे आ जाते हैं ना। मुझे तो इतना नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो शराब का नशा जानती हूँ, टोबैको का नशा जानती हूँ। मतलब मैं जानती हूँ कि दूसरों को करते हुए मैंने देखा, मैं नहीं करती। तो जो भी भाई लोग सुन रहे हो, हमारा तो बस उनसे इतना ही कहना है कि आप स्वयं अपने घर को बचा सकते हैं, और ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। बहुत परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना? तो छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है कि वो यतीम हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे लंग्स ख़राब हो जाते हैं और कई तरीके के कैंसर्स, ये चीज़ें तो कैंसर्स होती ही हैं। तो किसी को टोबैको डे बता रहा है तो उसको, उनको मुंह का कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है ना? तो उन बच्चे, मासूम बच्चों से पूछो जिनके सर से उनके पिता का साया उठ जाता है, इन्हीं सब से। तो आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको अवेयर करिए, इस बात की जानकारी दीजिए कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी हार्मफुल हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों?
6: जी दीदी।
4: बताएंगे ना अपने आसपास?
6: जी दीदी।
4: तो हम ही तो जागरूकता फैलाएंगे, है ना?
6: तो और अगर आपको नशा करना ही है तो पढ़ाई का नशा करिए, अच्छे आचरण का नशा करिए, भगवान की भक्ति का नशा करिए।
4: बहुत सारे नशे हैं जो हमारी लाइफ को बदल सकते हैं।
6: तो अच्छे चीजों का नशा,
4: अच्छी चीजों का नशा, अच्छी संगत का नशा होना चाहिए, है ना? तो चलो कि ये बातें होती रहेंगी, लेकिन हमारी सानिध्य जो है फिर से तैयार हैं। और आज वो देखो, और क्या, अभी तो अपनी बहन के लिए इन्होंने, थोड़े दिन पहले सिस्टर डे था, तो अपनी बहन के लिए बहुत प्यारी सी कविता सुनाई है। अब देखो वो क्या सुनाने जा रही है।
5: जननी मैं रामदूत हनुमान।
4: जननी मैं रामदूत हनुमान, तो ये क्या है, पोयम है? अच्छा, चलो।
5: जननी मैं रामदूत हनुमान, चरण कमल में सट सट बंदन, चरण कल्याण मेला है, अवसर आज महान।

0: वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए हनुमान जी बता रहे हैं माता सीता को कि जननी मैं राम दूत हूँ, पहचान लीजिए मुझे, है ना। तो चलिए भाई, बहुत अच्छी आपकी कविता थी, बहुत अच्छा गीत था और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। कुल मिलाकर के चलते हैं हम सत्यम की ओर, और सत्यम आज क्या बताने वाले हो।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हम सभी के साप्ताहिक कार्यक्रम हम्टी डम्टी विद गीता दीदी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खाद्य पदार्थ की जो हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूध की।
0: दूध
1: जी, मिल्क।
0: ओ,
1: हर वर्ष 1 जून को पूरे विश्व में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
0: हाँ, जो कि कल मनाया जाएगा।
1: जी जी, श्रोताओं, विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO द्वारा की गई थी। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास के क्षेत्र में कार्य करती है। इस दिवस को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को दूध के
0: प्रति जागरूक करना, दूध के पोषक तत्वों की महत्व बताना,
1: डेयरी उद्योग की भूमिका और किसानों के योगदान के प्रति जागरूक करना था। दरअसल दुनिया के कई देशों में मिल्क और दुग्ध उत्पादन लोगों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन समय के साथ लोगों में इसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी कारण एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की गई जो मिल्क के स्वस्थ लाभों और डेयरियों क्षेत्र में महत्व की दुनिया के सामने ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिल्क को संपूर्ण आहार कहा जाता है? इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12, पोटेशियम और कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं।
0: यानी कि विटामिन सी को छोड़कर के सारे पोषक तत्व इसमें
1: पाए
0: जाते हैं।
1: ये हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। भारत के लिए यह दिवस और भी विशेष है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। हमारे देश के करोड़ों किसान और पशुपालक दूध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। दुग्ध उत्पादन न केवल लोगों को पोषण देता है बल्कि ग्रामीण अवस्था को भी मजबूत बनाता है। श्रोताओं, दुग्ध से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य यह भी है कि भारत में श्वेत क्रांति ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नई दिशा दी। इसके जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मेहनत के कारण भारत आज विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है। विश्व दुग्ध दिवस हमें केवल दूध के लाभों की जानकारी नहीं देता बल्कि उन लाखों किसानों और डेयरियों कर्मचारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करता है जिनकी मेहनत से दूध हमारे घरों तक पहुँचता है।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई देखिए दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है ना। बच्चों का जो विकास होता है वो सब कुछ दूध पे, और लेकिन आजकल मालूम है बच्चे क्यों दूध से इतना दूर भागते हैं, बच्चे दूध पीना नहीं चाहते हैं। तो दूध को भी बहुत ही डिलीशियस बनाया जा सकता है अगर बच्चा दूध नहीं पीता। ये देखो, ये तो पीती है ना दूध?
2: जी दीदी।
0: हाँ, पीती है वो दूध। क्यों कह रहे हो भाई वो दूध नहीं पीती है? हमारी सानिध्या दूध पीती है, और जब भी हम पूछते हैं क्या खा के आई हो सानिध्या, तो कहती दीदी हम दूध पी के आए हैं। तो दूध है ना कितना हमारे लिए जरूरी है ना, अगर दूध, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो दूध में मौजूद होते हैं, तो इसलिए हमको दूध पीने की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। क्या कह रहे हो अथर जी, दूध पीना चाहिए कि नहीं?
3: जी दीदी, मैं रोज पीता हूँ।
0: हाँ, आप सत्यम जी ने तो बहुत ज्यादा ये बातें बता दी दूध पे। आप दूध लाइक करते हैं कि नहीं?
4: जी दीदी, बहुत, शाम को पीता हूँ।
0: और हमारे समर जी?
5: हाँ, बिल्कुल।
0: पकड़ा गया है?
5: नहीं, पीता हूँ। सही
0: पीते हैं? तो भाई दूध पीते रहिए और अपने को तरोताजा रखिए, अपने को
5: अगर मैं कह दूं नहीं पीता हूं तो मैं सानिध्या की नजरों से गिर जाऊंगा। सानिध्या सोचेगी भैया दूध नहीं पीते और उसको बता रहे दूध पियो।
0: देखिए दूध, ये नहीं कि आप दूध ही पी लीजिए, दूध से बने कोई भी पदार्थ खा लेंगे वो सारे वही पोषक तत्व तो आपके शरीर को मिल जाएंगे, है ना। मैं तो कह रही हूँ कि फ्लेवर्ड मिल्क बना करके, कि जैसे घर में सारे फ्रूट है ना, उसमें डाल करके और उसको एक स्मूथी बना करके और उसको खा सकते हैं, पीने के बजाय इंजॉय कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो कई तरीके से दूध पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दूध गटागट यूं ही पी गए, नहीं, उसके बहुत सारे डिशेस बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ हैं और कई तरीके के दही से बने हुए पदार्थ हैं, दही, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमको दूध से ही मिलती हैं, इसलिए दूध का सेवन करते रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम अथर्व की ओर, और अथर्व आज क्या बताने वाले हैं।
2: दीदी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी के ऊपर है, और वो खास करके एक वूमेन है।
0: अरे वाह।
2: जी हाँ, तो देखिए क्या था कि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि सिर्फ एक शासक या फिर कह सकते हैं रूलर के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि एक आइडियल लीडर, एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी होते हैं, और उसी की तरह एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग जो हम लोग आज उनसे परिचित होने वाले हैं, उनका नाम है अहिल्या बाई होलकर।
0: वाओ।
2: अब आप सोचेंगे आज मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था।
0: जी जी।
2: तो अगर देखिए, जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि भारत के इतिहास में सबसे महान रूलर्स में से किसका नाम है, मतलब कि कौन सबसे ज्यादा महान रूलर था, तो मैं बिना किसी झिझक के एक ही आंसर दूंगा,
0: अहिल्या बाई होलकर।
2: तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन जो कि अभी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले इनके अर्ली लाइफ करियर के बारे में बात करते हैं। तो इनका सबसे पहले तो जन्म हुआ था 31 मई, यानी कि आज ही के दिन 1725 को, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चोंदी में इनका जन्म हुआ था। उनका जन्म किसी रॉयल फैमिली में नहीं हुआ था, वो भी एक हम लोगों की तरह एक ऑर्डिनरी फैमिली में ही जन्मी थी, और वो एक कह सकती हैं कि इतिहास ये बार बार साबित करना चाहता है कि जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, वो उसको सिर्फ आप उसकी सिचुएशन के रूप से नहीं डिसाइड करते हैं, आप उसके कैरेक्टर के फॉर्म में भी उसको डिसाइड करते हैं। और कहते हैं कि एक दिन क्या था कि मराठा साम्राज्य के एक बहुत ही महान रूलर थे जिनका नाम था मल्हर राव होलकर, उन्होंने जब छोटी अहिल्या को मंदिर में पूजा करते हुए देखा,
0: शिव की भक्त थी ये,
2: जी हाँ, तो उन्होंने देखा कि इस लड़की के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, एक अलग ही सिंप्लिसिटी थी, और मैच्योरिटी भी इनके अंदर दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि मल्हर राव ने सोचा कि इनका जो मतलब इनकी जो शादी है मैं अपने बेटे से कराऊंगा, यानी कि खंडे राव होलकर से। अब क्या था कि उनके जीवन में जब उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनके जीवन में इतनी सारी डिफ़िकल्टियाँ कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आप शायद भावुक भी हो सकते हैं। क्या था कि जब अहिल्या बाई जी की शादी हुई तो उसके कुछ ही साल बाद उनके पति की डेथ हो गई, देन उसके बाद उनके जो कह सकते हैं ससुर थे उनकी भी उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद उनके बेटे की भी डेथ हो गई थी। मतलब सोच सकती हैं एक साथ तीन तीन डेथ, उनके लिए मतलब वो अंदर से पूरी टूट गई
0: थी
2: कि अब वो करे तो क्या करें। लेकिन यही पर अहिल्या बाई होलकर बाकी लोगों से अलग दिखना चाहती थी, मतलब अलग ही दिखाई देती थी। उन्होंने क्या किया, अपने दुख को अपना एक वीकनेस नहीं बनाया, बल्कि उसी को अपनी ताकत बना लिया। अब क्या था कि जब उनके जब पति का डेथ हुआ, उनके जब पति का देहांत हुआ, तो 1767 में 1767 में उनको मालवा राज्य का शासन मिला था, उनको वहाँ की कह सकती रानी बना दिया गया, और यही से शुरू होता है एक ऐसा चैप्टर जिसे इंडियन हिस्ट्री में गुड गवर्नेंस का एक गोल्डन एग्जाम्पल लेते हैं, कि मतलब एक अच्छा राज्य चलाने वाला ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अहिल्या बाई होलकर जी के नाम से। क्या था कि उनके दरबार में, जैसे कि हर राजा अपने दरबार में क्या चाहता है कि सबको एक समान न्याय मिले, ठीक उसी प्रकार अहिल्या बाई होलकर के भी दरबार में सबको एक ही जस्टिस मिलता था, एक ही तरह का न्याय मिलता था। वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी गरीब हो या फिर कोई अमीर हो तो उसको इसको ज़्यादा न्याय मिलना चाहिए और उसको कम न्याय मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है, सबके लिए एकदम सेम जस्टिस था। और उनका मानना था कि जो उनकी ये पावर है, अगर ये कहीं और भी लगाएं तो वो शायद एक सबसे बड़ी महारानी बन सकती हैं, और कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में उनका नाम सबसे ऊपर लिखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसी सोच से उन्होंने अपने राज्य में, अपने मालवा राज्य में रोड्स बनवाए, वेल्स खुदवाए, पॉन्ड्स भी बनवाए और साथ में धर्मशाला भी बनाई, जिसकी वजह से बच्चों को एक एजुकेशन मिल सके। और उनकी जो राजधानी थी महेश्वर, वो धीरे धीरे कल्चर, एजुकेशन और कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण सेंटर बन गई। और आप काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में तो जानती होंगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्या था कि काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो जितना भी कंस्ट्रक्शन था उसमें इनकी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जैसे कि बहुत सारे जब देश में कई प्राचीन मंदिरों पर आक्रमण हुए थे, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल पे भी आक्रमण हुआ था, तो उस उन सब में जिनमें पुनर्निर्माण था वो इन्हीं का सबसे मेन रोल था उसमें। तो आप सोच सकते हैं
0: जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने या फिर मुगलों ने तोड़े मंदिर,
2: हमारे मंदिर तोड़े, तो वही से उनका जो पुनर्निर्माण था वो इन्होंने करवाया
0: धन।
2: तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी महारानी।
0: और इनके बारे में हमने एक बात और सुनी थी ये जो मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगी थी कि इनके बेटे ने एक कार्ट लेकर के निकले, बैलगाड़ियाँ चला करती थी और उसके नीचे एक गाय का बच्चा आ गया
2: जी।
0: तो वो गाय जो है वहीं पर बैठ गई और बहुत रो रही थी, भाई किसी का बच्चा मर जाएगा तो वो रोएगी, वहाँ पे वो बैठ के रो रही थी। अब जब महारानी को इस बात की खबर लगी, भनक लगी कि उनके बेटे से इतना बड़ा पाप हुआ है, तो उन्होंने गाय को न्याय देने की सोची। उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को कार्ट के सामने लिटा दिया और उसके ऊपर से वो कार्ट चलाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो गाय थी, उसको लगा कि हाँ ये हमारे लिए इतना सोच रही हैं, हमको न्याय दिलाने की सोच रही हैं, तो वो आ गई फिर सामने।
2: तो मतलब कि जब सामने आ गए तो ये वो नहीं चाहती थी कि जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ है वैसा इनके बेटे के साथ ना हो,
0: गाय ये समझ रही थी। हाँ, तो ये हमें बहुत अच्छी लगी थी कहानी और बहुत ही मतलब इम्प्रेस हुए थे इस कहानी से। और तब से मुझे इनकी कोई भी कहानी होती थी, इनका कोई भी दृष्टांत होता था, मैं जरूर पढ़ती थी।
2: और ऐसे ही लोगों की सेवा करने की वजह से इनको एक नाम दिया गया था लोक माता, मतलब कि लोगों की माता, कि जिससे ये जब लोगों की सेवा करती थी तो वही से इनका नाम उजागर हुआ था कि इन्हें लोक माता कहा जाएगा
0: जी। बहुत
2: तो ये थी पूरी बायोग्राफी इनके बारे में। अच्छी लगी हो आप लोगों को तो कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा।
0: नहीं, बहुत अच्छी लगी है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बाकी तो लिसनर्स के बारे में मैं क्या ही कहूँ, वो हमें कमेंट्स नहीं करते हैं, इस बात का मुझे बेहद दुख है। तो चलिए समय हो रहा है आपसे अलविदा कहने का और हम वादा करते हैं कि अगले सप्ताह यानी संडे को इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
2: आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
0: कुछ नहीं, तुम तैयारी करके आते हो बस?
3: आते हैं मैम, वो आते हैं।
6: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-1

9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार जी। आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और आज का कार्यक्रम हो जाता है इसलिए खास क्योंकि रविवार एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम आपके साथ होते हैं ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना FM। मैं हूं आप सभी का दोस्त मनु और हमारे साथ हैं आपके फेवरेट RJ
1: अदनान जी। हाँ, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो के बाद। आज डे का स्पेशल शो ओपन माइक, और ओपन माइक में आज हम बहुत ही ओपनली राय रखेंगे नशे के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आज 31 मई है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं और पार्टिसिपेंट के रूप में हमारे साथ में प्राची मौजूद है। हेलो प्राची, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ अजिता जी मौजूद हैं, जिनके अल्फाज और अलकाब हम सुनने के बाद कहते हैं वाह जी वाह, वाह जी वाह। सो ऑफ कोर्स अजिता जी भी मौजूद हैं। और वैसे तो हमारे आरजी मनु शेर मारने में पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि इनको मिट्टी के शेर मारने होते हैं तो दे मारते हैं। सो बहुत सारा फन होने वाला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली, और कुछ अपनी घटनाओं के बारे में, कुछ अपने स्टोरीज के बारे में साझा करेंगे जो नशे से जुड़ी हुई हो। अगर आसपास हमने ऐसा कुछ देखा है किसी में बदलाव, तो इस वक्त सुन रहे कई सारे श्रोताओं में हो सकता है कोई चेंज चाहता हो और हम उसके लिए कुछ कर सकें उन बातों के ज़रिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल शुरुआत जो है वो म्यूज़िकल होती है, और चूंकि प्राची हमारे साथ मौजूद है तो हम चाहेंगे कि प्राची आप इस शो का आगाज़ करिए अपनी आवाज़ मीठे से अंदाज से।
0: जादू बिखेर दी
1: बेशक। सो आज वैसे अचानक से मौसम भी चेंज हो गया। ये हुआ क्या था अचानक, कैसे क्या हो गया?
0: मतलब ये 9 तपा चल रहा था, हमको लगता है 10 तपा नहीं हुआ,
1: 9 तपा चल रहा था, फिर जेठ जी की दोपहरिया चल रही थी।
0: हाँ, जेठ जी की दोपहरिया चल रही थी।
1: जेठ जी आराम करने क्या लेटे तो धूपी चली गई,
0: धूपी चली गई। वास्तव में जेठ ने दिखाया कि हम क्यों जेठ हैं।
1: करेक्ट,
0: कुछ ही दिनों में दिखा दिया उसने कि लोग
1: बिल्कुल। अच्छा, कल किसी आप लोगों ने देखा कि चुरू में जो धूल भरी आंधी आई है राजस्थान में, कल न्यूज देखा आप लोगों ने? नहीं देखा
2: सुना।
1: कल जो आंधी आई है वो रेत की आंधी आई है पूरे में, ऐसा जैसे कोई मूवी में कोई सीन चल रहा हो कि कोई ब्लास्ट हो गया हो, हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं, बड़ी जबरदस्त आंधी आई थी।
0: अच्छा, उस आंधी का कोई नाम नहीं दिया गया कि कुछ दिया गया?
1: अब नाम तो मुझे नहीं लगता, अगर नाम देना होगा तो आप क्या देंगे नाम उसको?
0: अब जैसे सुनामी होता है तो पानी में आ गया, वही मैं सोच रहा हूँ कि धुरांधी कर दिया जाए क्या?
1: धुरांधी, धुरंधर चल भी रहा है, बहुत
0: धुरंधर चल भी रहा है।
1: धुरांधी सही है,
0: सही
1: लॉक किया जाए।
0: जी वास्तव मतलब कुदरत जो है वो जितना हम लोगों ने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है, हमको लगता है कि अब चीज़ें कुछ अगेंस्ट हो रही हैं। जैसे मतलब पहले की अगर हम बात करें तो भाई गर्मी है तो इंसान गर्मी को जानता था कि गर्मी है, हाथ का बेना चलता था लोगों का। और अब हम ये पंखे की तरफ आए, पंखे से काम नहीं चला तो हमने फिर कूलर आजमाया, और जब कूलर भी फेल हो गया तो हम एसी की तरफ आए। और अगर एसी में आप लगातार 1 साल सो लेते हैं तो फिर आपको इतनी बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि पसीना आपका बाहर निकलने नहीं पाता कि मतलब उसको फिर बाद में एनालाइज करना पड़ता है कि अरे यार तो गलत हो गया, एसी में हम सो गए और 4-5 महीने लगातार अगर आपने ऐसा किया तो वैज्ञानिकों का ये दावा है कि वो आपके सेहत के लिए नहीं अच्छी बात है।
1: आपका क्या दावा है?
0: नहीं, हमारा दवा नहीं, असलियत में हम 30 से ज़्यादा परेश नहीं चलाते। 30 मतलब
1: चलाते हैं आप भी?
0: नहीं चलाते हैं, कुछ देर के लिए गए, आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, थोड़ा सा रूम ठंडा हुआ। अच्छा। उसके पश्चात हाँ, मेरा मानना है गर्मी है तो गर्मी लगनी चाहिए।
1: करेक्ट,
0: बारिश हो तो इंसान को हल्का सा, एक शेर है कि खुद को इतना भी न बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। तो अगर वो पसीने की बारिश भी हो रही है तो भी थोड़ा सा भीगना बनता है।
1: और अगर पसीना नहीं निकलता है तो सुई से छेद कर सकते हैं बॉडी में अलग से, भाई पोर्स खोलने के लिए।
0: पोर्स खोलने के लिए होता है, होना चाहिए। मतलब कुदरत के साथ छेड़खानी बहुत अच्छी बात नहीं है।
1: करेक्ट,
0: क्या लगता है आपको?
1: बहुत सही बात कहा है। और फिलहाल हम अब इस शो का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर चुके हैं आगाज का, और चलते हैं प्राची की तरफ, क्योंकि प्राची सोच रही है ये कि अगर गर्मी दूर हो गई हो तो हम गाना शुरू करें तो भाई हमें इनका चेहरा देख के लगा कि अब शुरू करवा ही देना चाहिए। ऑलराइट, सो अगली जो आवाज आ रही है गोंडा की, बहुत बड़ी टैलेंट है, ऑफ कोर्स सिंगिंग में हाथ आजमा रही हैं और फ्यूचर भी इसी में चाहती हैं। हम सभी गोंडा वासियों की 89.6 एफएम की हम सभी की दुआएं प्राची के साथ है। सो चलिए आइए प्राची की खूबसूरत सी आवाज में पहला नगमा सुनते हैं आज का। क्या है आज का पहला नगमा?
2: जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: क्या बात है,
0: तुम देना साथ में।
1: और जब कोई मौसम बिगड़ जाए
2: तब भी साथ देना भगवान।
1: ऑल राइट, तो कोई भी बिगड़े लेकिन आपको साथ रहना ही रहना है। लेकिन जब कोई सांड बिगड़ जाए
2: तो डंडा होना चाहिए।
1: साथ साथ ना देना, निकल लेना जिसको जहाँ जगह मिलेगी, बाद में मिल लेंगे, बाद में मिल लेंगे।
0: मतलब एक ऐसा माजरा हुआ है, मतलब वो सब्जी मंडी में दो सांड डले, मैंने पहली बार देखा कि उन सांडों को देखकर लगता था ये शेर से कम नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने के पास, इतनी ताकत होती है उन लोगों के पास।
1: सही है,
0: बाप से बाप।
1: फिर आपके एक इशारे से डाउन हो गए होंगे।
0: तो मतलब हम गए, हमने एक झपड़ मारा, हमने कहा
1: पुरखों की बात हर कोई मान लेता है। खैर, चलते हैं प्राची की तरफ। तो चलिए, बहुत खूबसूरत गाना आपने बताया है
2: जी।
1: और हम इसको सुनने के लिए एकदम तैयार है।

0: यू सर, थैंक
1: यू। क्या बात है,
2: क्या बात है भाई, तालियां वाह। तुम देना साथ मेरा। अच्छा, हमको लगता है कि अगर किसी का साथ मिल जाता है तो शायद जिंदगी खूबसूरत हो जाती है।
0: जी।
2: अकेलापन कहाँ तक काम कर सकता है?
1: लेकिन इसी अकेलेपन में कुछ लोग स्मोकिंग भी साथ ले लेते हैं।
2: अच्छा, मतलब स्मोकिंग करनी हो तो अकेलापन चाहिए?
1: नहीं, आपने साथ की बात की है, तो साथ किस चीज का है ये बड़ा मायने रखता है।
2: हाँ भाई, तुम देना साथ मेरा, मतलब कौन देना?
0: सिगार देगा या सियार देगा?
2: नहीं नहीं नहीं, जो प्राची ने गीत गाया तुम देना साथ मेरा, यहाँ पर तुम कौन है?
1: तुम कौन
0: मेरे
1: है?
0: मेरे लिए इमेजिनेशन है।
2: अच्छा,
1: कई बार गाना सिर्फ गाना होता है,
2: लेकिन उसको
1: आपकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है।
2: नहीं, हिस्ट्री नहीं होती है। हम देखिए,
1: क्योंकि हर कोई आप जैसा हुनरमंद नहीं होता।
2: नहीं, मतलब आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम, आपके लिए कुछ बन चुका है।
1: अच्छा,
2: तो ऐसा, ऐसी कोई गुड न्यूज है क्या?
1: और आपकी गुलाबी शर्ट बता रही है।
2: अरे
1: और राइट, सो बहुत प्यारा, लेकिन ये गाना गाया बहुत अच्छा था। और ये बड़ी सच्ची बात है कि जब तक उजालों में होते हैं सभी साथ देते हैं, अंधेरों में बड़ी बात होती है। एंड मुझे लगता है कि हाँ, ये बात सच है, क्योंकि हर कोई तब तक होता है जब तक आप चमक रहे होते हैं, उरूज पर होते हैं। पर शायद हम कई बार खुद भी गलती करते हैं कि जब हमें कुछ हासिल हो रहा होता तो हम ऐसे लोगों को पीछे छोड़ते जाते हैं जो हमारे उस वक्त में थे जब हम कुछ भी नहीं थे,
2: कुछ भी नहीं।
0: वेरी राइट सर।
1: और बाद में हमको एहसास होता है कि हम बाकी सभी के चक्कर गए में और शायद उन जेम्स को खो दिया है, वो हीरे जो हमारे रत्न थे, जो हमारे वक्त के शुरू होने से पहले हमारे साथ थे। सो अगर कभी भी कोई ऐसी पोजीशन पे हम हैं तो वो हमारे लिए वैसे ही होने चाहिए, उसी बॉन्डिंग में होने चाहिए,
2: ताकि हम जवाल में भी उनको उसी तरीके से
1: याद कर सके। बेशक, सही बात है। तो क्या अर्ज कर रही हैं हमारी अजिता जी? देखिए, कहीं खो गई थी ये।
0: हाँ सर, मैं खो जाती हूँ, क्या करूँ,
2: मतलब बैठे बैठे यूं ही खो जाती हूँ।
1: एक एड आया था जिसका टैगलाइन थी खाओ और खो जाओ, बताइए वो कौन सा एड है?
0: पता नहीं सर।
1: प्राची, कौन सा ऐड है? प्राची सोच रही थी कि भी अगला नंबर हम ही से पूछेंगे। हाँ, यही बताओ। हमारे ख्याल से ये प्रश्न हमारे श्रोताओं के लिए हम छोड़ देते हैं।
2: हाँ,
1: जो इस वक्त हमको सुन रहे हैं कि भाई डैश खाओ और खुद जान जाओ के बाद खाओ और खो जाओ वाला भी एक ऐड आया था। सो डैश खाओ और खो जाओ, डैश नहीं खाना, डैश में कुछ जगह है उसको खाना है। कोई बात नहीं, बताइए कि आज इतने दिन बाद आप आई हैं।
0: नहीं, मैं पिछले से।
1: अरे 6 दिन बाद आप आएंगे। हाँ, भाई मतलब ये थोड़ी ना होता है, 6 दिन का वक्फा पूरा होता है, 6 दिन बहुत बड़ी बात होती है। 6 दिन में क्या क्या हो जाता है आरजे मनु, बताइए जरा।
2: 6 दिन में क्या क्या हो जाता है?
0: 6 सेकंड में बहुत कुछ हो जाता है।
2: तब सोचिए आप, तब तो बहुत दिन के बाद नहीं आई,
0: बहुत दिन के बाद आई।
2: 24 सुगड़ा कर दीजिए इतने घंटे, फिर 60 सुगड़ा कर दीजिए इतने मिनट।
0: मैंने 6 दिन पहले अपने घर के पास में एक आम का पेड़ देखा था, उसमें कई सारे आम लगे थे। और आज जब संडे में मैं ऊपर गई छत पे,
1: अच्छा,
0: तो मैंने देखा आम सारे गायब थे, गुठलियां छत पे पड़ी हुई थी, आम सारे गायब थे।
2: मतलब आपने अदनान सर को अपना घर बता दिया है?
0: नहीं, घर नहीं, मैं तो आम के पेड़ की बात कर,
1: पेड़ की बात कर।
2: तो मतलब ये गए होंगे खाकर गुठली फेंक दी होगी।
1: गए तो होंगे, खाया भी होगा, कि चढ़ के किसने तोड़ा होगा ये सभी जानते हैं।
0: अब एक साथ तो सर नहीं, इतने ढेर सारे आम नहीं खाए होंगे। हो सकता सर आप भी साथ में गए।
2: हाँ, दोनों साथ में गए होंगे,
1: ट्रेनिंग चढ़ने की इन्हीं की है।
0: और
2: मतलब वो आम खाया किसने, ये रहस्य भी खुला।
0: हाँ, ये रहस्य है।
2: अच्छा,
0: ये मुझे नहीं पता है,
2: मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए ना।
0: और मैं यही सोच,
1: मिस्ट्री रहने दिया जाए।
0: मिस्ट्री को मिस्ट्री ही रहने दीजिए।
1: करेक्ट।
2: अब इसको हिस्ट्री बना देते हैं, छोड़ देते हैं।
0: हाँ, बन सकता है, वैसे इतनी कुछ खास नहीं है। हाँ, आज की बारिश बड़ी खास थी, क्योंकि पहले धूप थी, फिर अचानक से बादल हुए और बारिश अचानक से स्टार्ट हुई। भाई मैं तो खूब भीगी, क्योंकि मुझे बारिश में भीगने का बड़ा शौक है।
2: आज बारिश हुई थी?
0: हाँ सर, आज बारिश हुई थी, उसके बाद में फिर धूप हुई। और उस बारिश में कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 लीटर तो मैंने पानी बचा लिया रोज नहाने का।
2: हाँ,
0: हाँ। और जब बारिश में मैं भीग रही थी तो मैंने पिछले साल एक कविता लिखी थी बरसात में
2: जी।
0: कविता मुझे याद आ गई।
1: अरे वाह क्या बात।
0: लिसनर्स को मैं वो कविता फिर से सुनाना चाहती हूँ।
1: प्लीज प्लीज प्लीज जरूर सुनाइए।
0: थैंक यू सो मच सर। मैंने लास्ट ईयर में एक कविता लिखी थी बरसात।
2: बरसात
0: जी। और ये उसे क्या कहते हैं जो प्रेषित होती है? प्रेषित ही तो कहते हैं सर।
2: मतलब पब्लिश कहीं पर पब्लिश हुई थी।
0: जी जी।
2: अच्छा अच्छा।
0: मेरी ये कविता प्रेषित ही तो कहते हैं।
2: हाँ।
1: प्रेषित मतलब ट्रांसफर हो गई थी, निकल गया, सेंड किया गया, सॉरी।
0: अच्छा।
1: सो जी
0: प्रेषित
2: मतलब कहीं छपी थी, मतलब
0: हाँ हाँ
2: किसी हाँ। पत्रिका में छपी
0: हाँ,
2: थी।
0: पत्रिका में
2: तो ये प्रकाशित हुई थी।
1: प्रकाशित हुई थी।
0: वही मैं कह रही प्रेषित
3: प्रकाशित हुई थी।
0: प्रकाशित हुई। तो उसी कविता को मैं फिर से दोहराना चाह रही हूँ। मैंने लिखा था लास्ट ईयर में वही कि बरसे पानी रिमझिम रिमझिम, बरसे पानी रिमझिम रिमझिम, पत्तों पे बूंदे करती छिलमिल छिलमिल, भोर हुई कलियां भी गई हैं सब खिल, बरसात की बूंदें फूलों से गई हैं मिल, घटा बिछाई है काली काली, भीगी भीगी है हर डाली डाली।
2: क्या बात।
0: बरसे पानी रिमझिम रिमझिम, पत्तों पे बूंदें करती छिलमिल छिलमिल, पंख फैलाकर नाच नाच कर पपीहा बोले पीहू पीहू, फुदक फुदक कर कोयल बोले कुहू कुहू, बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़, बिजली कड़के कड़कड़ कड़कड़, बरसी पानी रिमझिम रिमझिम, पत्तों पे बूंदे करती छिलमिल छिलमिल, गाँव की सूंधी सी महकती मिट्टी, कच्चा रास्ता भीगी भीगी घास, मेरे तो गए पैर फिसल, अब तो गिरी पानी में मैं भी छमा छम।
2: क्या बात है, क्या बात, वाह, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये।
0: जी, ये मेरे बचपन का है।
1: वाओ, क्या बात है।
0: बरसे पानी रिमझिम रिमझिम, पत्तों पे बूंदी करती छिलमिल छिलमिल, खेतों में अब छाई थी हरियाली, एक भी पत्ती ना थी अब सूखी, और जगह न थी कोई अब खाली, चलो सखी हम एक कागज की एक नाव बनाए, पूरे गांव में उसको तैराएं, बरसे पानी रिमझिम रिमझिम, पत्तों पे बूंदे करती छिलमिल छिलमिल, हवा भी है आज बड़ी चंचल, जैसे कानों में कुछ कहती हो कलकल, मेढक भी करती हैं टैटल टैटल, ऐसे बरस रहे हैं बादल घुमड़ घुमड़ कर, बरसे पानी रिमझिम रिमझिम, पत्तों पे बूंदे करती छिलमिल छिलमिल, घर के पास है एक पोखरा, जो दिख रहा है वो भी अब भरा भरा, मछलियों का तो मानो राज हो गया हो, निकल कर पोखरे से मतलब निकल कर बाहर पोखरे से घूम रहे हैं पूरा गांव, एक के पीछे एक तैर रही है रंग बिरंगी प्यारी प्यारी, और मैं डरती हूँ छू ना जाए इन्हें मेरा पाँव, दर्पण की तरह साफ है पानी जिसमें खेल रही है मछली रानी, बरसी पानी रिमझिम रिमझिम, पत्तों पे बूंदी करती छिलमिल छिलमिल, हुई हवा जब तेज उड़ गया मेरा छाता, हुई हवा जब तेज उड़ गया मेरा रंग बिरंगा छाता, जो था मुझको खूब भाता, घूम लिया अब पूरा गांव, वापस लौट के जब घर हम, बड़ी चाव से हम सबने खाई भजियां गरम गरम, बरसे पानी रिमझिम रिमझिम, पत्तों पे बूंदी करती छिलमिल छिलमिल।
2: क्या बात है भाई, बहुत सजीव वर्णन।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत खूब। और इस तरह बारिश की यादें जो बचपन की आपने बताई है, मेरे ख्याल से सिर्फ आप एंजॉय नहीं कर रही थी, ये यहाँ बैठी प्राची भी उसको एंजॉय कर रही थी।
0: जी,
1: मैं
0: जी,
1: भी देख रहा था बचपन का वो नज़ारा जो आपने इस कविता के माध्यम से दिखाया।
0: सूखी मिट्टी जब बारिश होती है तो जब वो भीगती है
1: सूंधी हो जाती है,
0: सूंधी सी जो होती है, मन करता मैं खा लूं।
2: लेकिन
0: इतनी अच्छी महक होती है,
2: वास्तव में बहुत प्यारी महक।
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में सो रहे हो और लेटे ही हो 12-1 बजे के आसपास और अचानक से खुशबू अजीब सी आई हो, आप आसपास देखने लगे हो क्या है क्या है क्या है, फिर लगा हो कि अच्छा बाहर बारिश शुरू हो गई
0: है
1: और उसकी सौंधी खुशबू आ रही है,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: तो ऐसा लगता है वाह, मतलब ये क्या नज़ारा है, मतलब क्या स्मेल है।
2: सही बात है, कुदरत ने हमको खुश होने के लिए बहुत कुछ दिया है,
1: बहुत कुछ दिया है।
2: हाँ, ये बात आपने सही कही
1: बिल्कुल। और गुंडा को आर्चे मनु दिया है।
0: क्या बात है।
1: Alright, so चलिए।
2: नहीं, जब ये बारिश की बात हो रही थी मुझको मुनव्वर राणा साहब याद आए।
1: ओहो,
2: उन्होंने कहा कि यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है।
1: वाह,
2: मतलब जो बच्चों का बचपन होता है तो मतलब उसमें खूब याद कीजिए, लेकिन अब अगर आप जाते हैं और फिर वो होता है तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ। तो लगता है कि बचपन में बारिश का बड़ा मजा है।
1: सही बात है,
2: है कि नहीं? मतलब हम सभी लोगों ने, हमको लगता है कि एंजॉय किया होगा अपने बचपन में बारिश की बूंदों को।
0: सर, मैं तो आज भी बारिश होती है मैं खुश हो जाती हूँ।
2: नहीं, बहुत अच्छी बात है।
1: सही बात है, बारिश नेचर को ही बहुत पसंद है। जब बारिश होता है उसके बाद सब कुछ देखिए कितना साफ साफ।
0: हाँ, फ्रेश, पत्तियों पे जो डस्ट होती है
1: वो हो जाती है, रोड से एकदम साफ लगती है, हवाएं ठंडी लगती है, सब कुछ बहुत फ्रेश सा
0: और लगता है। सर, सबसे अच्छा लगता है वो जो पेड़ होते हैं ना, जो बहुत मतलब बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत हैवी होते हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं, उससे क्या कहते हैं, हिलोरे मारते हैं, जो हवा चलती है और बारिश हो रही होती है, वो गजब का सीन।
1: हाँ, जब हवा के साथ
0: अभी मेरी आंखों में ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे घर के पास में लिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं, वो जब ऐसे हवा चलती है, बारिश होती है, ऐसे हिलते हैं, ऐसा लग रहा है अभी इमेजिन में दिमाग में बना हुआ है कि हाँ वो ऐसे हिल रहे थे।
1: अच्छा, ज्यादा दूर तो नहीं, कल की बात है, कल जब हम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में लखनऊ रोड निकले थे शाम में 6:30 के आसपास, उस टाइम का जो सनसेट था एकदम रेड रेड सा सन था, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा था, बादलों के बीच में जब जा रहा था सूरज, डूब रहा था, तो बहुत दिन बाद रोड साइड हम लोग बैठे और वहाँ कूलर में चाय एंजॉय कर रहे थे, लोगों को देख रहे थे और शाम बड़ी खूबसूरत थी। वो टाइम याद आया कि सारी चीज़ों से दूर बस जिस मोमेंट में बैठे हों बस वहीं उसी जगह को देखते हुए महसूस करना उन चीज़ों को। कई बार लाइफ पूरे दिन में बस कुछ सेकंड्स के लिए मिल जाती है।
0: यस सर, वही चीज मैंने कहा,
1: लगता है कि हाँ ये लाइफ थी जो अभी 10 मिनट या कुछ सेकंड्स की गई है, दिस इज द लाइफ।
0: और आज इस बारिश से एक थॉट आया मेरे मन में कि जो भी चीजें होती हैं वक्त, वो एक क्षणिक होता है, कहते हैं एक दिन पूरा 24 घंटे का होता है, लेकिन उस 24 घंटे में कुछ ऐसी, या यूं कह लीजिए नेचर का कोई सीन होता है या कुछ भी है, वो बस बहुत कम टाइम के लिए होता है। जैसे आज बारिश हुई थोड़ी देर के लिए, मैं नहाई, क्या पता कुछ लोगों ने नहाया भी कि नहीं।
1: नहीं, आप आरजे मनु की तरफ क्यों देख रहे सके? ऐसा नहीं है, देखिए अपनी बात आपने तक रखी है, बट आप किसी को कह नहीं सकते ना।
2: नहीं, वो बात ठीक है, देखिए हमारे बाल अभी तक गीले हैं। आपने अदनान सर की तरफ, हाँ अदनान सर की तरफ आप देखिए तो सूखे।
1: अरे आप देख लीजिए, आपको देख लिया, बराबर हो गया।
2: नहीं, मतलब बालों से पता चल जाता है ना।
3: सर, ऑयल भी तो लगा सकते हैं बालों में, ऑयल से भी तो गीले हो जाते हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल, ऑयल से भी गीले हो जाते हैं। हमको लगता है भाई बहुत ढेर सारी बातें हो चुकी, क्यों ना एक संगीत में अंतराल ले लिया जाए।
1: बिल्कुल, एक संगीत में अंतराल ले लेते हैं और आने के बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं भाई नशा मुक्ति से बचने की, क्योंकि आज दिन है वर्ल्ड नो टोबैको डे का। सो चलिए इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार वापस से आते हैं और आपस में एक दूसरे का एक्सपीरियंस साझा करते हैं और बात करते हैं कि आखिर नशा और सस्ता नशा क्या है।
2: वाह क्या बात है, टॉपिक अच्छा है।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: हाँ जी, तो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके अपने ओपन माइक वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई, आने के बाद हमने कहा था आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, क्या लगता है भाई आज तंबाकू निषेध दिवस है? ये तंबाकू आखिर किस तरह से लोगों की जिंदगियों में असर करता है, और एक सवाल कि नशा और सस्ता नशा क्या होता है, क्या फर्क होता है नशे में और सस्ते नशे में, कोई बताएगा?
1: सर, सस्ता नशा यही है, तंबाकू ही है,
0: और
1: महंगा नशा ये है कि जिस चीज का हम नशा कर लें फिर वो चाहे।
2: महंगा नशा हमको लगता है जो ड्रग्स होते हैं उनको बोला जाता है।
1: अरे नहीं सर,
0: आप बहुत सस्ती सोच रखते हैं।
1: सफलता का नशा सर, हमें कुछ मुकाम
0: करेक्ट, क्या बात है, एकदम एग्जैक्टली। अगर नशा है तो पैशन का, अपने करियर का, अपने सपनों का, अपनी हॉबीज का नशा होता है,
2: क्या बात।
0: और ये सस्ते नशे हैं जो पी लिया और कहा कि भाई अब हो गया,
1: बस हम ही हमें।
0: करेक्ट, हम ही हमें। अच्छा, वो ऐसा लगता है जैसे वो विल पावर जिनकी कमजोर होती वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है निकोटीन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रिगर करता, माइंड रिलैक्स्ड होता है, तो उनको लगता है यही एक सॉल्यूशन है हमारे पास में। लेकिन जब आप अपने पे पूरा बैलेंस रखते हैं, मैनेजमेंट खुद के लिए रखते हैं, तो आप कर ले जाते हैं आराम से, क्योंकि आपको खुद को ट्रीट करना होता है।
2: सही बात।
0: बट ऐसे कई सारे केसेस, मैं मॉर्निंग में भी लगातार जब बात कर रहा था कॉलिंग प्रोग्राम में, तो उसमें भी कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, घर वाले ज़्यादा भुगतते हैं। वजह क्या है कि जो करता है वो तो बीमार हो जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, वो कमाने वाला होता है, उसके पीछे जो घर वाले होते हैं, प्रॉब्लम्स उनके लिए आती है। जब समाज में पता चलता है तो सामाजिक प्रतिष्ठा पे भी बहुत असर पड़ता है,
2: असर पड़ता है
0: कि भाई ये नशे करते हैं। सो आज फिलहाल हम तंबाकू निषेध दिवस की बात कर रहे हैं। तंबाकू से एक सर्वे जब हुआ था, बताया गया था कि भाई हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता का इतना बड़ा, गुटखा खा खा के थूकने की वजह से वो तक उसमें काफ़ी कटान हो गई थी, बताइए। सो इतना कास्टिक होता है, इतना ज़्यादा नुकसानदेह होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं?
2: सही बात है, और इन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप दूर भी किया जा सकता है।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। सो प्राची या आप अजिता जी, आप लोग के कोई पहचान में कभी ऐसा कुछ देखा है किसी को बदलते हुए कि नशे से बाहर आए हों, उबर आए हों? ओके, क्या रहा है?
1: मेरे एक भैया है, पहले वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, स्मोकिंग भी करते थे।
0: ओके,
1: और मैंने बोल बोल के छेड़ के उनको मैंने छुड़वा दिया। और अब तो उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं, और आज भी वो कहते हैं कि ये मेरी बहन है, उसने बोल बोल के मुझे इतना, मैं बोलती थी कुछ ना कुछ, हमेशा कमेंट पे कमेंट करती थी, और ऐसे गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट करती थी उनके फ्रेंड्स के सामने कि उन्हें खराब लगता था, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये अच्छा लगा।
0: वाह, क्या बात है, एक चेंज स्टोरी आपने अपने भैया की बताई कि किस तरह से शादी से पहले पहले उनको आपने छुड़वा दिया।
1: जी,
0: वेरी नाइस। कुछ ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है?
3: सर, मैंने जिसको भी देखा उसका बढ़ गया है, घटा तो नहीं
0: है। केस थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा सही है
3: जी। तो आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि किसी ने नशा शुरू किया हो, उसने छोड़ दिया हो।
1: नहीं, मैंने देखा है,
3: एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे।
1: एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जब उन्हें ये लगता है कि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कुछ भी वो अपने मन की करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है तो अपना नशा भी बढ़ा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उन्हें लगता है सब कुछ हमें ही करना है, तो धीरे धीरे करके वो सब एक किनारे कर देते हैं, जितनी भी उनकी गंदी हरकतें होती हैं सब छूट जाती हैं।
0: अच्छा, ये जो गुटके वाले हैं या जो स्मोकिंग करने वाले हैं, ये हम सभी के बहुत आसपास है।
1: जी जी, बहुत गंदा लगता है।
0: ठीक है, कई बार घर में हमारे लोग होते हैं और कई बार हमारे मोहल्ले में तो होते ही होते हैं, डेफिनेटली। तो बहाने क्या क्या होते हैं जब उनसे कहो या कोई कहता है कि इसको छोड़ो, तो वो क्या क्या लॉजिक देते हैं? क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग से लॉजिक हमको भी मिलते हैं, आप लोगों को क्या क्या मिलते हैं?
1: वो
0: कई बार तो होता है कि भाई ये हमारा टॉनिक है
1: जी,
0: इसको किए बिना हम काम शुरू ही नहीं कर पाते।
1: नहीं, मुझे भी ऐसा मिलता था भैया, जब मैं कहती थी तो भैया पहले मुझे सॉरी बोलते थे, तो मैं कहती थी अब भाई ये बताओ सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये नहीं छोड़ोगे इसलिए बोल रहे हो, या छोड़ दोगे इसलिए बोल रहे हो? तो कहते थे अभी बताता हूँ, फिर वो वहाँ से चले जाते थे। फिर मैंने देखा कई बार वो फिर से अपना क्या बोलते हैं, अपनी दवा लेके फिर आए, फिर कह रहे हैं मैं इसलिए सॉरी बोल रहा था
0: okay.
1: कि छूटेगा तो नहीं, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे छूट गया. फिलहाल आज मेरे पास में एक कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं,
0: इंपॉर्टेंट है प्लीज,
1: और जिसका नाम मैंने दिया है कल आज और कल.
2: कल आज और कल, क्या बात.
1: जो बीत गया कल वो, जो आज देख रही हूँ वो आज, और जो आने वाला कल है वो. उसी को लेके मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, जो चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ. कि अब घर को घर न रख के मकान कर लिया, कि अब घर को घर न रख के मकान कर लिया, गैरों को दिल में रखा और अपनों को नज़रअंदाज कर दिया. गैरों को दिल में रखा और अपनों को नज़रअंदाज कर दिया. सच्ची बातें तो चुभती हैं, सच्ची बातें तो चुभती हैं, झूठ पर एतवार कर लिया. जो लोग सच बोलते हैं उनसे लोग हमेशा दूर हो जाते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठी तारीफें करते हैं, उन पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, उन्हीं लोग बहुत प्यार करते हैं. एक घर था सब एक साथ रहते थे, एक घर था सब एक साथ रहते थे, चार घर बनाकर ना जाने कौन सा उपकार कर दिया. पिताजी अब भी अकेले रहते हैं, जो पिताजी हैं अभी अकेले रहते हैं, चश्मे का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, कौन सा उनके सर का बोझ उतार दिया. जवाब तलब करते वक्त, जवाब तलब करते वक्त ना शर्म की ना लिहाज किया, जिस बाप ने तपती धूप में चेहरे का रंग खो के तुम्हें कामयाब किया, जिस बाप ने तपती धूप में चेहरे का रंग खो के तुम्हें कामयाब किया. बचपन में जब तुम लड़खड़ाए तब एक पिता ने ही तुम्हें सहारे के लिए अपना हाथ दिया. आज उसी बूढ़े बाप को देख अकेला सब ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया. और हद तो तब हो गई जब चंद कागज़ के टुकड़ों को रखा संभाल के, जब चंद कागज़ के टुकड़ों को रखा संभाल के और अपनों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया.
2: क्या बात.
1: ये अंत लाइन थी.
2: बहुत संवेदनशील,
0: बहुत ज़्यादा, बहुत सेंसिटिव था.
1: कि मैं देख रही हूँ आजकल, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या लोगों की सोच बहुत ज़्यादा तेज़ है, या लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, या लोग बहुत आगे जा रहे हैं. कि मतलब माँ बाप में, या मतलब माँ बाप मीन्स ये कि पेरेंट्स का बच्चों से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है आजकल. मैं देख रही हूँ अक्सर करके बात बिगड़ जाती है घर में. जो एक ही घर में जब रहते थे बच्चे, जब चार बच्चे छोटे होते हैं तो एक पिता होता है अकेले, सारी चीज़ें हैंडल करता है अकेले, जिम्मेदारी उठाता है. और जब वही पिता बूढ़ा हो जा रहा है,
0: करेक्ट,
1: तो वो चार बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं.
0: बेशक, और ये नियत की बात है. और मुझे लगता है कि एज गैप जनरेशन हमेशा से रहता है
1: जी,
0: लेकिन अपनी जो रिस्पेक्ट है, जो वैल्यूज़ है, उसके बिना लाइफ नहीं चलती है. सो आपकी अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए और सभी के लिए होनी चाहिए. जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरे पे डिपेंड करता है कि हम उससे बिहेवियर कैसे करेंगे. नहीं, आप इतने वीक नहीं हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है आप खुद को जानते हैं.
1: जी,
2: क्या बात है
0: ना. तो वो आप कैसे है, अगर दूसरा गुस्सा दिलाना चाहेंगे मतलब आप उबल जाएंगे. इतने आसान है आप
1: नहीं होना चाहिए.
0: आप अपने अकॉर्डिंग है. राइट,
1: विकास विकृति सर कहते हैं कि अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं गुस्सा करूंगा जब मेरा मन करेगा.
0: मन करेगा, ऑब्वियसली बात है, अपने मन से हम करेंगे, दूसरे के दिलाने से क्या है, हम कर लेंगे. सही बात है, बहुत प्यारी बात है. बहुत प्यारे नोट पे आप लेकर के आई हैं, और मुझे लगता है ये पैगाम हर शख्स के लिए है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है. अपने पेरेंट्स अगर हैं, उनमें से कोई एक भी है या कोई बड़ा है, तो ज़रूर उसको पूरी रेस्पेक्ट दें, क्योंकि इस एज में और कुछ भी उनको चाहिए नहीं होता है. कुछ करने को रह नहीं जाता है। करेक्ट, बिल्कुल। सो चलिए अब प्राची की तरफ भी चलते हैं भाई, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग सुनाने वाली हैं, जैसा कि इन्होंने म्यूजिकल ब्रेक के बीच में हम लोगों से वादा किया था। एंड ये सॉन्ग सुनने के बाद लिटरली हमारे जो लिसनर्स हैं ये बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं और ये कहने वाले क्या बात है, हिंदी लैंग्वेज के अलावा भी भाई हमारे गोंडा वाले इतना प्यारा सुर लगा के गा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गा लेते हैं, कोई शक की बात नहीं है। तो इसका उदाहरण जो है वो पेश करने वाली हैं प्राची, और अपनी आवाज़ में एक मस्त सा, एक बढ़िया सा, एक सूदिंग सा पंजाबी सॉन्ग सुनाने वाली हैं।
1: जी

0: पंजाबी सॉन्ग फिर इतने प्यारे प्यारे अल्फाज, हालांकि हम में से कोई पंजाबी प्रॉपर नहीं जानता हाँ, लेकिन उसके वर्ड से अंदाजा आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। ठीक है कि तुम्हारे सारे हिस्से का दुख मैं ले लूं और तुम्हें माँ की तरह चाहती हूँ, मतलब किसी प्रेमिका का माँ की तरह चाहना, मतलब एक एग्जांपल देखिए,
1: मतलब क्या शानदार तलफ्फुज़, मतलब
0: तलफ्फुज़ और अंदाज मेन चीज, फीलिंग्स बरकरार रखी पूरे सॉन्ग्स के दौरान। वाओ क्या बात है, शानदार बहुत बढ़िया,
2: थैंक यू सर, मतलब
0: बहुत प्यारा, और मुझे लगता है कि मेरे लिसनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच टू यू। तो चलिए भाई, दो मैसेजेस भी आ गए। मनीष शर्मा आपका भी स्वागत है, थैंक यू सो मच। नीना का है नमस्कार नमस्कार। इसके अलावा आप हमको फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। सो फिलहाल आज का शो कैसा रहा भाई, आप लोगों को कैसा लगा, हमारे पार्टिसिपेंट से हम जाना चाहेंगे।
2: बहुत अच्छा लगा मुझे तो।
0: क्या बात है। सो संडे को कुल मिलाकर के हम यहाँ पे आकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं, अपने टैलेंट पे काम कर लेते हैं। एक ऐसा वक्त होता है जब बहुत ही सेपरेटली हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें लिटरली पसंद है, दिल से पसंद है, काम को छोड़ करके वो चीज जो हमें लगता है अच्छा लगता है वो करते हैं।
1: ये गुजारिश भी है कि भाई अगर आप लोग

लगा, एंड थैंक्स टू माई को होस्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो चलिए, फिलहाल आप सुन रहे थे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, धड़कता रहेगा, चलता रहेगा, और सुनते रहिए अपना गोंडा FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: बरस रही है सावन की पहली बारिश याद आई, भीगे मौसम में हमको उनकी खुशबू याद आई, जब मौसम ने ली अंगड़ाई हमने तुम्हारी याद दिलाई, खोए हुए उन लम्हों की हर एक जस्तुजू याद आई, तपती रेत में जैसे कोई बादल बरसे सावन का, मुझको भी उस प्यासी रूह की हर एक आरजू याद आई, दूर कहीं पर बजती थी जो पायल छमछम सावन की, उस आवाज में ऐ दोस्तों धड़कती हुई दिल की खुशबू याद आई। नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम इंडिया टॉप 20 में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर रेडियो ज्ञानसली, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। भाई आज सुबह सुबह मौसम ने एक अलग ही अंगड़ाई ली थी। आज खिड़की के बाहर मौसम ने खूबसूरत चादर ओढ़ ली थी, बादल आसमान में ऐसे घिर कर आए थे जैसे किसी शायर ने अपनी डायरी खोल कर बैठ गया हो। जब भी बारिश आती है ना तो दिल के सूने कोने में छुपे हुए कुछ पुराने नगमे, कुछ सुनहरे किस्से अपने आप बाहर आ जाते हैं। आज का मौसम जो थोड़ा सा रूहानी, थोड़ा सा जज्बाती था, इसीलिए आज हमारी इस महफिल का मिजाज भी थोड़ा सा शायराना होगा। हम आपको बता दें भाई, आज हम इस संगीत में आसमान से वो 20 गाने लेकर आए हैं, आसमान से नहीं बॉलीवुड से, लेकिन आपको जो महसूस होगा वो बारिश, और बारिश के दौरान वो लम्हे, वो नगमे, वो सुनहरी यादें जो आपने महसूस की हैं हर बारिश में। भाई पहली बारिश सबको पसंद आती है, हालांकि अब जो बारिश होती है वो बेमौसम होती है, लेकिन बारिश तो बारिश है, बेमौसम हो मौसम में हो क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी पानी बूंद बन के ज़मीन पर आता है, दिल में न जाने कितने अरमान, कितनी यादें जग जाती हैं। बचपन को कोई याद करता है, कोई अपने पसंदीदा गाने गुनगुनाता है। तो भैया आज तैयार रहिएगा, क्योंकि जिस तरह से मेरा मूड लग रहा है उसी तरह से आज आपको प्लेलिस्ट भी मिलने वाली है, बहुत खूबसूरत बॉलीवुड के 20 गाने, उनमें से आपका भी पसंदीदा कोई ना कोई ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें आपको नए से पुराने सारे वो नगमे मिलने वाले हैं जिन्होंने आपकी बारिश की यादों को बहुत खूबसूरत बनाया है। तो आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 20 की तरफ, और पहला गाना हम सुनते हैं अभिजीत की आवाज़ में, धूम से दिल भरा। एंड इसके बाद हम मिलेंगे अगली वाली बीच पर, अगले सॉन्ग पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सुनते रहिए इंडिया टॉप 20 अपनी आरजी के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम पर। आई होप आज की प्लेलिस्ट आपको पसंद आने वाली है, और पसंद आएगी ही, लेकिन उससे पहले आप लगाएंगे चैट बॉक्स में अटेंडेंस, क्योंकि आपकी अटेंडेंस है बेहद जरूरी। स्टे ट्यून
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 20.

0: मेरा
1: हां जी
0: दिल भरा दिल भरा अपन के तुम
1: अपन तेरा। समीर के बोल, प्रीतम का संगीत, अभिजीत और सौम्या की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे दिल भरा धूम फिल्म से। अभिषेक बच्चन का भाई इसमें जो रोल है ना, वही रोल मेरा है बाकियों की जिंदगी में, और हम बैठकर बस यही कहते हैं कि शुरू हो गया, अब ये भी शुरू हो गई। फिलहाल आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20 अपनी आरजी के साथ, आपकी अपने FM रेडियो ज्ञानोस 99.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और भैया आज धड़कन का दिल जरा जोरों से धड़काते हैं, बारिश होने लगी है और बारिश में अभी मत भीगा, बीमार पड़ जाएंगे, मतलब भीगना आराम से भीगना, अभी मत भीगना, बस कुछ बारिश थोड़ी और होने दीजिए और इस बदलते हुए मौसम में अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बारिश और धूप साथ साथ में निकल रही है। वेल, आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। सॉन्ग नंबर 19 आपका इंतज़ार कर रहा है, बागी फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज़ में आप इंजॉय करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सॉन्ग छम छम छम। और ये गाना जब आया था ना, और जब इस गाने को रिलीज़ किया गया था, उस दौरान जितनी भी लड़कियां मेरे आसपास थी, हर कोई बारिश में इसी गाने पर डांस कर रहा था, फुल डांस कर रहा था, ना जाने कितने के वीडियोज़ बन गए। और बशर्ते हमने भी कोशिश की थी, वो अलग बात है कि स्टेप्स इतने टफ थे कि हमने नहीं की, ट्यूटोरियल देखा, लेकिन ट्यूटोरियल देख के हमारे पैर आपस में ही उलझ गए और हमने डांस ही छोड़ दिया। बट अगर आपने कोशिश की है तो भैया एक बार दोबारा से कोशिश हो जाए इस गाने को एंजॉय करते हुए। अपना फीडबैक, अपनी रेटिंग ज़रूर दीजिएगा इस गाने को लेकर के, और आपकी मेमोरीज क्या हैं बारिश में ये मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 19, स्टे ट्यून्ड।
2: Radio Garasari 99.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 19.

0: और जैसे भैया श्रद्धा कपूर इसमें महसूस कर रही हैं खुद को मेन कैरेक्टर एनर्जी, और ऐसे ही आपको भी फील करते रहना है, आपको भी महसूस करते रहना है कि जो हम हैं वो कोई नहीं, चाय हम पानी तुम, और चाय कम पानी हम नहीं तुम एक्चुअली। फिलहाल हम आपको बता दें मुरली ठाकुर की आवाज़ में एंजॉय कर रहे थे बोल थे कुमार की, और संगीत था मीत ब्रोस का, यानी कि म्यूजिक था मीत ब्रोस का। ज़बरदस्त गाना, स्पेशली जब स्टार्टिंग होती है केरला के एक सीन से, और वो ज़बरदस्त ट्यून, आई लव दैट। फिलहाल भाई श्रद्धा कपूर की तरह आप भी खुद को हीरोइन समझा करें, जैसे रात आपका काजल चुरा सकता है, बादल आपके जुल्फों से बन सकते हैं, और बारिश आपके मुस्कान से होती है। तो इस तरह की एनर्जीज अपने अंदर रखिए, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप खूबसूरत हैं, आप बेमिसाल हैं। वो अलग बात है कि हम ये मानते नहीं हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें हमेशा टोकते रहते हैं कि भैया ऐसे नहीं करने का। इवन आपको ताने भी हीरोइंस के नाम पे मिलते हैं, बहुत ऐश्वर्य राय बन रहे हो, बहुत कैटरीना कैफ बन रहे हो, हाँ हाँ ठीक है, पता है कितने बड़े दीपिका पादुकोण। जब आपसे कोई ऐसे कहता है ना, तो जस्ट एक्सेप्ट दिस कि कितनी अप्रिशिएशन आपको मिल रही है, लोग आपको कितनी तारीफ दे रहे हैं, आप क्यों चिढ़ जाते हैं। चिढ़ना नहीं है दोस्तों, खुश होना है। अगर आपको कोई कहता है कि हाँ पता है सलमान खान की बॉडी बनाकर घूम रहे हो ना, तो भैया जस्ट से थैंक यू, कितनी बढ़िया तारीफ की है उन्होंने, और आप हैं कि मुंह चढ़ा लेते हैं, बना लेते हैं इधर उधर। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और हम कटरीना कटरीना चिल्ला रहे थे, लेकिन कटरीना तो नहीं, फिलहाल करीना ज़रूर आ चुकी है अपने अगले गाने को लेकर के। और अगला गाना है हमारा अक्षय कुमार के साथ गीला गीला गीला गीला गीला गीला। जी हाँ, मौसम है थोड़ा गीला, नहीं सुहा भी फिलहाल के लिए, धूप भी निकल चुकी है, अभी सिर्फ रास्ते गीले हैं, कई जगहों पर पानी भर चुका है, कुछ रास्तों में पानी भर चुका है, कुछ गलियों में पानी है थोड़ा थोड़ा। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी बाइक वाइक लेके निकले, स्पीड में ना निकले, नहीं तो आप घर से नहा कर निकलेंगे, बाहर आने के बाद दोबारा नहा जाएंगे, तो ऐसा ना करें। फिलहाल ध्यान रखें और इन्जॉय करें सॉन्ग नंबर 18 आपके अपने इंडिया टॉप 20 की प्लेलिस्ट में अपनी आरजीनती के साथ 89.6 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 18.

0: ए मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। आप सुन रहे हैं इस खूबसूरत से गीत को उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में। भैया बोल थे सुदर्शन फकीर जी के, और जिस तरह की इस गाने के बोल है ना कि आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी, और सेम हाल हमारे लिसनर्स का भी है। आना तो है लेकिन ज़रा देर लगेगी, और इस देरी का नुकसान ये होता है कि आप बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गाने मिस कर देते हैं। बस फिलहाल के लिए आप सुन रहे थे टॉप 20 काउंटडाउन वाला शो, सॉन्ग नंबर 17 आपने इन्जॉय किया अपनी आर चुनौती के साथ। और अब हम लेके चलेंगे उस ट्रेंडिंग गाने की तरफ जो आजकल इंस्टाग्राम पे कर रहा है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड, और इस गाने पर क्या लड़का क्या लड़की हर कोई ले रहा है वाइब, क्योंकि सावन का महीना भी आने वाला है, बारिश की हल्की हल्की फुहार आ चुकी है। तो इसी दौरान आइए हम आपको सुनाते हैं अलका जी की आवाज़ में थमके बरस, ओ जरा थमके बरस। ये गाना याद आया ना, बचपन में काफ़ी सुना होगा आपने और आजकल ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो क्यों ना आपके लिए भी हम इस गाने को पेश कर देते हैं। आप ज़रूर फरमाइएगा कि ये गाना आपको कैसा लगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 16.

0: हां जी, तो भाई आप सुन रहे हैं थम के बरस, ओ जरा थम के बरस। और अभी तो फिलहाल बरस नहीं रहा है, लेकिन सुबह बरस रहा था काफ़ी ज़बरदस्त। अब वो अलग बात है कि सिर्फ 15 मिनट, और 15 मिनट में ही हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया और हम मोरनी बन के, मेरा दिल जो मोर बन के नाच रहा था ना, तो मेरे दिमाग में भी वही गाना चल रहा था, मारे ही बड़ा में नाचे मोर। फिलहाल के लिए जब तक ये मोर नहीं नाचता है, तब तक हम चैट बॉक्स में चल लेते हैं और जो पैगाम, जो मैसेजेस आ चुके हैं हमारे लिसनर्स के, जो मैं सुन रहे हैं एप्लीकेशन से, उनके मैसेजेस को भी पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल आइए देखते हैं चैट बॉक्स में हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है। तो भाई हमारे साथ चैट बॉक्स में नव्या जी जुड़ गई हैं, जो ओके उससे पहले जो मैसेज आया है वो आया है जॉन जी का, और उन्होंने लिखा है हाय हाय कैसे हैं आप। नव्या जी लिख रही हैं वाओ वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, और आप दोनों का स्वागत करते हैं मेरे टॉप 20 में। अपनों को मनाना है ज़रा देर लगेगी, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मैं सुनते हैं हथियागढ़ से, लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम इंटर टॉप 20 में। गुड आफ्टरनून आरजी मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, क्या आपके उधर भी बारिश हो रही है? नहीं हो रही फिलहाल, आपने कहा है कि कल बीते और आज बारिश नहीं हुई है। वाह वाह वाह मैम, लिखा है नव्या जी ने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। एंड जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया है आज आपने, क्योंकि आज हमें सुबह सुबह बारिश के दर्शन हो चुके थे, कुछ बूंदें हमारे चेहरे को छू चुकी थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपके लिए भी बारिश का स्पेशल गाना बजा दिया जाए। ऑफकोर्स सावन आने से पहले सावन के स्वागत में कुछ सॉन्ग्स लगा दिए जाए, तो आप इंजॉय करें टॉप 20 के काउंट डाउन प्लेलिस्ट में म्यूजिक बारिश वाला, यानी कि मॉनसून वाला। फिलहाल आई एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 15। सॉन्ग नंबर 15 हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा गाना कभी जो बादल बरसे, और आज के गानों में आवाज़ सिर्फ किसी एक सिंगर की नहीं होने वाली है, बहुत सारे सिंगर की, लता जी की, आशा जी की, किशोर दा की, कुमार सानू की, उदित नारायण की, अरिजीत की, आतिफ की, और ऑफकोर्स आपकी फेवरेट अलका जी एंड श्रेया की भी, तो सुनना मत भूलिएगा। और मुझे लगता है फिलहाल आप गेस करते जाइए कि आज कौन कौन से गाने, कौन कौन से सिंगर्स की आवाज़ में आपको सुनने को मिलेंगे। देखते हैं आप कितने गानों को सही गेस करते हैं और कितने गाने हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद रहते हैं। तो एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 15, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गैरासली 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 15।

0: हाँ जी, तो आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज़ में बारिश, और इसको सुनने के बाद कुछ अल्फाज हैं, कुछ लाइंस हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो भैया आप तैयार हैं? क्योंकि मैंने आज आते ही आपको कुछ शायरी, कुछ नगमे सुनाए थे और कहा था कि भाई आज मेरा मूड शायराना है। तो आइए एक और कुछ लाइंस आपके लिए हो जाएं, और ये लाइंस बहुत ही खूबसूरत है। कुछ इस तरह से हैं कि तेरे आने की बहुत धूम मची है बारिश, कहीं उलझन कहीं लोगों को खुशी है बारिश, उसके बिन जख्म हर एक बूंद से पाया है मैंने, जैसे पानी नहीं पत्थर की हुई है बारिश, मेरे महबूब को महबूब यही मौसम है, इसीलिए मुझे भी महबूब रही है बारिश, है मेरी जीन है मेरी जान, मिजाज आपका मौसम की तरह, कभी सर्दी कभी गर्मी तो कभी है बारिश। और ये लाइन है आप सभी के लिए डेडिकेटेड। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली गाने की तरफ। सॉन्ग नंबर 13 आपके लिए हम लेकर आए हैं अंदाज बम से, वो गाना जिसको बरेली वालों ने बड़े खुशी के साथ सुना था, बहुत खुश थे ये सोच कर कि ओए होए होए क्या बात है, प्रियंका जी हमारे बरेली की लड़की आज दिखेगी बड़े पर्दे पर। और गाने की स्टार्टिंग करते ही, इस फिल्म की स्टार्टिंग होते ही आंखों पर हाथ कानों पर भी हाथ पहुंच चुके थे और कहा गया था कि ओह ये क्या देख लिया, तौबा तौबा ये बरेली की बिटिया ये क्या कर क्या रही है। क्योंकि भाई ये थी प्रियंका चोपड़ा की पहली वो वाली फिल्म जिसमें उन्होंने पहने थे बहुत तो शॉर्ट शॉर्ट कपड़े। बरेली वाले थे बड़े खुश कि उनकी लड़की आने वाली है बॉलीवुड के पर्दे पर, लेकिन जैसे ही देखा उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के इस अंदाज को, कलेजा बाहर आ चुका था। फिलहाल अभी प्रियंका चोपड़ा के काफ़ी फैंस हैं बरेली में और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट उस वक्त ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था उनके लिए कि अचानक से जो अभी तक उन्होंने नहीं सोचा था वो उन्होंने देखा था एक पर्दे पर। तो आइए एंजॉय कीजिए आप सॉन्ग नंबर 13 अंदाज से, आएगा मज़ा अब बरसात में। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 13.

0: अलका जी और बाबुल सुप्रियो की आवाज में आप सुन रहे हैं बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का। आप एंजॉय कर रहे हैं आपका सॉन्ग नंबर 13 आएगा मजा अब बरसात का अंदाज फिल्म से आपने इस गाने को सुना। और इस गाने के बाद भैया मैसेज की तरफ देख लेते हैं। तो भाई मैसेज में ओके नव्या जी पूछ रही हैं गुड आफ्टरनून मैम कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा है दीपक जी ने, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद काफ़ी सारी बारिश और बिजली का माहौल बन चुका है चैट बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गुड गुड गुड गुड गुड ओके बहुत सारा गुड। और उसके बाद लिखा है सॉन्ग थैंक यू सो मच। एंड ऑफकोर्स वाह अदनान सामी की आवाज़ बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ओके जॉन जी लिख रहे हैं ये गाना हमें बहुत पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी पसंद बताने के लिए। फिलहाल आइए हम लेकर चलते हैं आपको एक दूसरे गाने की तरफ और ये बैक टू बैक हम आपको दो गाने सुनाने वाले हैं। पहला होने वाला है आपके सोनू निगम की आवाज़ में शाहिद कपूर के ऊपर फिल्माया गया गाना मौसम है बड़ा कातिल खो जाए ना कहीं आवारा दिल। और दूसरा गाना जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अलका जी की आवाज़ में बारिश से थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गाना वादिय इश्क से आया है मेरा शहजादा। आप इन्जॉय करने जा रहे हैं दोनों गानों को बैक टू बैक। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। एक में आवाज़ है सोनू निगम साहब की, दूसरे में आवाज़ है अलका जी की। फिलहाल आई एंजॉय करते हैं टॉप 20 की काउंटडाउन वाली प्लेलिस्ट है सॉन्ग नंबर 11 एंड सॉन्ग नंबर 12। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 12।

0: हां जी, तो आपने एंजॉय किया अलका जी की आवाज में। वादी ये इश्क से आया है मेरा शहजादा। और इसी शहजादे की अगर हम बात करें, मतलब बात कर लें हम अक्की की, यानी कि अक्षय कुमार की, तो उनकी एक फिल्म के काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। और चर्चे हैं उस फिल्म जिसका नाम है, नाम नहीं है, जो होने वाली है एक एलियन के ऊपर। यूँ तो इंडिया में एलियंस आते नहीं है, और अगर आते भी हैं तो सीरियल्स में उनकी पूजा कर दी जाती है। और इसी को लेकर के लोगों ने काफ़ी ट्रॉल किया हुआ है कि भाई इसीलिए भारत में एलियंस नहीं आते हैं, भारत में विचेस नहीं आती हैं, भारत में ड्रैकुला या वेम्पायर नहीं आता है। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड में। लेकिन भैया अब किसी ने फाइनल कर लिया है कि भारत भी अपना खुद का एलियन बनाएगा, एयरक्राफ्ट नीचे उतारेगा, उसमें से एलियन निकालेगा और 3-4 लोगों को यहाँ से गायब करने का भी प्लान है। बट स्टिल हम आपको बता दें, अक्षय कुमार ने एक साईफाई थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए सोच लिया है। डायरेक्टर हैं कनिष्क वर्मा। एंड हम आपको बता दें, अक्षय कुमार का कहना है कि अभी तक उन्होंने ऐसी कोई फिल्म नहीं की है। एक साईफाई थ्रिलर हॉरर फिल्म होने वाली है जो बहुत ज़्यादा अलग है, उनके जॉनरा के अलावा अलग है। उन्होंने रोमांटिक फिल्में की हैं, एक्शन फिल्में की हैं, कॉमेडी फिल्में की हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से ऐसी फिल्म नहीं की है। तो एक काफ़ी अलग प्रोजेक्ट होने वाला है, एक अलग फिल्म होने वाली है, और इसी अलग फिल्म को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि भारत में अगर एलियन आ रहे हैं तो भैया वो कैसा फील दे रहे हैं। क्योंकि हॉलीवुड वाले एलियंस ने तो हमें डराया भी है, कभी कभार हंसाया भी है और बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग हमको दिया भी है। बट क्या इंडिया में इस बार एलियन आएंगे तो उनकी पूजा के अलावा भी कुछ और किया जाएगा, या फिर इस बार फिर से ट्रोल होने के लिए ही भारत वाले कुछ कर रहे हैं? फिलहाल मुझे उम्मीद है बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा कि इस बार जब साईफाई फिल्म आएगी तो एक नंबर आएगी, बजट के पार जाएगी और सभी को पसंद आएगी। लेकिन ये उम्मीद मेरी कायम रहती है नहीं, ये तो तब पता चलेगा था फिल्म रिलीज होगी ना बॉस। तब तक के लिए हम आपको बता दें कि मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चैट बॉक्स में, लिख रहे हैं हाय, किस एक्ट्रेस का सॉन्ग है आज? मैम अजी जनाब, आज किसी एक्ट्रेस का सॉन्ग नहीं है। आज सुबह सुबह बारिश हुई थी तो बारिश का दीदार करते ही हमने सोचा था आपके लिए बारिश वाले गाने ले आए, और हमने बारिश के स्वागत में, आपके स्वागत में 20 गाने बारिश वाले बजा रखे हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं सॉन्ग नंबर 11 और ये था बॉलीवुड की एक छोटी सी न्यूज़। कुछ और न्यूज़ है मेरे पास जो आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक करने वाली है। टाइगर श्रॉफ के साथ आने वाले हैं कोई और एक्टर जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वरुण धवन बॉलीवुड छोड़ के जा रहे हैं हॉलीवुड, ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन इस गाने के उस पार। तो आप इन्जॉय कीजिए हमारे इंडिया का वो सुपर हीरो वाला फिल्म जिसको देख कर हमने कहा था, सीखा था कि भाई तुम तो जादू हो। और आजकल जो गर्मी की धूप पड़ रही है इसमें जादू भैया भी कह रहे हैं कि नहीं, हमसे नहीं झेली जा रही है। आई थिंक आपने समझ लिया होगा हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोई मिल गया है से, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। आई एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 10, मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गैरासरी 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 10।

0: भाई जादू से आपको मोहब्बत है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बचपन तो जादू को देखते हुए निकला था। और हम विश करा करते थे बैठकर कि क्या जादू जैसा कोई एलियन हमारी धरती पर आएगा और वो कृतिक रोशन की तरह मुझे चुनेगा और मुझे अपनी शक्तियां देकर जाएगा ताकि मैं भी पढ़ाई में यूं तेज हो सकूं और मेरे घर वाले मुझसे बड़े खुश हो जाएंगे, अरे वाह मेरी बच्ची तो टॉपर हो गई एवरेज से। हालांकि एक वक्त था जब हम भी टॉपर हुआ करते थे, फिर हमने 10th पास कर लिया और उसके बाद से हम एवरेज हो गए। और ये आपके साथ भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो अपने क्लास के टॉपर्स होते हैं, लास्ट में ऐसा होता है कि वो कुछ पास कर लेते हैं एंड देन वो एवरेज हो जाते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें एवरेज जैसा कुछ चीज़ नहीं होता, अगर आपके 70% भी आ रहे हैं तो भी आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, और अगर आपके 90 भी आ रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस हर चीज़ को अपनी खुशी के लिए कीजिए, प्रेशर समझ के मत कीजिएगा, और ऐसा कोई जादू आपकी ज़िंदगी में चल जाए हम इसकी भी दुआ करेंगे। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अभी आप एंजॉय कर रहे थे ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया एक ज़बरदस्त गाना इधर चला मैं उधर चला। सच में जब आसमान में काले बादल घिरे हों तो दिल का रास्ता भटक ही जाता है, पर आसमान से गिरती हुई बूंदें हमें भटकने का मौका तक नहीं देती हैं, वो हमें भिगा जाती हैं और हमारी सारी यादों को तरोताज़ा कर जाती हैं। और कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि जब बारिश की पहली बूंद ज़मीन पर पड़ती है तो आपको भी किसी ऐसे की याद आती है जिसके साथ आपने या तो चाय की टपरी पर बैठ के चाय पी होगी, या तो भुट्टे खाए होंगे, या फिर कुछ ऐसे ख़ास मेमोरीज़ आपने किसी के साथ ज़रूर बनाई होगी। और अगर नहीं बनाई है तो भैया अपनी विश लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि हमने तो अपनी विश लिस्ट को बना रखा है लंबा चौड़ा, और हमने उसमें एक एक विशेज़ लिख रखी हैं कि पहला किसी दोस्त के साथ जाकर चाय की टपरी पर चाय पीनी है, वो भी बारिश में भीगते हुए जाना है, गरम गरम भुट्टा खाना, वो अलग बात है कि आजकल जब बारिश होती है तो भुट्टे वाले चले जाते हैं अंदर और हम भुट्टा ढूंढते रह जाते हैं। फिलहाल अगर आपकी भी ऐसी कोई विश लिस्ट है तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए और उन पर टिक लगाइए, प्लस प्लस प्लस, उन्हें पूरा करते भी जाइए, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है कि हमारी ये विशेज़ हैं, उन्हें पूरा भी करना है। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो अकेले करना है। एंड सुनते रहिए सॉन्ग नंबर 9 कुमार सानू की आवाज़ में होने वाला है बरसात के दिन आए, इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे आपके फेवरेट गाने की तरफ जो कि यारिया फिल्म से होने वाला है बारिश। सुनते रहिए बने रहिए आपके काउंटडाउन शो इन टॉप 20 में अपनी आरजीवंती के साथ, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 9

0: अब कर दे। कचिंदर वर्मा और मोहम्मद इरफान की आवाज में आप सुन रहे हैं इस दर्द दिल की सिफारिश, अब कर दे कोई यहाँ। और खेत मनी शर्मा जी हमें लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। नव्या जी वापस आ चुकी हैं हंसते हंसाते खिलखिलाते मुस्कुराते। और आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 7 की तरफ। बेहद ही रोमांटिक गाना आपके लिए पेश करती हैं आपकी आर्जुनती, तेरे दर पर सनम हम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। इन्जॉय करते रहिए इंटर टॉप 20 की काउंट ऑन प्लेलिस्ट में सॉन्ग नंबर 7 आपके अपने FM रेडियो 91.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। मिलते हैं अगले गाने पर प्लस लेकर के बॉलीवुड की अगली न्यूज, तब तक के लिए बने रहिए, इंजॉय करते रहिए, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 91.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 7।

हाँ जी, तो आपने सुना, तेरे दर पर सनम हम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। फिलहाल हम आपको लेके चलेंगे बॉलीवुड की न्यूज़ की तरफ, और हमने बॉलीवुड से जो आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी की है वो कुछ इस तरह से है। हमने अभी तक बात की थी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म, जो एक एलियन फिल्म होने वाली है। वहीं पर हमने आपको बताया था कि भाई टाइगर श्रॉफ के साथ विद्युत भी बहुत जल्द एक रोमांटिक एक्शन फिल्म में नज़र आने वाले हैं। भाई टाइगर श्रॉफ की आपने कई फिल्में देखी होंगी, जिसमें से स्पेशली आपने जो देखी हुए वो हैं बागी के सिक्वल्स, बागी 1, बागी 2, बागी 3। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि कमांडो यानी कि विद्युत बहुत जल्द टाइगर श्रॉफ के साथ एक रोमांटिक और एक्शन फिल्म में नज़र आने वाले हैं। विद्युत की एक्टिंग और उनके फिजिक्स के बारे में काफ़ी चर्चा रहता है, प्लस उन्होंने हॉलीवुड मूवी में भी काम किया है। फिलहाल हॉलीवुड मूवी से मुझे याद आया कि वरुण धवन भी हॉलीवुड मूवी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और उनको भी हॉलीवुड में कहीं ना कहीं डेब्यू मिलने वाला है। उनकी फिल्म कौन सी होने वाली है और कौन कर रहा है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन्जॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 6। और ये वो गाना है जिसको हर बारिश में सुना जाता है, क्योंकि हर बारिश में जब भी बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरती है और आपके हिवड़े में भी मोर नाचता है, तो अगर नाचता है तो ये गाना आपके लिए है। स्टे ट्यून्ड।

0: और आप सुन रहे हैं आयुष्मान खुराना की आवाज में मिट्टी दी फिल्म। भैया इस गाने को सुनने के बाद महसूस होता है ना कि कोई शहर छोड़ के चला गया है और उसका गम, उसका दर्द, उसका सब याद दिलो जहान में बस चुका है। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हम लेकर आए हैं आपके लिए बैक टू बैक दो गाने, और आखिरी के दो गाने जो हैं वो हम आपको आकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय कीजिए आपका सॉन्ग नंबर 4 एंड सॉन्ग नंबर 3 इन द टॉप 20 की प्लेलिस्ट में। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 4।

0: और आप सुन रहे हैं रहना है तेरे दिल में फिल्म से जरा जरा। और वक्त है हमारी अगले गाने की तरफ चलने का। सॉन्ग नंबर 2 एंड सॉन्ग नंबर 1 पेश करते हैं आपके लिए टॉप 20 की प्लेलिस्ट में। सॉन्ग नंबर 2 है तम्मा तम्मा और सॉन्ग नंबर 1 तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, वक्त है आपसे विदा लेने का। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वाले शो, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ लगातार 2 घंटे बने रहने के लिए।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 2.

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा, और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
5: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
4: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
5: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
4: जी,
5: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीबी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है, और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
5: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग

0: रोज़ भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं। पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत ज़रूरी है।
1: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं
0: जी आज दीदी।
1: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
0: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
1: जी।
0: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
1: जी,
0: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
1: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
0: जी दीदी
1: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
0: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है। वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
1: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
1: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
2: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU

0: बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
1: यानी कि ये जो एसएनसीयू होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
0: हाँ बिल्कुल, एसएनसीयू अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और एनबीएसयू शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
1: अच्छा।
0: या एफआरयू यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सीएचसी और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
1: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि एनबीएसयू में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
0: बहुत सारी,
1: जैसे?
0: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ।
1: जी।
0: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
1: और बाकी?
0: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
0: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
1: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए?
0: देखिए आकांक्षा जी,
1: जी
0: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
1: जी
0: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाँफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा एनबीएसयू। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है, देर मत करो। आरजे दीदी, खास कर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
1: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
0: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे। सिर हाथ पैर ढककर रखे, KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल ना घी ना हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
1: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी। लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
0: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
1: और भैया हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
0: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
1: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
0: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
1: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
2: स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और मैं हूं आपका अपना दोस्त RJ अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं तो कुछ देरी कर देते हैं। कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी, हमारी टीकन भाभी को। स्वागत है एक बार आपका वापस से इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई।
3: धन्यवाद RJ भैया, और धन्यवाद रेडियो के सभी श्रोताओं को। बहुत ही जरूरी विषय उठाया आज आपने। नवजात बच्चा जो जैसे कि कच्ची मिट्टी होता है और उसको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत ही विशेषज्ञ इलाज की।
4: हां जी, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आदाब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका अपना रेडियो ज्ञान असली। आपकी आरजे उन्नति, आपकी होस्ट एंड आपकी दोस्त मौजूद हैं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की खूबसूरत पहल के तहत हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई का प्रोग्राम क्लिनिक ज्ञान असली, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं।
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और आपके साथ ही साथ हमारे लिसनर्स भी अच्छे होंगे।
4: बेशक अच्छे होंगे, और जिनकी तबीयत थोड़ी सी भी नासाज है, ख़राब है, तो भैया उठाइए अपना फ़ोन, डायल कीजिए 6393316429 और भेज दीजिए अपनी बीमारियों के बारे में। आज मैं फरमाइशें नहीं बोलने वाली हूँ।
5: बिल्कुल बिल्कुल, बीमारियों के बारे में बोल दीजिए, क्योंकि हर रविवार की तरह हम फिर आ चुके हैं आपके सेम टाइम पर और सेम प्लेटफॉर्म पे।
4: अच्छा सर, एक बात पूछूं मैं आपसे?
5: जी।
4: बीमारियों के बारे में सही और सच बताना क्यों ज़रूरी है?
5: देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है ये कि बीमारियों के बारे में और क्या,
4: बीमारियों से रिलेटेड, या फिर अगर हाँ। आपकी कोई उम्र है, किसी एज में आप हैं, कोई टेस्ट आपने कराया है, कोई मेडिसिन आपने ली है जो आपने डॉक्टर से नहीं, उसके बारे में सही और सच बोलना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है?
5: देखिए, बीमारियाँ और उससे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, टेस्ट हो गया, मेडिकेशन हो गया, दवाइयां हो गई या कोई प्रोसीजर हो गया, इसके बारे में सही बताना, सही समझना, सही बोलना, सही जानकारी देना, लोगों को सही अवेयरनेस देना, ये इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हर बार तो नहीं बट समटाइम्स वो जानकारी लाइफ गिविंग या लाइफ टेकिंग बन जाती है।
4: और यही बात मरीजों के लिए भी है कि अगर आपसे डॉक्टर सवालात करते हैं तो आपको भी सही जवाब देना है। और क्वेश्चन आ चुका है
5: जी।
6: हेलो जय माता दी, आरती उन्नति मैम।
4: जय माता दी आपको भी, कैसे आए हैं आप एंड आपका नाम क्या है, प्लीज बता दीजिए।
6: कुमार टेलर बोल रहे
4: हैं, गौरव। ओके, तो कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और आपके सवाल जो हैं वो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं।
5: हेलो
6: मैडम, मेरा डॉक्टर, नमस्कार
5: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं कुमार जी आपका, आपका प्रश्न बताइए।
6: सर मुझे एक बीमारी, मेरा 2 साल में 3 साल में बार बार सांस फूलने लगता है।
5: अच्छा, बार बार सांस फूलने लगता है, इसके अलावा और कोई तकलीफ?
6: और कोई तकलीफ नहीं, बस एक सांस फूलने लगता।
5: ठीक है कुमार जी, अभी ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है?
6: यही
5: 39। क्या आप किसी प्रकार की तंबाकू से बने उत्पादों जैसे तंबाकू, खैनी, गुटखा या बीड़ी सिगरेट का उपयोग करते हैं?
6: बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीते, तंबाकू वगैरह खाते।
5: तंबाकू वगैरह खाते हैं। एज आपने कितनी बताई?
6: 39।
5: और आप काम क्या करते हैं कुमार जी?
6: हम सिलाई का काम करते हैं।
5: देखिए, सांस फूलने की जो बेसिक कुछ वजहें होती हैं, उनमें से जैसे एक तो समस्या होती है कि हमारे फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, खांसी या बलगम आ रहा है, उसके दौरान सांस फूल रही है, उसका कारण अलग होता है। कभी कभी खून की कमी के वजह से, एनीमिया के वजह से हमारी सांस फूलती है। कभी कभी पानी हमारे शरीर में ज़्यादा स्टोर हो जाता है, हमारे किसी अंग के कम काम करने की वजह से, किडनी, हार्ट या लीवर जैसे अंग के, उसके वजह से सांस फूलती है। कभी कभी हार्ट की समस्या में भी, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें जो सांस की समस्या आती है उसको हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारे फेफड़े की समस्या है, लेकिन कुछ हार्ट से संबंधित बीमारियों में भी सांस फूलने लग जाती है। ये आपको अलग अलग समस्याओं में ये लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या होती है, उनका कुछ विशेष सीजन में, जैसे गेहूं की कटाई दवाई के सीजन में, गर्मी जब तेज़ पड़ रही है उसमें या ठंडी जब पड़ रही है उसमें, ऐसे समय में सांस फूलने लगता है। बाकी समय पर अगर सही रहता है तो ये कंडीशन हो सकती है एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसे समस्याओं में। तो ये तो बेहतर होगा कि एक बार आप अच्छे से मिल करके और कंसल्ट करें, तो आपको देख करके थोड़ा आला वगैरह लगा करके चेक करके मुझे लगता है कि बेहतर बताया जा सकता है जी। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं आप?
6: मुझे नहीं, इतना बहुत अच्छा।
5: बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी आपका हमें कॉल करने के लिए। और वापस आते हैं उन्नति मैम के पास और पूछते हैं कि हर बार जैसा कि वो कुछ नया टॉपिक लेकर के आती हैं, आज ऐसा चर्चा का विषय क्या वो बनाने वाली हैं?
4: आज हमारा टॉपिक है पाइल्स के ऊपर
5: जी,
4: जिसे हम आम भाषा में बवासीर कहते हैं
5: जी।
4: और इस दौरान आज मुझे पता चला है कि आज नो टोबैको डे भी है।
5: अरे वाह, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आज नो टोबैको डे है
4: जी, और हम सुबह से उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि भाई तंबाकू क्यों नहीं खाने चाहिए। अभी आप इसको अगर पैकेट के पीछे भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा तंबाकू क्यों नहीं खानी चाहिए
5: जी, बिल्कुल।
4: बट हम आगे आगे देख कर काम चला लेते हैं, और इवन सरकार तो अब आगे भी छाप रही है कि भाई तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू छोड़ने के लिए संपर्क करें, नंबर भी दिया जाता है, इसके बाद भी हम संपर्क नहीं करते
5: जी। और जा करके पैसे दे करके और तंबाकू और तंबाकू से बने हुए अन्य उत्पादों को खरीदते भी हैं।
4: और फ्री में हमें मिलता है कैंसर, लंग कैंसर, ये फेफड़ों का कैंसर, किडनी का फेल होना, ना जाने कौन कौन सी बीमारियां हमें तोहफे में दी जाती हैं सिर्फ 5 रुपए के अंदर।
5: जी बिल्कुल,
4: इसीलिए मैं कहती हूँ मतलब सस्ती चीज़ों में हमेशा कहीं कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है जो आपको बहुत ईजिली मिल जाए।
5: जी,
4: तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो जिसमें डिसिप्लिन नहीं है, जो बहुत ईजिली अवेलेबल है, वो आपको बीमार ज़रूर करता है।
5: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए जो ये चीज़ें होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो होती ही हैं, बहुत सारी अवेयरनेस भी इसके बारे में चलाई जाती है। और मुझे लगता है कि आज नो टोबैको डे है, तो नो टोबैको डे पर हमें एटलीस्ट अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो टोबैको के बारे में लोगों को अवेयर ज़रूर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, इनसे क्या नुकसान होता है, और एक छोटी सी छोटा सा एफर्ट जो है लोग कर सकते हैं।
4: बिल्कुल, आप 5 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक का सफ़र तय ना करें, और हम इसीलिए चाहेंगे कि आप तंबाकू छोड़ दें, क्योंकि भाई ये जानलेवा होता है सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके घर वालों के लिए भी। इंडिया में बहुत सारी मौतें पैसिव स्मोकिंग की वजह से होती हैं, जो स्मोक करते भी नहीं है लेकिन उनके आसपास कोई स्मोक कर रहा है, इसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है।
5: जी बिल्कुल, ऐसा भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं।
4: तो भाई आज टोबैको डे भी है और इसी के साथ आज हम पाइल्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। बाय द वे, मैं आपसे एक सवाल करूं।
5: जी,
4: क्या बवासीर भी तंबाकू से जुड़ी हो सकती है?
5: देखिए बिल्कुल, बवासीर भी तंबाकू से जुड़ी हो सकती है, और स्पेशली कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं हमारे मेडिकल लाइफ के दौरान जो तंबाकू के उत्पाद जैसे गुटखा वगैरह हो गया, खैनी वगैरह हो गया, इसका सेवन करते हैं, और जो सलाइवा हमारे मुंह में बनता है जिसको वो लोग अपनी भाषा में पिच बोलते हैं कि पिच हमने खा करके थूक दी, तो वो उसको वो निगल जाते हैं, मतलब उसको सलाइवा जो है वो निगल जाते हैं, खैनी गुटखा का जो सलाइवा होता है वो निगल जाते हैं। उन कंडीशन के मरीजों में हमने देखा है कि मतलब ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स भी कई बार ये नोट किया गया है, और ये कॉमन पाया गया है कि हाँ वो अपने हिस्ट्री में उन्होंने ये एडमायर किया है कि वो टोबैको प्रोडक्ट्स को खा करके उसका सलाइवा निकल जाते थे।
4: ओके, तो अगर हमें ये लगता है कि पाइल्स तंबाकू खाने से नहीं होती तो ये भी एक गलत फहमी है भी आपकी।
5: जी, और मतलब अगर आप ये मान करके चलें कि पाइल्स का मेन कॉज टोबैको नहीं है, लेकिन जो पाइल्स के मरीज होते हैं उनको तंबाकू का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
4: ओके, तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं पाइल्स क्या होती है और कहाँ होती है। इसका आइडिया आपको वैसे लग गया होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह जो है वो हमारे सर बताने वाले हैं।
5: जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही तरह तरह के नामों से ये जानी जाने वाली एक बीमारी, और बीमारी के साथ
4: छुपाने वाली बीमारी बन जाती है,
5: कहीं पर ये मीम बन जाती है, और मतलब बहुत सी तरह तरह की चीज़ें। खैर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने बताया बवासीर,
4: जी
5: ये इस शब्द का काफ़ी ज़्यादा मीम भी आपको देखने को मिलेगा।
4: बिल्कुल, और लोग इसका जब जैसे ही कोई कुछ बोलता है और वो बताता है कि मुझे पाइल्स की दिक्कत है, लोग उसे ऐसे देखते हैं कि जजमेंट की नज़र है कि ये तो बहुत घिनौनी चीज़ है और आपको कैसे हो गई।
5: हाँ, ये कैसी मतलब गंदौड़ी सी बीमारी आपको हो गई।
4: बिल्कुल
5: बिल्कुल,
4: जिस तरह से मतलब होता है ना, कुछ बीमारियों को बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है।
5: और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज के पीरियड में मुझे लगता है कि मोर देन 5, लगभग 4 से लेकर 6 लोगों के बीच में आउट ऑफ 10, 10 में से हर 4-6 लोगों को पाइल्स जैसी समस्या है, वो उसको फेस करते हैं। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी का वर्स्ट है, जिस जो हमारे पास वही कंडीशंस आती हैं जो वर्स्ट हो जाती हैं।
4: ओके,
5: मान के चलिए कि महज 10-15% कंडीशन या 20% कंडीशंस आती हैं जो अभी फ्रेशली हुई हैं, अभी स्टार्ट हुई हैं, उसके बाद मतलब जितने भी 70-80% केसेस आते हैं वो सारे एक लंबे समय से सर्वाइव करते हुए ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग, और उसको तमाम तरह की दवा खाते हुए, मतलब वो अपनी हिस्ट्री में ये भी एडमायर करते हैं कि हमने यहाँ दवा की, वहाँ दवा की, आयुर्वेदिक इलाज किया, अंग्रेजी इलाज किया, कुछ लोग तो कहते हैं कि ऑपरेशन भी कराया लेकिन उसके बाद भी निजात नहीं मिली।
4: ओके,
5: जी तो ये चीज़ें होती हैं बवासीर में। अब हम अगर इसको समझने की तरफ चलते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कहाँ होती है। देखिए हमारा ये शरीर है और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं। सुनने का अंग है, देखने का अंग है, खाना खाने का अंग है, खाना का जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र है, उसको विसर्जित करने का, शरीर से बाहर निकालने का भी अंग है। जो मनुष्य का एनल रूट होता है यानी लैटरिंग के का जो मार्ग होता है, उस जगह पे कभी कभी सूजन आती है, कभी उसमें मस्से आते हैं, कभी वहाँ पे घाव जैसा दिखता है, कभी कुछ लोगों को स्टूल पास करने में लैटरिंग करने में ब्लड आता है। तो ये जो मिली जुली समस्याएं हैं ये कहलाती हैं बवासीर।
4: ओके।
5: अब इसको बेसिकली लोग दो तरह का कैटेगराइज करते हैं। ये कोई मेडिकल साइंस का क्लासिफिकेशन नहीं है। ये जो हमारी जनता है, पॉपुलेशन है, जो पेशेंट्स हैं,
4: जो हमारी कॉमन हाँ, आम लोगों ने
5: ये उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है और डॉक्टर्स ने उसके साथ टैली करके उसको समझ लिया है कि हाँ वो ये वाला बता रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, ये वाला बता रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जैसे एक ये कॉमन टर्म यूज होता है इधर की खूनी बवासीर है कि बादी बवासीर है।
4: ओके।
5: खूनी बवासीर लोग उसको कहते हैं जब मतलब ये जो मैंने आपको कॉमन सिम्टम्स बताए कि एनल रूट पे, ठीक है, एनल ओपनिंग पे जो गुदा द्वार होता है, लैटरिंग करने का रास्ता होता है, वहाँ पे सूजन का आना, किसी मस्से का बन जाना, कोई गांठ जैसा महसूस होना, मस्सा लटक जाना, लैटरिंग करने में वहाँ पे दर्द होना, कांटे जैसा दर्द होना, चुभना, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये बवासीर के लक्षण हैं। अब जिन लोगों को लैटरिंग में ब्लड आता है उसको ये लोग खूनी बवासीर कहते हैं, और जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, सिर्फ पेन और मस्से ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको लोग बादी बवासीर कहते हैं।
4: ओके।
5: तो ये रहा इस बीमारी का परिचय कि ये बीमारी क्या है, कहाँ होती है, क्या इसके मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या है, तो ये बीमारी का परिचय है।
4: ऑलराइट। तो सर मैं आपसे एक और सवाल करूँगी कि इस बीमारी को जैसे ही कोई सुनता है या फिर उसे होती है तो इसके बारे में वो बात करने से इतना डरते क्यों, इतना शर्माते क्यों है? जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, किसी को पाइल्स हो जाए, तो ये तो ऐसी बीमारियां हैं कि इनका या तो मजाक बना लिया जाता है, किसी को है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, डॉक्टर उनसे पूछते हैं तो या तो वो बहुत नर्वसली बताएगा या तो बहुत शर्मा के बताएगा, जैसे कि ये कोई बहुत अनोखी सी बीमारी हो गई है,
5: बहुत प्रेशर में होकर के, पेशेंट बहुत प्रेशराइज्ड होकर के,
4: जैसे कि डॉक्टर जज कर लेगा कि अरे तुमको बवासीर हो गई है।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी देखने को मिला है। और ये कहीं ना कहीं में देखने को मिलता है कि ऐसे बीमारियों में लगभग 10 में से ज़्यादा नहीं तब भी 5-6 मरीज बहुत ही प्रेशराइज होकर के उसका जवाब देते हैं।
4: बिल्कुल, उन्हें कुछ देर कंफर्ट करने में ही लग जाता है कि आप इसके बारे में बोल सकते हो, हम आपको जज नहीं करेंगे, आप अपनी सिम्टम्स बता दो, कुछ नहीं तो बीमारी बता दो, नाम नहीं बता रहे हो तो कुछ तो बताओ, और उसके बाद कहीं वो जा करके अपना थोड़ा सा बोलना शुरू करते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। इसके बारे में लोग इतना शर्माते क्यों हैं और क्या ये इतनी अनोखी बीमारी जिसके बारे में बात ही नहीं कर सकते?
5: बिल्कुल, देखिए जैसा कि अनोखी बीमारी का प्रश्न है तो मैंने बताया कि लगभग 10 में से 4-6 लोगों को बवासीर या पाइल्स जैसी समस्या होती है
4: जी।
5: तो अनोखी तो बिल्कुल नहीं है। अब आता है प्रश्न कि लोग इतना शर्माते क्यों हैं। देखिए चूंकि हमारा जो समाज है उसमें क्या है कि जो हमारे गुप्तांग होते हैं जिनको प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं, गुप्तांग के अलावा जो यौन संबंध होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इन चीज़ों के बारे में जो भी डिफरेंसेस होते हैं मेल फीमेल ऑर्गन्स में, इन चीज़ों पे बहुत ही जितनी गंभीरता से, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और जितनी डिटेल्ड कन्वर्सेशन होनी चाहिए उतनी डिटेल्ड कन्वर्सेशन हमको स्कूलिंग से ही नहीं मिलती।
4: एंड इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम जब लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं तो क्या मेंटेलिटी हो जाएगी बच्चों की, ये सोचकर हम वो पढ़ाते ही नहीं हैं।
5: एंड जबकि मैं एक चीज़ और, अब चूंकि लोगों को बात करते हुए ऐसे सुना होगा कि हमारी जनरेशन में, हमारे टाइम में ऐसी चीज़ें, मैं देख रहा हूँ कि अब कुछ छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें गुड टच और बैड टच ऐसी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं कि हाँ ये गुड टच है, यहाँ पे कोई टच करता है तो ये बैड टच है, ऐसे चीज़ें बच्चों को एक्सप्लेन की जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख करके। बट मुझे याद है कि आज के लगभग जितने भी 20-25 साल पहले हम लोगों ने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया था, 25-27 साल पहले, उस समय में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो गुड टच बैड टच, इनफैक्ट जो घर के जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी इन चीज़ों पे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं देते थे।
4: ओके। एंड एक चीज़ मैंने भी नोटिस की है अपने स्कूलिंग टाइम में, और मुझे तो पता है कि मैं आपसे इतनी भी बड़ी नहीं हूँ
5: जी,
4: जब फीमेल्स के मेंटली साइकिल की बात चलती है और लड़कियों को एक उम्र के बाद, एक क्लास के बाद उन्हें इस चीज की इन्फॉर्मेशन दी जाती है
5: जी।
4: उस दौरान मैंने नोटिस किया था कि मेरे स्कूल के सारे बॉयज की छुट्टी कर दी गई थी कि आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ फीमेल उस सेमिनार के अंदर बैठेंगी।
5: हाँ, अब देखिए ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। इसमें एक तरफ तो जैसे आप खुद ही बच्चों को एम्बेरस कर रहे हो लड़कियों को, दूसरी बात ये बात उन लड़कों को भी तो जानना जरूरी है ना।
4: बिल्कुल,
5: जैसे उन लड़कों को भी जानना जरूरी है क्योंकि उस लड़के के घर में भी उसकी बहन है, उसकी मदर है, आगे चल के बड़ा होगा वो, जैसे आप फीमेल्स को समझा रहे हो कि ये बड़ी होगी, समाज में जाएगी, शादी वगैरह होगा,
4: प्यूबर्टी आएगी, दोनों में ही आ रही है।
5: तो वो उसमें भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये हमारे जो समाज के जो युवा हैं, जो बच्चे भी हैं, जो अल्पवयस्क हैं, जिनको अल्पवयस्क कहते हैं, क्योंकि अब अल्पवयस्कता से पहले तो मुझे लगता है इन चीज़ों के विषय में उन्हें बहुत विस्तृत ज्ञान देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो उतनी समझ उनको डेवलप नहीं होती। लेकिन जब वो अल्पवयस्क हैं, 13-14 वर्ष की जो आयु होती है, ऐसी एज पे भी हैं, तो उन्हें सामने बैठा करके, साथ बैठा करके एक दूसरे को समझना पड़ेगा, उनको एक दूसरे को जानना पड़ेगा कि मेल्स को जानना पड़ेगा कि फीमेल्स की क्या भूमिका है, फीमेल्स को जानना पड़ेगा मेल्स की क्या भूमिका है। और इन बच्चों को, हमारे जो युवा वर्ग हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों पर हमें कैसा बर्ताव करना है। एक लड़की है जिसको पीरियड्स आते हैं, उसके साथ या ऐसे विषय पर या ऐसे टॉपिक पर हमें किस तरह से बर्ताव करना है, हमें क्या हाव भाव रखना है, हमें उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इस पे बात करनी है तो कैसे करनी है, ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है।
4: बिल्कुल, और इसी से आप बहुत सारी कॉम्पिटिशन जो है उसको ख़त्म कर सकते हो क्योंकि आपको समझ में आता है, आप बिहेव करना जानते हो। और यही आजकल आपको देखने को भी मिल जाएगा, जब हम बीमारियों के बारे में या फिर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं देते तो वो इंटरनेट से उसका गलत इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी यूथ पर आपको नज़र आता है।
5: बिल्कुल, और देखिए मुझे ये लगता है कि यदि जैसे कि मैंने अपने समय में आपको बताया कि आज के लगभग 22-25 वर्ष पहले जब हमने इन चीज़ों को देखा तो इस पर कोई भी जानकारी नहीं देता था। इनफैक्ट जो टीचर्स भी थे वो भी ऐसे जो चैप्टर्स, अब जैसे बायोलॉजी में सारा चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का तो होता नहीं है, एक दो चैप्टर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो बाकी के जो सारे चैप्टर्स थे वो जो टीचर्स थे वो बहुत ही डीपली और बहुत ही डेडिकेटली वो एक्सप्लेन करते थे, बट जो सेक्सुअल चैप्टर्स थे, रिप्रोडक्टिव चैप्टर्स थे जिसमें यौन चीज़ों के बारे में, प्रजनन के बारे में समझाया जाता था, वो चैप्टर वो भी बहुत ही शॉर्ट में किसी तरह से खींच खाँच के निपटा करके उससे आगे बढ़ जाते थे। स्पेशली उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने ऐसा देखा है। तो इन चीज़ों का मुझे लगता है कि यदि हम अपने बच्चों को, हमारे जो युवा बच्चे हैं, जो अल्पवयस्क हैं, यदि इनसे हम मिल करके, हम इस पे बात करके इनको समझाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चे और भी इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे और समाज में ऐसी जो ग्लिचेस, ऐसे जो फॉल्ट आ रहे हैं, जो ऐसे कुछ मिसबिहेव के केसेस आ रहे हैं, उनमें मुझे लगता है कि थोड़ा सुधार किया जा सकता है।
4: ऑल राइट, और अब मैं टॉपिक से रिलेटेड आपसे सवाल करती हूँ कि लोग अक्सर रेक्टम में किसी भी तरह का जब दर्द होता है तो उसे वो पाइल्स ही समझ लेते हैं, क्या ये बात सच है और क्या उस पेन को हम सच में पाइल समझ सकते हैं या नहीं?
5: जी, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने इस विषय से संबंधित पूछा। देखिए, रेक्टम में किसी प्रकार का दर्द पाइल्स नहीं होता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि जैसे रेक्टम जो होता है वो एक प्लेस होता है जो हमारे खाने को, पचे हुए खाने को हमारे शरीर से एग्जिट करता है। वो बस एक छोटा सा वॉल्व है और उससे बहुत लंबी चीज़ें होती हैं जो उसको प्रोसेस करती हैं, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन छोटी आँत या बड़ी आँत होती है ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट रेक्टम जो होता है वो स्टोर करता है और जो एनल ओपनिंग होती है जिसको एनस बोलते हैं, ये एक तरह का वॉल्व होता है जो खाली उसको एग्जिट कराता है। अब वो चूँकि मतलब भाई हमारे खाने का, शरीर का जो खाना है, भोजन है, उसका पचा हुआ हिस्सा है, उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया जो है इंक्लूड हो जाते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो वहाँ पे कभी कभी किसी तरह का छोटा फोड़ा फुंसी या कोई दाना टाइप का होता है उसके वजह से पेन होता है, किसी इन्फेक्शन के वजह से पेन हो सकता है, कभी कभी जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल होता है, लेटरिंग होता है, वो बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर में हो जाता है उसको. अच्छा, और ऐसा कॉन्स्टिपेशन कई बार फीवर जैसे केसेस में भी हो जाता है. अगर कभी किसी को बहुत हाई ग्रेड फीवर आ गया है, उसके बाद वो खाना वाना ठीक से नहीं खाया, तो उसको कॉन्स्टिपेशन एक दो बार फील होगा.
4: एंड फीमेल्स की अगर हम बात करें तो आपकी जब हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तब आपको ये चीज़,
5: हाँ, तब वो फील होता है. तो अगर बहुत ज़्यादा हार्डी स्टूल हो गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर हो गया है, लेटरिंग बहुत ज़्यादा कड़ी हो गई है, तो वो वहाँ से पास आउट होते वक्त वो उसमें बहुत ज़्यादा तनाव पड़ने की वजह से खिंचाव आ जाता है
4: जी.
5: उसमें इंटरनल टिश्यूज जो है वो कई जगह रैप्चर भी हो जाते हैं, उसके वजह से भी दर्द आता है, बट वो अभी पाइल्स नहीं है. अगर ये रूटीनली रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको रूटीनली रहेगा, तो वो एक दिन पाइल्स बनेगा, बट अभी वो पाइल्स नहीं है.
4: अगर एक दो बार दर्द होता है तो वो पाइल्स नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत फ्रीक्वेंटली होता जा रहा है,
5: हाँ,
4: तो
5: अगर जो वो फ्रीक्वेंट होता जा रहा है, वो बार बार हो रहा है, आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल पास करने पे लेटरिन टाइट हो रही है, लेटरिन टाइट वजह से जो एनल रूट है वो रप्चर हो रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन बनेगा, जो पाइल्स है वो बनेगा.
4: ओके सर, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन बदलती जा रही है और आपने देखा होगा कि अब हर किसी के घर में वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं
5: जी.
4: वेस्टर्न टॉयलेट्स पे अब लोग कई बार ऐसा होता है कि घंटों के लिए बैठ जाते हैं, इवन आपको बाहर से दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कि भैया आप तो बाहर निकल आओ
5: जी.
4: वो या तो बैठ के फ़ोन चला रहे हैं या न्यूज़पेपर, कई लोगों की आदत होती है वो वॉशरूम में न्यूज़पेपर ले जाते हैं, वो पढ़ते रहते. क्या घंटों तक वॉशरूम में बैठे रहना और स्टूल, जिस तरह से हम वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं, कई लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है पाइल्स का?
5: देखिए, मैं इस पर बताना चाहूँगा कि जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, जो भी लोग स्वस्थ हैं, जो बैठ सकते हैं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, वो लोगों के लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंडियन टॉयलेट सिस्टम का ही प्रयोग किया करें. क्योंकि जिस मुद्रा में, जैसे आप नेचुरली आप देखिए कि जैसे कोई भी जो मनुष्य या बंदर, जो मनुष्यों से मिलती जुलती जो जानवर हैं, जैसे मनुष्य हो गए, बंदर हो गए, चिंपैंजी, गोरिल्लाज, ये जब भी मल का त्याग करते हैं, मतलब लैटरिंग करते हैं, तो किस मुद्रा में बैठते हैं, तो आप पाएंगे कि अपने घुटनों के बल ऐसे, मतलब जैसे लोग बैठते हैं नॉर्मल मुद्रा में, पैरों के ऊपर घुटना मोड़ करके, इस अवस्था में ही बैठ करके मल का त्याग करते हैं, क्योंकि ये हमारे शारीरिक बनावट के अनुसार यही सबसे उपयुक्त मुद्रा होती है
4: जी.
5: मल का त्याग करने के लिए. और जब आप बैठे हुए होते हैं, तब जब इस मुद्रा में बैठे हुए होते हैं, तो हमारे जो एनल ओपनिंग होता है, जो गुदा द्वार होता है, वहाँ पे एक विशेष प्रकार की मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, जो उसी मुद्रा में बैठने पर पूर्णतः खुलती है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी महिला किसी बच्चे का जन्म देती है प्रसव के दौरान, तो आप देखेंगे कि उसकी सबसे उपयुक्त मुद्रा लेट करके ही प्रसव देना होता है. ऐसे चलते चलते खड़े होकर के प्रसव नहीं दिया जा सकता, डिलीवरी नहीं की जा सकती है. हर चीज़ के लिए एक मुद्रा होती है. सोने के लिए सबसे आसान मुद्रा वही है. बैठने वाली मुद्रा में सो नहीं सकते हैं हम, कम्फर्ट नहीं मिलेगा हमको उतना. तो जो मल का त्याग करने की मुद्रा है, उसी मुद्रा में वो एक स्पेसिफिक मसल जो एनल ओपनिंग को बंद करती है, गुदा द्वार को बंद करती है, वो तब ही पूर्ण तरह से खुलती है जब आप इंडियन टॉयलेट सिस्टम पे लैटरिन करने की मुद्रा में बैठते हैं. अगर आप ऐसी मुद्रा में नहीं बैठते हैं, तो वो मसल पूर्णतया नहीं खुलती है और लैटरिन अच्छे से साफ होने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो पास नहीं हो पाती आसानी से, क्योंकि वो जो गुदा द्वार है वो पूरी तरह से नहीं खुला हुआ होता है
4: जी.
5: तो जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके घुटने सही हैं, वो तो उनको चाहिए कि वो इंडियन टॉयलेट सिस्टम का ही प्रयोग करें. अब जो मरीज हैं जिनके घुटनों में तकलीफ़ है, लैटरिंग करने के लिए वो उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बैठ नहीं पा रहे, तो उनके लिए ठीक है, वेस्टर्न सिस्टम बना है, वो बैठ रहे हैं. बट कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर नहीं ही बैठ सकते हैं, मतलब उनकी हैबिट ऐसी है, या जो भी कह लेते हैं, थोड़ा सा बहुत से लोग होते हैं जिनके नखरे ऐसे होते हैं कि नहीं, हम वेस्टर्न पे ही करेंगे. तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर रेगुलर आप अपने घर पे या जहाँ पर भी है वेस्टर्न, वहाँ पे एक छोटा सा पीढ़ा का यूज़ करें, नीचे पैरों के रखने के लिए। जब आप भी बैठ करके स्टूल पास आउट कर रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, लैटरिन कर रहे हैं, तो पैरों को थोड़ा सा ऊंचाई पर रखें जिससे वो मुद्रा बन सके, ताकि आपकी वो जो मसल्स हैं जो आपके एनल रूट को बंद कर रही हैं, गुदा द्वार को बंद कर रही हैं, वो पूरी तरह से ढीली हो सकें और लैटरिन अच्छे से पास हो सके।
4: और ये बहुत टाइम तक लैटरिन में बैठना,
5: देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति मुझे लगता है कि वो सुबह में या जब भी जाता है, ठीक है, वैसे तो स्वस्थ लोगों में देखा गया है कि वो सुबह ही लैटरिन जाते हैं, बाकी बहुत से लोग हैं जो सुबह में शाम में जाते हैं या पेट खराब हो तो कभी जाना पड़ सकता है। बट अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसका पेट और पाचन तंत्र ठीक से कार्य कर रहा है, तो उसको लैटरिन में जाने के बाद मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर उनको लैटरिन पास आउट हो जानी चाहिए। अगर 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट बैठने के बाद, प्रयास करने के बाद यदि लैटरिन नहीं हो पा रही है साहब, तो इसका मतलब आपका पाचन तंत्र स्वस्थ तो बिल्कुल नहीं है
4: जी।
5: वो बीमार है या नहीं, या कम बीमार है, ज़्यादा बीमार है, पाइल्स है या क्या है, वो अलग का विषय है, बट वो स्वस्थ तो नहीं है
4: जी।
5: तो ऐसे जो लोग हैं जिनको 10-15 मिनट से ज़्यादा बैठना पड़ता है, मतलब ऐसा लोग बताते घंटों बैठना पड़ता है, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ये स्वास्थ्य के साथ और जो हमारे शारीरिक बनावट है, जैसे बहुत से लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जिन जो लैटरिन उनको हो जाती है 10-15 मिनट के अंदर, उनका पेट साफ हो जाता है, बट फिर भी वो वहाँ बैठ करके फ़ोन चलाते रहते हैं, वो वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वहाँ से आकर के कहीं और बैठ के आप पढ़ सकते हैं। उस मुद्रा में, उस अवस्था में देर तक बैठना और ऐसा करना, ये बहुत अच्छा तो नहीं होता है और इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी जाते हैं हमारे शरीर पर
4: जी सर। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे खान पीन के बारे में, हम जो खाते पीते हैं उसका असर पाइल्स यानी कि बवासीर पर किस तरह से पड़ता है।
5: अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत से लोग हैं जिनको खूनी बवासीर, मतलब जब लैटरिन के साथ ब्लड आता है, ऐसे लोग हैं, वो कभी दवा कराते हैं, कभी कभी आयुर्वेदिक दवा कराते हैं, कभी अंग्रेजी दवा कराते हैं, कभी किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया तो ऑपरेशन कराते हैं, बट उसके बाद भी उनकी वो समस्या ठीक नहीं होती है
4: जी।
5: फिर जब हम पेशेंट की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि क्या आपने तेल मसाला वाली चीज़ें बंद की, तो जवाब आता है कि नहीं। आपने नॉनवेज खाना बंद किया, जवाब आता है नहीं। आपने जंक फूड और ऐसी चीज़ें, गुटखा खैनी तंबाकू खाना बंद किया, तो जवाब आता है नहीं। देखिए खाने पीने की चीज़ों का इम्पैक्ट इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर खाने पीने वाली बात से और ऐड करना चाहूँगा, वो लोग जो बवासीर का ऑपरेशन करवा चुके हैं
4: जी।
5: बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनको खूनी नहीं, जिसको बादी बवासीर कहते हैं, जिसमें लैटरिन के रास्ते पर मस्से वगैरह होते हैं, गांठ वगैरह होती है, वो लोग क्या करते हैं ऑपरेशन वगैरह, डॉक्टर जब कोई उसका उपाय नहीं मिला, ऑपरेशन कराया, उसके बाद कहते हैं कि फिर दर्द रहता है, वो उसके बाद क्या है कि पहले के जैसे खान पान और एकदम जो चीज़ चाहे वैसे खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो आप नहीं कर सकते। जो पाइल्स के बवासीर का जो परहेज है वो आपको अब लाइफ लॉन्ग के लिए फॉलो करना है। आपने उसका ऑपरेशन करवा लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप कुछ भी खाने के लिए एकदम फ्री हैं। आपको तेल मसाला चिकना ये सारी चीज़ें जीवन भर के लिए अवॉइड करनी पड़ेंगी।
4: ओके, यानी कि अगर अब आपने एक बार ऑपरेशन कराया है तो आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाएंगे, बाहर का स्पेशली नहीं खाएंगे,
5: तो आप स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप उनको खाएंगे और इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे, तो वापस से आपको ये समस्याएं भविष्य में वापस मिलेंगी।
4: अच्छा सर, एक बात मैंने नोटिस की है, जब भी किसी को पाइल्स या फिर कोई ऐसी बीमारी होती है जिसको समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, जिसमें लोगों को बताने में शर्म आती है, तो वो अक्सर हकीम या बाबा के पास चले जाते हैं उनका इलाज कराने की, एक दिन में ही इलाज हो जाएगा
5: जी।
4: या आप मुझे बता सकते हैं ये उनके लाइफ लॉन्ग पर किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, कितना डेंजरस ये हो सकता है, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर वो चूर्ण जो मिल जाते हैं?
5: देखिए जैसे बहुत से इसमें बवासीर जैसे और पाइल्स जैसे केसेस में तो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि हर घर में एक डॉक्टर होता है जो बताता है इसका जड़ पी लो, उसकी पत्ती पी लो, ये खा लो, इस बाबा से वो ले आओ, वहाँ से आयुर्वेदिक दवा ले आओ, यहाँ से अंग्रेजी दवा ले आओ, मतलब तरह तरह की। बहुत से लोग तो कुछ बेसिक जानते हैं, जैसे क्या होता है कि कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, लेटरिंग के ओपनिंग में एनल रूट पे दिक्कत है, उसमें दर्द हो रहा है और सूजन है, लेटरिंग टाइट होती है। तो हम क्या करते हैं कि 5-7 दिन की उसको सिम्टोमेटिक दवाइयाँ, जैसे एक स्टूल सॉफ्टनर, जैसे लेटरिंग को सॉफ्ट करने की कोई एक सिरप दे दी, एक दर्द और सूजन को ख़त्म करने की जैसे कोई जीरोडॉल SP वगैरह दवा दे दी। हो सकता है कि इसके वजह से किसी इन्फेक्शन वगैरह डेवलप होने की वजह से सूजन हो, तो एक एंटीबायोटिक लगा दी, जैसे क्लैवम 625, एक गैस की दवा डाल दी, और ऐसे मतलब एक छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन बना के उसको 5 दिन की दवा दे दी। अब क्या है कि 5 दिन की दवा वो खाएगा तो उसको आराम मिल जाता है, अब उसे लगता है कि नाउ दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन। अब उसको जब जब वो दिक्कत होती है तो वो सेम दवाइयाँ जो उसने किधर एक नोट करके रख ली हैं, वो सारी दवाइयाँ जा करके वापस से 5 दिन खरीदता है और खा लेता है, वापस से उसको आराम मिल जाता है। अब ये क्या होता है कि ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उसे इस दवा से आराम मिलता है।
4: मतलब इसका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, बस वो आराम के लिए ही चल रहा है।
5: वो मतलब 5 दिन दवा ही खाई, उसने आराम मिल गया। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ड्रग एब्यूज़ में आती हैं। मतलब आप उस, हो सकता है अगली बार जब दर्द हो तो आपको उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना हो, हो सकता है उसमें जो हम दर्द और सूजन के लिए दे रहे हैं उसकी ज़रूरत ना हो, हो सकता है कि उस बार हम कोई लगाने वाली दवा का कंडीशन बनता हो कि उसमें सिर्फ लगाने वाली दवा से ही ठीक हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, सेम दवा खा खा करके वो दवाइयाँ रेजिस्टेंट कर रहे हैं
4: जी।
5: तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बार बार हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल और रूटीन फॉलो करनी चाहिए
4: जी।
5: तेल मसाला जिसमें ना हो, चिकनी चीज़ें ना हो, तली भुनी चीज़ें ना हो, एकदम सिंपल खाना हो, और वेल कुक्ड और वेल प्रोसेस्ड फूड हो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इन चीज़ों का आप ख्याल करिए, उसके बाद फिर मेडिकेशन पे आएंगे। तो हमें ये चीज़ें, अगर हम इन पे ध्यान नहीं रखते हैं, बार बार ऐसे दवाइयाँ लेकर के खाते हैं, तो कई बार देखा गया है कि ये बवासीर जैसी समस्या आगे चल के कोलोन कैंसर और आंतों वगैरह में किसी दूसरी गंभीर समस्या का, कई सारी समस्याओं का ये एक जड़ बन सकती है।
4: अच्छा सर, क्या हर बार पायल्स होने पर सर्जरी या ऑपरेशन ही होता है, या दवाइयों से भी इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है?
5: देखिए, जितने पायल्स की स्टार्टिंग केसेस होते हैं
4: जी,
5: इनको लगभग 80% कंडीशंस को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। बट आप समझिए कि पायल्स जैसी घटना, ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन आपने समोसे कचौरी खा ली और आपको पायल्स जैसी सिम्टम्स आ गए।
4: ओके,
5: ये 1-2 दिन में नहीं होता है।
4: मतलब ये लंबे समय में होने वाली बीमारी है, तो लंबा समय भी लेगी ठीक होने में।
5: बिल्कुल, तो आपको लंबा समय लेकर के आप लंबे समय तक उल्टा सीधा चीज़ें खाते हो, उसके बाद ये सब समस्याएं आना स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो चीज़ें आप 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल से खा रहे हैं, जंक फूड, टिक्की बतासा, चाउमीन, बर्गर, इनको तो आपको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ेगा
4: जी।
5: और आने वाले कुछ सालों तक तो एकदम बिल्कुल ना के बराबर, अगर आपको बहुत पसंद भी है, आपसे रहा नहीं जाता है उसके टेस्ट के बिना, तो मतलब बस कुछ टेस्ट करने के लिए कभी कभार आप उन चीज़ों को खा सकते हैं। अब अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं हम अभी आराम हो गया, हम पहले की जैसे वापस से खाना स्टार्ट करें, तो वो बीमारी भी वापस आएगी
4: जी।
5: तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ें छोड़नी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसके अलग अलग तरीके की दवाइयाँ, अलग अलग तरीके के कंडीशंस हो सकते हैं, तो एक्सपर्ट से मिल करके उसको आप अपनी पूरी समस्या बताएं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं ऐसी प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं दिखाओ। वो पेशेंट्स बोलते हैं, मतलब वो शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं मतलब दिखाएं, कैसे दिखाएं? तो हम बोलते हैं जैसे दिखा सकते हैं वैसे दिखाओ, हम ग्लव्स वगैरह भी पहन करके रेडी होते हैं कि हो सकता है साइकोलॉजिकली इसके माइंड पे इफेक्ट पड़े, बट वो मतलब इतना नर्वस होते हैं कि मतलब कैसे दिखाएं। और इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट, मुझे लगता है कि हर 50 पेशेंट में 2-3 पेशेंट तो ऐसे आ जाते हैं जो लास्ट तक इस जिद पे अड़े रहते हैं कि डॉक्टर साहब दिखाएंगे नहीं, बस आप दवा हमको दे दीजिए।
4: ओके,
5: आप हमको, अब मैं बता दिया, बस इतनी ही मेरी समस्या है, हम दिखा नहीं पाएंगे, आप हमको दवा दे दीजिए, और वो लास्ट तक नहीं दिखाते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं,
4: मतलब वो तैयार ही नहीं होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा। देख,
5: बिल्कुल, मतलब वो इतना एम्बेरस फील करते हैं, इतना, भाई देखिए वो मेडिकल कंडीशन है। अब आपको अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो आप हमारे पास आते क्यों? और अगर आप हमारे पास आए हैं तो फिर भाई उस चीज़ों का अच्छे से समाधान लेकर के जाइए। तो इस चीज़ों के लिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके लिए शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी बात रखिए, प्राइवेसी में रखिए, गुप्त तरीके से रखिए। आपकी बात को पूरा जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपकी समस्या का अच्छे से समाधान नहीं कर सकते हैं।
4: बिल्कुल, और मुझे लगता है बीमारियों को लेकर के कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे शर्म करते हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है।
5: बिल्कुल, और आज के समय में भी मतलब बहुत से कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, स्पेशली कुछ स्किन रिलेटेड कंडीशंस में, रिप्रोडक्टिव कंडीशंस में, जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो खैर ठीक है भाई, हम प्राइवेसी का कंसर्न एक एज बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट तो रखते ही हैं, बट लोगों के अंदर जो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरे कंजर्व रहते हैं कि नहीं नहीं ये बात कहीं और नहीं पता चलनी चाहिए। भाई ठीक है, हमको ये प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इलाज ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं।
4: अच्छा सर, ये बात सच में मैंने देखी है, लोगों के बीच में ये काफ़ी डर रहता है कि अगर वो मेडिकल के पास आकर के HIV, बवासीर, पाइल्स, कोई ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे, अगर वो उनके रिप्रोडक्टिव से जुड़ी हुई है या फिर किसी और प्राइवेट चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो मेडिकल उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देगा और वो कहीं ना कहीं किसी और को बता देगा।
5: देखिए, इसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, जो वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड, ठीक है, और एक अच्छी संस्था में काम किया हुआ है, वो आपकी प्राइवेसी को प्राइवेट ही रखेगा, पहली बात। दूसरी बात आप समझिए कि जैसे ये चीज़ें बताने वाले आप डॉक्टर के पास अकेले पेशेंट नहीं होते हो, और भी बहुत से पेशेंट होते हैं जो ये चीज़ें बताते हैं।
4: हमारी इमेज पे आ जाएगा, लोग हमें जज करेंगे अगर।
5: तो देखिए, डॉक्टर तो इस चीज़ को कहीं नहीं शेयर करता।
4: बिल्कुल,
5: वो इनफैक्ट आपके घर में भी उन्हीं से शेयर करेगा जो आपके बहुत क्लोज वन। अब जैसे जो प्राइवेसी वाली बीमारियाँ हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो बीमारियाँ हैं, ऐसी बीमारियों के बीच में तो डॉक्टर सबसे पहले रिकमेंड यही करता है कि जो कपल हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, ये आए बात करने। जैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, IVF का मामला है या ऐसी कोई चीज़ है, तो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन ये होती है कि जो कपल हैं वही दोनों आए बात करने। तो इस चीज़ों को, इस पे शर्माना नहीं चाहिए लोगों को, डॉक्टर्स को, हमारे हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बताना चाहिए। आपकी बातें आप तक ही रहेंगी, प्राइवेट रहेंगी, और उनको इसको करने का, इतनी चीज़ों को करने का टाइम उनके पास नहीं होता है।
4: बिल्कुल, यहाँ तक कि अगर आप अपना HIV का भी टेस्ट कराते हैं तो वो भी बहुत प्राइवेट रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता।
5: बिल्कुल, और मतलब सिर्फ HIV ही नहीं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो जो भी आपके ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट हैं, उन सभी के अंदर, मतलब उन सभी के ऊपर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उस पर कॉन्फिडेंशियल का लोगों वो रखते हैं, क्योंकि ये एक मरीज की निजी और गुप्त जानकारी है, ये सिर्फ उसके और डॉक्टर के बीच का मामला है।
4: बिल्कुल,
5: तो ये चीज़ों का ख्याल रखा जाता है।
4: तो भाई दोस्तों, आज हमने बात की पाइल्स की, और शुरुआत हुई थी हमारी टोबैको से, यानी कि तंबाकू खाने से, और अगर आप खाते हैं तो पाइल्स की समस्या आपको और बढ़ सकती है अगर आपको है
5: जी। और जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है उन्हें तो तंबाकू कम खाना चाहिए, बहुत ज्यादा कम खाना चाहिए।
4: एंड हमारे साथ नव्या जी जुड़ी हैं जो लिख रही हैं, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैडम जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कुमार टेलर्स जी ने अपना सवाल कर ही लिया था कि बार बार उनकी सांस फूल रही है, इसकी वजह क्या है। एंड शर्मा जी ने लिखा है, गुड इवनिंग मैम एंड सर, गुड इवनिंग, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञानसली में, प्लस जो भी हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, फ्रीक्वेंसी से या एप्लीकेशन से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप हमारे साथ बने हैं एक घंटे के प्रोग्राम में, क्लिनिक ज्ञानसली में, आपके स्पेशल वाले प्रोग्राम में। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। हर जानकारी को देने का मतलब सिर्फ इतना होता है ताकि आप अवेयर रहें। अवेयरनेस हर एक चीज़ को ठीक करने की सबसे पहली दवा होती है।
5: जी बिल्कुल, और इसी के साथ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग रहें, सतर्क रहें, और हमारे शो को सुनते रहें।
4: और हमें दीजिए अब इजाज़त, वक्त है अब आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अरे राम हो, कमवा करत करत मर जाई थे, कितना काम हो जाते, जाई चटपटो बलाई नहा हम, चटपटो जाई ले आई हाल चाल, लाओ अम्मा चटनियो लिहा जाई, और बिटीवा का ही सहावक ना आई, कितना घाम हुई गा दादा, अरे बाप मुड़वा जान पड़ते फाट जाई।
2: राम राम काकी, राम राम,
1: राम राम बहनी राम, ये का तू सब दुसाला ओढ़ ओढ़ आई हो बहनी,
2: बहुत गर्मी है,
1: घमवा कितना तेज है, अब चलो चटपटो बलाई नहा, सतुआ घोरे ही आज,
2: चलो चलो चलो
1: सतुआ पिए बलाई नहा, चलो जल्दी जल्दी चलो बहनी चलो, देखा तू कितना तेज घाम होत है, गरम बहुत होला, ये पानी वानी बहनी खूब पिया करो,
2: पिए था ब्लू कॉन्डी वाला पानी,
1: हां ये का होते बहनी, ब्लू कॉन्डी,
2: ब्लू कॉन्डी,
1: हां ब्लू कॉन्डी,
2: ग्लू कॉन्डी,
1: ब्लू कॉन्डी। अच्छा ये बहनी पल्लवा खटखटाओ, चटपटो घर आएगा वा, खटखटाओ

0: रहा है वह उठावे गई था।
1: अच्छा, और तबियत वहाँ ठीक है?
0: हाँ, तबियत हुआ तो ठीक है।
1: हाँ,
0: समय।
1: हाँ। अच्छा अच्छा, मनी घामा वहाँ से धूपों में जा तू तो छतरी वतरी तान लीन कर रहो।
0: अरे अब का चार जीना चढ़े का है और कपड़वा उतार के ले गई और छतरी लेके चली कि कपड़ा लेके चली।
1: हाँ यह फूर है कहा तू, और यह कुल मिली देखो काली जमा पढ़ा थी ना काली जमा, तो यह कुल बताई नहीं हमें कि ब्लू कॉर्न भी पिया करो। देखो
0: ब्लू कान भी ना ही होता है।
1: हाँ
0: नहीं ना कहो
1: ब्लू कान तो कहू रहा बनी ब्लू कान
2: डी बोले रहे
0: डी बोला जाता है डुलू कान डी
2: ब्लू कान डी।
0: हाँ यह कहा
1: ब्लू
2: कांडी
1: ब्लू कांडी
0: ब्लू नहीं डुलू कांड डुलू कांडी
1: डुलू कांडी
2: डुलू कांडी बोला जाता है
1: डुलू कांडी। हंसत ही बहनी है
2: चाची आप खराब कह दे थू नाम
1: तब यही तुम
0: से बता दो बहनी
2: ठीक से बता ब्लू कांडी
1: ब्लू कांडी है ना
2: ब्लू कहीं ना एनर्जी ड्रिंक
0: गुलू कांड कहीं ना गुलू
1: ये कोनो कोनो डिरिंक विरिंक कहती बहनी हम लोग शराब वराब
0: डिरिंक कहीं ना डिरिंक माने
2: शराब ना हो चाची।
1: हाँ
2: गर्मी से गर्मी में ही पिया जात है।
0: हाँ
2: चक्कर उक्कर ना है
0: ठंड हो जात है जो शरीरिया होता है
1: गर्मी में पिए वाला डिरिंक
0: डिरिंक माने तो पिया जाता है ना।
1: हाँ अच्छा तो वहाँ ये लोग पिए ही।
0: हाँ पिए चाहिए गर्मियाँ पिए चाही
1: गर्मियम पिए बहनी कहाँ मिली
0: गर्मियम सुनो अब देखो ये सब सहरी चोचला कहा जाता है।
1: हाँ
0: गुलू गुलू का कहीं ना
1: वह गुलू गुलू
0: गुलू कांडी ये सब जो है सहरिया में लोग पिया करत है। हमरे गाँव में तो भाई सत्तू पी लो घोर के।
1: हाँ हाँ सबके वहाँ गुलू कांडी
0: गुलू का कहा जाता है गुड़ का घोल लो
1: गुड़ का घोल बहनी नवा बनाए लो
0: रसा बनाए लो
2: पना बनाए लो
0: और नींबुआ गार के पी लो।
1: हाँ
0: ये सब हमारे यहाँ सब बढ़िया चला था अब सहरिया तो हम ना ही जाने
1: बहनी मैं तीन चार मेर के बताए तो जैसे एक बजी पनवा बनाए लो।
0: हाँ पना तो इस समय खूब बना बनाए धाई लो।
1: हाँ
0: और उसका दिन भर में पी लो दो चार बार
1: कस के बताओ रहा एक बजी फिर से तो दोहरा दियो
0: ऐसे हो तो कहा जलत है तोरे यहाँ गैसवा जलत है।
1: हाँ, गैसवा बरत है। हाँ।
0: तो गैसवा पर वो मुआ छील छाल के धाई दो तनी पानी ना दो
1: कच्चा मुआ।
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ
0: पानी ना दो माँ।
1: हाँ
0: वो खौल जाये है बढ़िया से
1: कुकुर में धाई दे
0: कुकुर में धाई दे।
1: अच्छा
0: फिर वो बढ़िया उबल जाये।
1: हाँ
0: और उबल जाये जब जरा ठंड हो जाए।
1: हाँ
0: तो उसका खूब बढ़िया मसल लो मीज डालो पानी डाल दो।
1: अच्छा
0: और पानी डाल के गुठुल गुठुल जो रुके है निकाल डालो।
1: हाँ
0: और निकाल के वहाँ तनी धनिया और पुदीना।
1: हाँ
0: एक चटनिया पीस लियो
1: धनिया पुदीना।
0: हाँ और जीरा जीरा ले लियो।
1: हाँ
0: और धनिया ले लियो ऐसा वाला खड़ा वाला धनिया जो
1: सुखल का सुखल का।
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: और उसका ले के।
1: हाँ पीस डाली
0: पीसो ना पहले उसका भून डालो तनिक
1: धनिया ले ली जीरा ले ली। हाँ और दोनों भूट डाली।
0: हाँ तनिक सौंफ डाल लो
1: तनिक सौंफ डाल लिया। हाँ
0: फिर उसका पीस डालो खूब महीन। हाँ। महीन भूख लो सिला। हाँ।
1: फिर
0: और उसके बाद वह धनिया और पुदीना वो सब मिलाए डालो और अगर तनी मीठ लागे मीठ पिए खो तो मिसरी है मिसरी तो धरी रहा थे घर में
1: है हमारे वो वाली मिसरी जमन धगवा निकला
0: धगवा वाली।
1: हाँ हाँ
0: वहाँ को पीस के मिलाई
1: वहाँ पीस ली।
0: हाँ
1: और अमावा के पनियम घोर दो
0: घोर दो तब बढ़िया घोर के।
1: हाँ
0: खाई दो ठंडा मशीन तो तोरे है ये
1: फ्रिजिया है फ्रिजिया है
0: फ्रिजिया में धाई के उका। हाँ। पियो
1: अच्छा
0: एक लू ना लगी लड़कोन का पियावा करो।
1: अच्छा अच्छा तो नीक लगी बहनी
0: बहुत
1: खट्टा रही नमकीन और रही मीठा और रही
0: लगी
1: तोर लोग बहनी सुन ले कैसे बनावे
0: गोल मिर्च डाल दे तनिक तनिक चरपरा हो जाए गोल मिर्च डाल दे उमा।
1: अच्छा
0: ये सब चीजें जो है पेट के लिए बहुत बढ़िया।
1: हाँ
0: और लूक नहीं लगी।
1: हाँ ये जो गर्मिया लगा थी
0: ये जो चलत है इस समय लूक हुआ
1: देखो देखो बहनी जेका देखो ते
0: बीमार
1: बीमार है बहनी घर से निकले थे बहरे गए बेहोश हो गए पर कई।
0: हम तो कहते यह खूब पानी पियो और पना वना बनाए बनाए के। हाँ। सब पियो घर में
1: नींबुआ पियो
0: नींबू गार के पी लो।
1: हाँ
0: और ठीक ठाक रहो और करने की सुख रहो भाई।
1: हाँ घबो तभी बचो
0: और पनिया तो खूब पियो।
1: हाँ पूरे
0: और ठंड पनिया बहनी ना पियो एकदम से जैसे अब जइयो घर और निकाल के फ्रिजिया से ठंड पनिया पियो।
2: हाँ चाची
0: नुकसान कर जाए बहनी
2: पतर को देखो बीमारी तब तो ना आई
0: नुकसान कर जाए
1: कहाँ बहनी।

0: कुछ भाई रहे
1: पतन को अपने घरे ही
0: बेराम ही
1: हाँ
2: बीमार हो गई नहीं कहीं हम ना जा रहे
0: बहुत बेरामो रहा थी पतर का
3: अपना जो हैंड पंप चलाए के पानी निकसी
1: हाँ।
3: वह है पानी पियो
1: ठीक है चाचा
3: और धूप से जुड़ते जाए के ना पिए गए ठंड पानी और ठंड पानी काहे पियो हम तो
1: अच्छा
3: कहीं
1: लागत है चाचा
3: अच्छा तो लगबे करी लेकिन बहुत ठंडा
0: है बहुत नुकसान है जान
3: हैंड पंपवा से भी तो तरह से ठंड पानी
0: माटी घड़ा ले आओ
3: हाँ
0: वो हमन पानी दे दो धोए के पहले के लोगवा यही कुल कट रहे तब नीक राहत रहे अब देखो जगह 72 बेरामी अब 72
3: और सत्तू को घोर घोर के पियो
0: है बहनी हमारे याद आएगा चटपटाओ भी बताओ सत्तुआ कैसे घोर के पी कौन चीज के सत्तू लाई चना का
3: हाँ चनवा अरे घर में पीस डालो
0: सबसे अच्छा
3: घुनाई लियो घुनाई के पीस डालो घर में
0: खाली चनवा
3: हाँ चना और तनिक ऊपर डाल दो जो हम पुरान का सत्तू रखे हुई हो ना
0: नहीं धरे है ना आज
3: खत्म होगा
0: हाँ
3: अतना तो हम तुका दिया रान कौन मेर खाती हो
0: खाई डाले हो का घोर घोर खाई डाले
3: तो चलो अब हम पिसाई तो तुका दे हैं
0: तो अब बताओ का पीस ले चनवा
3: भुनवा ले भुनवा लो
0: हाँ भरवम
3: भरवम भुनवाए के उका हाँ। घरम पीस डालो
0: हाँ
3: मिसकिया तो है तो रे
0: हाँ मिसकिया है
3: मिसकी डाल के पीस डालो
0: हाँ
3: और उमा तनिक से जाओ भून डालो वह पीस लो तनिक डालो
0: अच्छा हाँ
3: और ज्यादा चना डालो
0: चना ज्यादा हो जवा कम
3: जाओ
0: अच्छा अच्छा
3: अब जो नी पना बनोती ना यह हम सत्तू घोर देव यह है पनवम
0: अमवा के पनवा में सत्तू डाल दी
3: सत्तू डाल दियो
0: हाँ।
3: चम्मच भर डाल दियो बस ओका घोर दो उमा पी लो बहुत ठंड रही पेट
0: यह है कुल बहनी इसे भमवा मैया ई जोन है सबका बताई दो चटपटो
3: हम तो बताई थे भाई कि सब जने जौन जौन सुनत हो ई सब
2: हाँ।
3: जान ले के
2: हो सब ऐसे करबे
3: हां
2: पियत
3: रहो बहनी
0: और का पिया जा सके
1: हम लोग का सत्तुआ देबो आप
3: हम पिसाई तो ले लियो बहनी तो दान पूर्ण हो बहनी बिटियन का देख चाहिए और का
1: हम मैं दो इनका नदी
3: नहीं
2: नहीं काकी
3: हमरे हम दो अखी नहीं करी थे हमरे लिए दोनों जनी बराबर
1: तब आपका पतरको देख परी फिर
3: तो पतरका हुई उन्हों को देते भूमा का हमने
2: पतरका दिए मैं अकेले सत्तू खाई
3: हमरे कम नहीं पिसा
0: बजात है ये जान लो पतरका पतरका जो जान पाइन तू सब पाए हो तो यही है चटपटा उसे लड़का ही ले ले
3: हमरे को बाद ना छुड़ी है वो
0: हाँ और यही लाई ले कि ना ही चाची वो जरा देखियो रहा हमारे खड़तीन जब बांधत रहू गलगवा पीछे लागी गए
3: हम हो चाहे हम हो चाहे
0: काकी हम में दियो ले आए बहनी पन्निया हेयर वर के ले आए लो यही डाओ यही हम में दियो अब बांध के लेके गए
3: और यहाँ चटनियों बनाई लो ना गलकवा कहा जाता है
0: अच्छा गलकवा कैसे बनावा जाते
3: गलकवा बहुत नीक लागत है इस समय तो हमें बहुत नीक लागत हम बस बिस्नौटी रोटी बनाए के और है संग गलका संग खाई थे
0: कैसे बनाई वहाँ बताओ गलकवा
3: गलका बनावे का है
0: बताओ
3: छील डालो
0: हाँ
3: हाँ और तनिक उमा कलौंजी ले लो सौंप ले लो जीरा ले लो
0: हाँ
3: तड़का डाल के
0: तेलवम
3: तेलवम
0: हाँ
3: तनिक भात तेल लियो
0: हाँ
3: ज्यादा नहीं
0: हाँ
3: और उका तनिक कलहर डाल
0: अमवक
3: अमवक
0: हाँ
3: और बस उमा पानी डाल दो तनिक नमक डाल दो गुड़ बढ़िया डाल दो उमा
0: बस बनेगा
3: हाँ बल
0: तनिक खौल जाए
3: हाँ वह जो मसाला बताए है ना
0: हाँ हाँ
3: जीरा और धनिया भुना वाला
0: हाँ हाँ हाँ
3: और कड़ुआ करे खोए तनिक
0: हाँ।
3: तीत करे खोए तो मर्चा तनिक ना दो
0: मर्चा
3: ज्यादा नहीं हाँ। काली मिर्चिया गोल मिर्चिया ना दो
0: हाँ
3: अब बहुत बढ़िया लागत है लड़कुए सब बड़े प्रेम से खाई
0: अब देखो बहनी का था ना चीज बताई चटपटो के एक बड़ा ज्ञान है देखो नींबुआ पानी बताई हाँ नींबुआ पानी बताई बहनी गर्मी से बचे के लिए हमारे जो श्रोतागण है वह सुन ले कि गर्मिया से बचे के लिए हमारे चटपटो कतना जाना थी कि बताई कि सत्तू बना लो और सतुआ बनावे बताई दी इनकी बहनी चना भूज लो और जौ भूज लो ओका पीस लो
3: बढ़िया रहा था
0: हाँ और पना बताई
3: हाँ बजरिया हम जाओ वहाँ पैकेट बंद मिलत वो ना ठीक होत है
0: और पना बताई दी देखो गर्मी से बचे के लिए पना बताई अब आमे पना बनाई लो ओका बने पियो
3: और हैंड पंप को पानी पियो
0: हैंड पंप को पानी पियो बहुत हो तो मटका खरीद लो गरम पानी
3: खरीद लो मटका
1: अब हम लोग हैंड पंप का पानी पियो फ्रिज के ना
3: पानी पियो बहनी
0: बहनी फ्रिज के मशीन के पानी बहुत नुकसान
3: बहुत नुकसान करत है
0: हाँ और गर्मी से बचे के लिए यह कुल करेक परत है नींबुआ धरे रहो नींबुआ गार पानी पी लो कल जब जाती हूँ
2: तब हाँ काकी जाए
3: और कोल्ड ड्रिंकिया छोड़ दो जो कोल्ड ड्रिंकिया बताए रहो अब है
2: अब ना हाँ,
3: सब छोड़ दो कोल्ड ड्रिंक ये सब बहुत बेकार हो इसमें का होता है एक बार हम सुनी था
0: हाँ,
3: रेडियो पर
0: हाँ,
3: तो कहा था कि इमा सोडा ना दे था और चिनिया और वहाँ घोल बनाए देते है वहाँ कुछ होत नहीं है
0: तब बहनी कुल ना फिर देखो सब हम देखे था घमोम खड़ा थे लड़के कोल्ड ड्रिंक के बाद ठंड गन गट गट गट गट बहनी लड़कवा बिटी में कुल पी ले तो यही बेरामी हो जाती
3: ना पियो बहनी तू लोग ना पियो
0: हां
3: तोरे सब या पिया था तो का पिए दे
0: देखो तोरे
1: सब है चाची
0: तोरे सब कलेजवा जानतू जातू ना
1: हां चाची
0: और एक ठो बोतलिया ले जातू यो पनिया भर के वही मैं यहां नेबुआ नि छोड़ लेओ ठीक तनियक नोन डाल लो और तनियक चीनी डाल लो झाल ले लो वाह ले जाओ पियो
3: जाओ अब बोतलिया में धरे रखो
1: ये तो घरे वाली ग्लूकोन डी है
3: हां और का
0: हमरे लोग वहां ब्लूकोन डी पीते घर हैन बनाए बनाए
3: उजर का नमक तनिक डाल दो करिका नमक डाल दो उमा निबुआ गार दो तनी तनी भर चीनी गार दो डाल दो उमा और झल ले उका धरे रहो तोहार ई सबसे बढ़िया तोहार
2: अब ऐसे करा जाई चाची
3: ड्रिंक हो या
0: ई ड्रिंक हो ड्रिंक
3: हां ई ड्रिंक सबसे बढ़िया
0: अभी ड्रिंक या पीबो तो बेराम ना होबो बहनी और तकतियो बना रही
3: तकतियो बना
0: देखो आजकल देखो जेका देखो बिलियर्ड बिलियर्ड बिलेड पेसर बिलेड
2: पेसर बोला जाता
3: अरे रहे तो तू ना बोलो बिलेड पेसर हाँ। बिलेड पेसर ना बीपी कहा जाता है अब
0: बीपी
2: बीपी
3: अब बिलेड पेसर ना ही कहते कोई
0: अच्छा बिलेड
3: बीपी कहते हो बस बिलेड पेसर होएगा
0: तो ऐसे हमें और कोई चीज बता दो हम बोल ले जल्दी जल्दी
3: जल्दी से
0: छोट छोट कह लो
3: यहां बीपी कहा करो
0: बीपी तो देखो अब सबका कहेगी बीपी कम होएगा वा कोई बढ़ेगा है ना
3: आई ये
0: तो ये जब पीबो ड्रिंक किया जोन बताई नहीं चटपटाओ नींबू वाला तो हर बीपी ठीक रही
3: हां
0: है ना तब बेराम ना होबो का तू चक्कर आवे लागत
3: बताओ तो यह है बताओ छन डॉक्टर लो
0: हां
3: हां यह है बताओ
0: डॉक्टर भाई हां पूरा कहा तू बनी बतिया तो पूरा है
3: तो ई समय जोन है सुनवा बहुत महंगा हुई गा है
0: अरे सुनो
3: और तो सुनो मोदी कहा मोदी के ऊपर तो हमें बड़ा गुस्सा लागत है
0: हां
3: कहे से वो तो सास हुई गए ससुर हुई गए वो
0: हां
3: कोई चाहे सास मान ले उनका चाहे ससुर तो राष्ट्रीय सास ससुर की तरह हुई गए
0: हां
3: जानो कहे
0: कहे
3: कहत हैं कि कोनो शादी विवाह पड़े कोनो कार्य करें पड़े तो सुनवा ना खरीदो
2: हां मऊ देख
3: ये कहीं ना है अब बताओ सासे का जैसे हम पहनित रहा हमार बूढ़ा रहा है
0: हां
3: कहा कि खियाए जई है तोहार सोना टूट जई है एकर निकाल के धई देओ वहां मोदियो कहत हैं बैंक में धई देओ अपन सोना अब बताओ बैंक में धई दे हमरे तो लगे तो हैये नहीं अब बैंक में धई दे तो पहने का बहनी
0: बहनी शौक मारे पहना जाता
3: और तो और सुनाओ उका बताई कहत हैं कि तेल कम खाओ
0: तेल कम खाओ
3: तेल कहा था तेलवा कम खाओ तो और देख लो जो तेरे भैया हो
0: हाँ
3: तो उन्हें तो रोज बरिया चाहिए लौके की बरिया बनाए दो कटहर की बरिया बनाए दो का पनिया पकाए दी का
0: नहीं हो तेलवा तो लगभग करी बहनी बिना तेल कौन मेरे के
3: हाँ
0: ऐसे बताओ दनी हमें चीज और बता दो
3: हाँ
0: जब हमारे याद
3: तो वही सास हुई गए मोदी जी का आप सास कहाँ करो उनका जो है देश की सास मान लो
0: हाँ भावे करें कहा कहा
3: जाए चाहे ससुर मान लो
0: हाँ कुछ मान
3: ऐसे ससुर जो है टांग अड़ावा करत रहे
0: हाँ।
3: ऐसे मोदी टांग अड़ावत है
0: सही कछु मान लो कछु मान लो तो ये बताओ तनी हम मैं
3: अच्छा सुनो कब्बो कब्बो तो हम सोचित है और रेडियो आप सुना करी थे तो उनकी बतिया हमको नीको लागत थी कि ये सब दिखावा होते हो सोना उना पहन के जाओ शादी ब्याह में
0: तो
3: खड़े हो
0: तो फुरे है हाँ
3: तो ये सब तो खैर दिखावा है ये
0: हाँ दिखावा
3: और ऐसे में कहा होता है अमीरी गरीबी की जो खाई होता है वो और गहरी हुई जात है
0: हाँ।
3: कहो कैसे हमरे लगे है तो हम पहन के चमक के खड़े हुई गए
0: हाँ, हाँ,
3: और तुहरे लगे ना ही है तो तू एकदम लगी है कि अपने का वो समझे लगे हाँ, होगी हाँ, हाँ। मन में लागे लगा था कि हमरे लगे ना ही है तो मोदी कहा ये बात ठीक है और कहा था कि तेलवा थोड़ा कम इस्तेमाल करो तो तुहार सेहतिया ठीक रही
0: वहाँ बतिया ठीक
3: वहाँ ठीक है अब लेकिन घर वाले तो ना ही मानत है ना
0: उनका तो कटहर एक बरिया चाहिए
3: तो हाँ कहा था हमरे लिए कटहर अभी समय रोजे कहा था कि कटहरवा जब चला जाए तब बनाइयो बरिया
0: कसके बनेबो हाँ कसके बनेबो बरिया हमें कटहर एक बरिया बताओ पहले
3: अरे कटहर की बरिया कौन बहुत बड़ी
0: कौन मैं बताओ सब सुना थे सुनी ले
3: तू हो सीखी हो बहनी
1: हाँ चाची
3: अब तो ठीक है अब बहुत बड़ा वाला कटहर ना लियो छोट मझलका लियो जब बहुत ज्यादा
0: बीज ना हो
3: हाँ बीज ना हो वह कटहर लेके उसका बढ़िया से धो धा के काट लो, ऐसे बस पीस पीस बना लो पातर पातर। अब उही का हल्का उसे डालो, ज्यादा ना उसे
1: काकी। लेकिन हम तो कटहरवे ना काट पाई, हथवे कट जाई मार तो।
3: तो कोई बड़े से कटवाए लियो बहनी, कोई बड़ा हो तो काट ही दे। तू लोग ना काटो, बे बच्चा हो कट जाए। सही कहा थे।
1: हाँ चाची बहुत टाइट होता है।
3: हाँ कटहर में ना ताजा ले हो तो ना ही होता इतना लगी, जैसे बसियाए जात है ना।
1: हाँ।
3: तब ज्यादा जांगर लागत है।
1: हम लोग मम्मी से कटवा।
3: हाँ कटवा लियो, और का ज्यादा ना उसे हल्का हल्का उसे लियो। उसे के तनिक बेसन ले लियो, और चाउर का आटा है कि नहीं है?
1: है चाची।
3: तो वह मेरा लियो दोनों, तनी
4: बेसन
3: और चाउर का आटा, और उमा लहसुन धनिया मिर्चा अदरक सब। हाँ। मतलब पीस लियो मसाला पीस के।
4: हाँ।
3: और वही बेसन और चाउर के आटे मिला लियो।
4: हाँ।
3: और एक गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लियो।
4: हाँ।
3: अब तेल तो डायरेक्ट पड़ी मोदी चाहे जितना कहा।
4: हाँ। तो करी।
3: तेलवा पड़ी।
4: हाँ।
3: और उमा बस मिला मिला करके
1: बस
3: उमा डाल दो तेल
4: उबाल ले।
3: हाँ, उबाले तो पड़ी है और का।
4: तो ठिकाने से उबाल ले कितनी
3: ना ही हल्क उबालो।
1: अच्छा।
3: ज्यादा ना
1: भाप लागे वाला है।
3: हाँ, बस भाप लाग जाए एक बार।
4: हाँ।
3: खौल जाए पनिया ढंग से, अब बस निकाल लो छान के।
4: अच्छा।
3: अब बहुत नीक बना थे कुरकुरी कुरकुरी वह बरिया।
4: अच्छा।
3: हाँ और उसके ऊपर तनिक फिर वो मसाला एक होता है।
4: हाँ।
3: वह धनिया जीरो जीरा लेके और मिर्चा मसाला लेके पीस डालो महीन महीन।
4: हाँ।
3: और उसके ऊपर फिर भुरुक दे।
1: आज चाची सब सोच के नहीं की हम सब सीख ले बाजे।
4: सीख ले तो बनाई भी बनी इसे बस सीजनवा है ना।
3: हाँ, खाए लो खाए चाहिए
2: देखो
3: ये जो।
1: अच्छा चाची आप दोनों जनी तो सखी हो, तो आपका ज्यादा कैसे आवत है इनका कम कैसे आवत है?
3: ये हमारे घरे खात रही बहनी बनौते नहीं कहा का करी बनाई
2: इनका।
4: देखो ये बनावा थी तो हमें बनावा थी, तो जब हम बना बनावा पाई जाई थे खाए तो हम बनावे नहीं जाई थे किनारे। और कैसे बना थे हम यहाँ नहीं जान पाए
3: तो कही थे हमारे घरे खाई
4: तो ये बनावा थी तो
3: इनके पाणे जी का भिजवाई दे थे।
4: हम खाई थे और बांध ले जाई थे।
2: हाँ
4: ये जब बनावा थी तब बलाई लेती तो हम का करे बनाई बताओ।
1: अरे चाची तो सीख तो लिया करो।
4: अरे तब का करे मुरखैली पाली बहनी
3: सीख ले। सीखे को होते तो हमें बलाई लेती अपने।
4: जब हम का बनावा तो इनका बलाई लेती कि आओ तनी सखी बनवाई दो बस ये बैठ जाती।
2: बढ़िया दोस्ती निभावती दोनों।
4: हाँ बस ये बतावा करती अब चटपटो दुलारो ई करो अभी करो ई करो।
3: बहुत बचपने के हमार लोगन के दोस्त।
1: हाँ सखी जो रह रहा काकी।
3: हाँ सखी जो
4: बहनी सखी जो वरिया मौनी कुल लाइके मन कंघी सीसा चिमटी बिंदी
3: हमारे दिन हम इनका
4: के धान गेहूं कुल धाई के इनका तब सखी जुरा ने दुपट्टा उधाई दिया ना वही में। हाँ याद है
3: सब याद है कहे
4: ललका दुपट्टा।
3: बताओ बचपन की दोस्ती कौनो भूलत है?
1: कोई ना भूलत है चाची।
4: तब
3: आज तक देखो किस्मतिया की जोरदार हम बैठी हैं। यहो कि इनहो किस्मत बहुत जोरदार
4: एक
3: गांव में बैठे
4: या होएगा।
1: अब हमेशा निभाओ दोस्ती।
4: अब अपन हम सब
3: बढ़िया से रही था बहन बहन की तरह।
4: ऐसे बहनी सबका रहा चाहिए है कि नहीं?
3: और क्या हमारे कोनो दुख पड़ा ये दौरी चली आई, इनके कोनो दुख पड़ा हम दौरी चली गई।
4: चार दिन का जिंदगी है। अरे ये
2: खाए खातिर ज्यादा आवत ही आपके
4: यहाँ। ये मैं कब मारे तू है? अब मैं मारे तू है?
3: खाए पिए ये इसे कोनो घटत नहीं बहनी।
1: और का चाची
3: इसे बढ़ाती है
4: या हमें बहुत बनाए बनाए खवावत हैं जानी कि नहीं जानी हूँ
2: यही तो कही।
3: अब इनके एक आध आदत हमें ना नीक लागत है कहो का ये हमारे साथ जब पार्टी जाती तो नियत छोड़ दे। बस वहाँ हमें बुरा लगत कहिए कि ये रसगुल्ला है तनी बांध ले चलो है?
4: तो बहनी सुनी लियो हमारे मना खाते बांध ले लड़के वो खा ले है।
3: अब बजिंदर का ले आओ भाई संगे लिए रहो।
1: हाँ।
3: अब बजिंदरवा के लिए तू रसगुल्ला बांधो अपन साड़ी बनवा
4: ले
3: लो। अब
1: का चाची तू ही का सवे देखा तो एकदम तो
4: कोई नहीं देखते बहनी चुराई चुराई बांधे थे।
1: हां
3: नहीं सुनो तो बहनी अब पन्नी पन्ना हो तो चलो भाई चुराई धई लो
4: नहीं तो अब पन्निया जब तब की गन तब पन्निया नहीं खोसे रहन का।
3: एक बार एक दो बार जो सड़ियां बांधे उसका
4: का गुरुवा दौराई सा वो तो हमरे चेत है। एक दिवा जी बहनी बांध लाए ना चरावा में है तमें कुकुर दौराई।
3: तो यहाँ इनका समझाई थी कि ये सब लालच नहीं ठीक है
1: और
2: बेइज्जती
3: खा लो जी भर के खा लो हुआ हां कोनो कमी नहीं रहा था लेकिन खा लो भी बांध लियो।
4: सुन रहे बनी अंशु का हमार बतिया सुन लो एक दाई हम गए नहीं चटपटों के साथ है।
0: तो हम एक दिन का देखे कि वो चार बहनी पन्नी लेके आई रहा चार करिया करिया हाँ एक जगह बहनी वो रसगुल्ला बांधीन एक जगह कचौड़िया धई लीन और हम खड़ी ताकि उनका
2: वही सब अपनो करती बाप
0: कि हम चाहे हम तो मनो रसगुल्ला ही धरन है ये कचौड़िया धरन ओकरे बाद एक ठो पकौड़ी बन रहा वाह कम से कम पांच पन्नी रहा तो पांच सामान वे बांधे रही
3: बहनी इस समय हम तो ये कही कि देखो शादी ब्याह का तो जोन चलत है चलते है
0: ना ही खाए बहनी ऐसा ही तो
3: खाए भर का ना ही है बहनी जाओ बस तनी बहुत खाए लो अब हम तो देखा एक जनी रहा है अब वो बड़का बड़का तो पलेट होता है ना पार्टी में वो उठाए पलेट और पलेट लेके उमा कतनी सब्जी बनत है उमा पार्टी में
1: हाँ चाची
3: और कतने तरह खाना बनत है सब तोहरे लिए ना ही बनत है
0: जितना बहनी खाए खोए उतना ही लिए
3: लेकिन वही जानिन की सब हमरे लिए बना तो हमें सब धरे खाए तो भैया एक किनारे वही चाउर धई लीन दालियों के ऊपर डाल लीन जतनी सब्जी रहा है सब सब्जी डालीन फिर दही बड़ा रहा है दुठो दही बड़ा धई लीन और उसके बाद पहुंची तो दो तीन तरह का मिठाइयों रहा है गाजर का वो का रहा है
0: हलुआ
3: नहीं मूंग का हलुआ रहा है
0: मूंग का हलुआ रहा
3: सफेद हाँ। रसगुल्ला रहा है और काला रसगुल्ला रहा है
0: हाँ
3: वो सब धई लीन किनारे अब भैया हम तो देखा करी और हम का देखी
1: सबके देखा
2: चार लोग उनके पीछे
1: नजरिया नहीं रहा
3: हाँ भाई जहाँ तहाँ पर से तो लाइन तो लगी रहा था हाँ। कि तुम हटो तो हम आगे बढ़ी भैया हुई बहू तो परसी ने मन टोक दी सुनकर कही इसकी बहनी कई दिन से भूखा नहीं हो तू ये बताई दो अब कितनी बड़ी बेइज्जती राम राम कितनी बड़ी बेइज्जती दुलारी
1: इनका चाची का बताओ
2: इन्हें ऐसे करा थी
3: ये सब ना ही ठीक लागत है
1: आपस कोई पूछ नहीं था
3: समझाए बहनी खाए रहा है तो तू जाना तो तोहरे लिए सब बना तो एक एक चीज खाती हूँ एक परस लेती हूँ खा लेती हूँ दूसरा परस लेती हूँ खा लेती हूँ का जरूरत है कि पेट पलेटों में जितनी जगह नहीं
1: तो दे तीन दिन का खाना ले जावे नहीं
3: हाँ ये टीला खड़ा कही लेन
0: ऐसे हमहू देखे ना बहनी एक मर्दे कही हाँ वो यहो धैले वहाँ धैले यहाँ और जैसे जान पड़े कि गाय भैंस भकर भकर हमारे पीछे खड़ा हो गए चबाए धई के खाना पपड़वा कर दे मारे हम कहे मना कहते कि अका हम धकेले दे जाए वो तनी दूर गिरे तब हम मुड़ के उनका कहने है तनी पाछे हुई के खाओ मुड़े हमरे कर दे कर यहाँ हो तब वो जाने थे पाछे हुई के खाइन आधा खाइन आधा वैसे पलटों में भरे भरे गाय बहाय दीन अभी कितनी गलत बात है
3: देखो कहा जाता ना कि अतना लो थाली माँ की वेस्ट ना जाए नाली माँ
0: वेस्ट माने का होते
3: अब वो कहा जाता है तू हर चीज का माने का है पूछे लागे तू
0: हे बेटी तू बता भाई नहीं वेस्ट माने का होता
1: खराब खराब ना हो बर्बाद ना हो
3: वेस्ट वेस्ट माने खराब वेस्ट
0: व्यर्थ
3: हाँ
0: हम यानी बेस्ट
1: आपका जितना जरूरत हो आप उतना ही ले
3: उतना ही ले
0: हाँ ये तो बतिया तो पूरे
3: देखो आजकल जौन है गैया है भैंसिया है कुकुर हाँ। हो अब वो सड़ा वड़ा खाना अब हम तो फेंक दिया प्लेट उठाई हाँ, के गम से
0: हाँ।
3: हमारे बिटिया तो ब्याह रहा है नहीं और हमें कलक ममता है नहीं खाने की हाँ। तो उठाई के हम फेंक दिया अब ना वो गाय खा सकत है ना वो भैंस खा सकत है ना वो कुकुर
1: लेकिन चाची खा लेते गाय वाय कहाँ जान पावत थी बीमार हो जाती
3: हाँ तो गाय वाय बेराम हो जाती ना ही खाद बहनी बहुत ज्यादा सड़ जात खाना कस कस खाई
1: अरे हम देखे न का की बीमार हो
3: तो बहुत बुखार हुई है बहनी तब खाए ली हुई
1: हाँ।
3: और नहीं गाय भैंस ऐसे सूंघ के छोड़ देती
1: हाँ
3: कुकुर तो हाथ मतलब छुबे न करिए
0: पूरे बतिया पूरे
1: अतार कुकुरा कहाँ गा चाची
3: हमार कुकरा ऊपर बंधा है कमरवा में बैठा है बढ़िया पंखा खावा खात है हाँ। पानी धरे है उनका खाना धरे है जब मर्जी खाई अपन और ऊपर से भौंका करी
1: आज हम लोग दरवाजा खटकाए तो देखे नहीं ना
3: ना ही ऊपर रखे
2: आज ही
3: ठंडा ठंडा बंधा
0: ठंडा हो हुआ तो परा रहते सोवा हाँ, करत है
3: दुल्हन तो है ना अब तो उनके कमरे में कुकुर रहा
0: तब हम ठंड रहते
3: आराम से पड़ा है अब ना ही भूखी कुछ दिन वो जब तक का ठंड मिले वो गर्मियां परेशान हो जाए तब भूगत है
0: हाँ तो बहनी जानत हूँ आजकल का चलत है बड़का मंगर हो चलत है
3: हाँ इस समय अरे भंडारक ना पूछो।
4: हाँ
3: एक दिन तुहार लोटन भैया हमका कहिन कि चलो आज तुका हनुमान गढ़ी घुमाई दी।
4: हाँ भंडारवा कराई दी।
3: भंडारा तो जौन चलत रहा चलते रहा, लेकिन अतनी भीड़
1: चाची
3: कि जाय भर का नहीं अंदर।
4: अच्छा पटो तू कह रहा कि हम भंडारवा करबे तो टार दी हो रहा।
3: अब का करी भाई जाय पड़गा ना उधर, बियाह शादी ठना रहा है तो फिर छूट गा हमार। अब करब फिर से करब।
4: तो हम सुने ने की बहनी
3: आठ पढ़ी है आठ।
4: हम तो सुना बहनी की मलमासो लाग गा है।
3: मलमास लाग गा तो और नीक है।
4: अच्छा तो हाँ। भंडारो चलत है मलमासो लाग गा है।
3: हाँ दोनों
4: मलमास कही है लागे हो।
1: 17 तारीख से
4: 17 मई से
3: लाग गा।
4: लाग गा
3: हाँ।
4: तो सुनो आज करो कि
3: आज बताई।
4: हाँ
3: अतनी गर्मी रहा है तब जब हम पूजा करे बैठे हनुमान जी के।
4: हाँ।
3: तो हम कहा हे हनुमान जी हमरे अगर पूजा में तनिको तू खुश हो तनिको तू का लगे कि हमार पूजा बहुत बढ़िया है।
4: हाँ।
3: तो तू एक काम करो।
4: हाँ।
3: हनुमान जी से हम कहा।
4: हाँ।
3: हम कहा इस सूर्य देवता का एक बार फिर से मुँह में दबा लो। अतना तपे हैं अतना तपे हैं अब नौ तपा लगे जात है।
4: हाँ 25 तारीख से नौ तपा लगी तब और तपी हैं।
3: हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करें।
4: हाँ
3: कि भाई देखो इनका दबाई लो एक बार मुँह हनुमान जी, बस कुछ टाइम के लिए इनका दबाए रहो।
4: हाँ
3: ठंड हुई जाए
4: तो ये गरमा नहीं है।

0: देखियो इतना बड़ा गाना है महा।
1: तो हनुमान जी का बड़ा पावर हो भाई,
2: बहुत पावर हो बहनी, बहुत पावर हो।
1: ये कलयुग के भगवान है, कलयुग में बहु कहूँ कहूँ है।
0: हाँ, ये तो इनका, ये तो इनका भगवान कहबे कि ना।
1: हाँ, कि तू
0: की जो है
1: रहियो तो।
0: एक वही एक अश्वत्थामा अमर कई दिन ना, जब तक कलयुग है
1: जब तक चले तब तक तो हार सब नाम ले है, हाँ। पूजा करी है, देखो कितना बड़ा बड़ा भंडारा होता है।
0: हाँ।
1: अब भंडारा की बात तो हम बताइबे नहीं करें।
0: हाँ, तब हाँ। कब है?
1: तब गए हुआ देखा कि तीन तीन चार चार जगह भंडारा।
0: अरे राम
1: भाई, वही हनुमान गढ़ीवा के लगे
0: एक कई जगह।
1: हाँ, पूरी छोले बटे।
0: हाँ।
1: और का कहा जाता है
0: चावल
1: एक जगह। हाँ, मिठाइयो बटे।
0: हाँ।
1: और कढ़ी चावल एक जगह बटे।
0: हाँ।
1: और एक जगह कोल्ड ड्रिंक
0: वहाँ बहनी डिरिंकवा। तब
1: हम कहा बड़ा बड़ा बोतल रखा।
0: हाँ।
1: और सब गिलसिया ले लेके मार पिए
0: रहा डिरिंक। और हाँ। फिरी पाए गए।
1: अब फिरी पाए गए तो का कहे।
0: हाँ।
1: तो कहीं कहा लोटन भैया।
0: हाँ।
1: खाइबो तब हम कहा हमें शर्म लागत है, अकनी भिड़िया में के घुसे और के मांगे के खाए, कहीं प्रसाद होए। तब फिर ऐसे हम खड़ी रहे ने किनारे।
0: हाँ।
1: तब एक जने रहे देखिन की खड़ी है तो लई के एक दोना में आए भाई बहुत बढ़िया तरकारी और उमा पूरी।
0: हाँ।
1: और सब मिक्स तरकारी रहे, वाह कद्दू रहा है उमा, बैगन रहा है उमा, आलू रहा है, टमाटर रहा है,
0: लौकी रहा है,
1: सब मिली हुई तरकारी रहा है बढ़िया।
0: वाह,
1: तो हमका
0: मिक्स बेज।
1: हाँ,
0: मिक्स बेज,
3: सब मिक्स बेज बोला जाता है,
1: मिक्स बेज
0: वो है मिक्स।
1: हाँ,
0: मिक्स बजवा बहनी।
1: हाँ, तो का खाएं।
0: हाँ।
1: और फिर कहीं क्या उर ले हो।
0: हाँ।
1: तो हम कपड़े हिलाए दिया
0: कि हाँ नीक लाग गा।
1: तो फिर वो दो लेके आए, एक दो ना और लेके आए,
0: पूरी खा ली, पांच
1: चार खाए, चार
0: चार
3: चाची प्रसाद तो वही सो भी बहुत अच्छा,
1: बहुत नीक लागत है भाई। और प्रसाद खाए चाहिए बहनी।
3: हाँ,
1: कौनो अतनी मेहनत करत है, सब जुहावत है सामान, और हम नाटक करी कि नहीं हम भिड़िया में नहीं घुसब, हम खाएब नहीं, ये गलत
0: नहीं, प्रसाद होते भगवान के बहनी।
1: तो अगर पहुँच गए रहा थाने पर।
0: हाँ हाँ।
1: तो खाए चाहिए तो
0: प्रसाद पाई गये
1: पाई गए हमार। हाँ। किस्मत बढ़िया रहा,
0: किस्मत बढ़िया रहे, पाए गए पूरे भैया,
1: भीड़ तो बहुत रहा है।
0: हाँ।
1: मेलवा लागत है हो।
0: हाँ
1: हाँ,
0: हनुमान गढ़ीवा में।
1: हाँ, गुब्बारा वाले गुब्बारा बेचे, बतासा वाले मर।
0: तब बहनी जब बड़का मंगरवा होते तब मेलवा लागत है।
1: मेला लागत है।
0: हाँ, बड़का मंगरवा में यहाँ मलमसवा मसुमरवा कहीं। हाँ।
1: बाला झाला झुलनी मुलनी सब।
0: हाँ, कुल बिकाए।
1: हाँ।
3: चाची आपो जाबो
0: कहा,
1: और का एक
3: बड़ा मंगर में आपो जाओ।
0: चलो चली चली कोनो दिन।
1: चलो हाँ हुई आओ
0: मंगरवा चलवाओ।
1: हाँ चलो।
0: अब कहिया पड़ी बड़का मंगरवा?
1: अब कब पड़ी? यहाँ 24 पड़ी का,
0: 24 का महीने,
1: 26 का पड़ी,
0: 26
1: का पड़ी, 26 का पड़ी,
0: 26 का,
1: 26 का हुई सकत है कि हमारा अगर बंदोबस्त हुई जाए।
0: हाँ।
1: तो हम करब भंडारा।
0: हाँ बहनी, तो
1: भले छोट मोट करी,
0: छोटे ही कर लियो बहनी। हाँ, देखो
1: करब
0: पूरी बना लियो, तरकारी बना लियो और नुक्ती बना लियो,
1: 100-200 लोग खाए ले हैं,
0: खाए ले बहनी, तू सब आई जाए उनके।
3: हाँ, तो सब आईबे करब।
0: हाँ, तो एक ठो हलवाई लगवाई दी हो।
1: हलवाई का करो, हम तो बिल के बनाए डाले, 100 बने खाना ना।
3: हम वो लोग ना अपना चाची,
0: हम सब बना लिए,
1: बनाए लिए, और का
0: ये सब वही में जो ने मेहनत कई दे हैं।
3: हाँ,
1: कई दे जाई हलवाई ना ही खाली है कौनो।
0: हाँ।
1: आजकल हाँ, जैसे लो उनके बड़े बड़े भाव हो।
0: चलो हमारे
1: तो हम लोग बनाए
0: बनाए लिए। हाँ, करब का बैठ
3: अब पतरका का बना लिया जय चाची।
1: हाँ, तो
0: पतरका के यहाँ बनाए बैठा दियो, कह दो जितना सलाद है कुल काटी
1: काटी डाले,
0: खीरा मूली प्याज जो टमाटर
3: ना पतरका बनवाए खाना वाना ज्यादा तेज है।
0: अच्छा,
1: तो पूरी बिलाई डरी है,
0: उनका पूरी छान डरी है कुल, जितना पूरिया है उतना छान लिए है कुल, और का
1: तो चलो एक ब्रेक ले लो, तो हम कुछ बनाए खवाए दे तू का।
0: हाँ हाँ हाँ, आज सुने ने कुछ चना वना बनाए हुए?
1: चना नहीं।
0: हाँ,
1: सतुआ, सत्तू बना के रखे हैं,
0: लाओ सत्तू वाला सत्तू। हाँ। चलो ब्रेक ले तो चो,
1: एक ठो ब्रेक ले लिया जा,
0: ब्रेक
1: तब सत्तू का पिया दे तू का, तू
3: पी
1: के देखो
3: कैसा लागत है।
4: Delicious.
5: Hannah, let's dine. Come and join. Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आप आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन लाइव बारबेक मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: बड़ा नीक रहा हूँ सतुइया, तो बड़ा नीक रहा है बनी धूपी अंशु का।
2: हाँ हाँ चाची, बहुत नीक रहा।
1: उनका देवी का भी प्यार दियो, देवी का यहाँ।
3: अरे पिया ना महू चाची,
1: कतना खट्टा ये चटपटो, ये खट्टा कैसे होएगा
4: वहाँ? अमावा पड़ा है हो,
3: चीनी ज्यादा डल में नहीं करी नहीं,
4: लेकिन चीनी ना या देखो
1: चीनी अमावा डाली ना, कतना खट्टा कतना नीक है भाई। नहीं
4: तनी मिश्री पड़ी है, चीनी ना ही डाला है,
1: मिश्री डाली हुआ है पीस। हाँ। के जैसे बताओ तो।
4: हाँ, वह तनी मिश्री ना दिया।
2: अब हम बनाए चाची झा,
3: बहुत नीक लागत है चाची, हम जाए घर तुरंत बनाबे।
4: हाँ, हाँ बना करो बहनी, बना के धैले तो सब फ्रिज तो है तोरे लोगन के।
2: हाँ चाची,
4: वो हम धैक दियो बना के।
1: हाँ फ्रिज हाँ। देबो तो जब चाहबो तब बनेबो बहनी।
4: तो बहनी कोनो गाना ना तू लोग सुनाई दो।
2: हम लोग का तो उतने नहीं चाची।
1: तो हर बहनी कलेजवा बंद हुई का कि भाई खुला है?
2: पेपर होते है
1: ये, पर का होते बहनी?
4: पेपर कहा थी, पेपर
2: एग्जाम, परीक्षा होते,
3: परीक्षा।
1: अच्छा परीक्षा होते, काहे काहे परीक्षा?
4: अरे पेपर होता है हो, परीक्षा काहे को होता है, जो पढ़ रही वह है पेपर होता है।
5: का पढ़ा तू
4: बताओ, का पढ़ा दो इनका बता दो भाई,
5: का पढ़ा तू, काहे परीक्षा?
2: हम लोग बीए में पढ़ी था, वही के परीक्षा चलत है।
4: बीए
1: तो आपकी कक्षा पास हो जाबो?
2: आपसी हम लोग पास हो
4: जाबो। तेरे हैं 14, हम पढ़े थी हैं मालूम?
1: बहुत बड़ा पढ़ा पढ़ाती हूँ बहनी तोरे से।
4: हाँ पूरा जिंदगी लाग जाते है पढ़ाइया करे।
1: हाँ कतना इनके सारी बाप नीक है कि कतना 14-13 पढ़ावत है।
4: भैया बहनी आजकल शादी ब्याह ना ही होता, अगर पढ़ाई लिखाई ना हो
1: हाँ
4: तो सदियों ब्याह में अड़चन आवत है।
1: हाँ यह बात है,
3: पढ़े लिखे रही है थोड़े दहेज कम लागी।
4: हाँ
1: हाँ पढ़े लिखे रहो तो दहेजवा कम नहीं, पढ़े लिखे रहो तो दहेजवा तो लगबे करी। ओके अलावा ये रही कि पढ़ा लिखा लड़का मिले,
4: पढ़ा लिखा लड़का तो मिलबे करी। और सुनो जैसे मान लो कि पढ़ी लिखी है कौनो नौकरी का मौका मिले।
1: हाँ।
4: तो वह कर ले
1: बहनी, देखो
4: ना ही है आजकल।
1: हम तुम्हें एक बात बताई, आजकल के युग जमाना जोन है कि अगर पढ़ी लिखी हो और कहूँ मिला था तुम्हें सबका नौकरी तो नौकरी कई डालो। हम तो यहाँ कहे जानी देवी, हम तो यहाँ कहे थे कि नौकरी कई डालो।
4: हाँ करेक्ट चाहिए,
1: बिल्कुल कह लो बहनी। देखो
4: चार गोड़वा हाथ की हुई जई हो तो कोई चार पैसा ना कही पाई।
1: हाँ, चार पैसा तू खुदे कमाबो तो कोई कागे तू हथवा ना पसार,
3: हथवा ना पसार एक पड़ी
2: का। अब पढ़ा का करे जाते चाची
1: है तो। हाँ। जितना पढ़े हो तो ना कुल निकाल लो, पढ़ी रहो तो लड़के बाले हुई है वो देखी है।
4: बहनी देख लो दो दो जनी बैठी।
1: हाँ देख लो,
4: कौनो इज्जत ना है घर में,
2: काम करा जाते,
4: इतना काम करी थे
1: बहनी।
4: इनके तो देख लो गोबर गाय भैंस सब है, हमें देख लो सवेरे में उठी थे
1: तब का
4: झाड़ू बुहाड़ू अर्तन बर्तन खाना पानी कपड़ा सब का।
3: आपके करत ही आप कुछ ना करत,
4: तो ही करत
1: करी
4: सब पे। देखो अब यहू जाने थे हम बताई थे कि अपन नाड़ी पे भरोसा रखो
2: है।
1: बिल्कुल सही बात है,
4: अपन नाड़ी पे भरोसा रखो कि हम कहीं के खाए ले खवाए दी चार लोगों ने।
1: हाँ यह पैना करो कि कोई आई तो हमने बनाई खवाई
4: करी है, करें चाहे ना करें हमें करे खाए, हम करी
1: हमारे दम है, हम जब तक हमारे दम
4: करे से हमार शरीरिया चलत है। हाँ। से ई जानो बहन
1: बस यह हो चाहिए
4: बस।
1: अब कतना ले टहल हम दोनों जनी कई जा रही थी सवेरे से, हम तो खाई को बहनी बनाई थी ना ही बनावो थी। अब हम लोग समझ लो बहिरे कमो निपटाई थे, ओकर बाद घर हम बाग के जाई थे जल्दी बनी चाच, ये कब चटपटो एक कप चाहो ना ही बनावत थी,
4: बड़ी ना ही बनावत थी। हम जानी तो नहीं का जब हमें जरूरत है तो तू पड़ी हो।
1: हाँ।
4: टांग पहला
1: तब तू सो
4: तो सो
1: बना खुद भगवान हमें वही लाए कि हाँ बनाए बनाए पी ले थे जाए थे उन्हों का आगे पटक आई थे। लो तुम
4: पी लो और का
1: लो पियो तू, ऐसे खाई को बनाई डाली थे बाहर लोग कमा करी थे खाई को बनाई थे। हम तुम जन निकल के टहरी हुआई
4: टहरी हुआई थे सब कम हो कही ली
1: बाजारों हुआ
4: शरीर ये पिरा थे कबो। हाँ, टंगवा
1: कबो कमरवा पिराई कबो। हाँ। टंगी है पिराई कबो मुड़वा पिराई, जाओ तू पिरवाओ अपन हम दुजे नहीं बनाए
4: ज्यादा लेटे लेटे यहाँ होत है सुस्ती आ जा शरीर।
1: हाँ। हम दुनी बजरवो कही ले।
4: हाँ। कहाँ कहाँ घूमी आई थे
5: तब का वो देखो भंडारा में पहुँच जाये थे दोनों जनी
4: और गौवा भर का देखे रही थे कौनो के दुख परेशानी में खड़े रही थे शामिल रही थे
5: और का बोलो हाँ। को हम लोग बैठ के बुराई नहीं करी
4: बुराई नहीं करी थे कोई के हाँ। काम ही नहीं करी थे अपने काम से छुट्टी नहीं है कि कोनो बुराई करी
5: और का
2: आप लोग के दोस्ती ऐसे रही कि पतो यो के जैसन मिल गई
5: दोनों अरे का कही करमो है बहनी ऐसी रहे करमो है जब देखो सखी बने
4: ठीक है
5: तो ठीक है
3: हम चीजे एक के मेरे करिन तो पतो यो एक के
5: हां तो अभी जान लो कि हम लोग अपने घर के महारिन होई और धोबइन होई
4: कहारिन
5: जमादारिन होई कहारिन होई भंडारिन होई
4: सब होई
5: सब होई
2: सर्व गुण संपन्न हुआ
5: हाँ।
4: अब यहाँ कह लो आखिरी में मलकिन होई
5: हाँ मलकिन होई का जनी कौन चीज मलकिन होई मलकिन एकदम आखिरी बाव
4: अब कहाँ जाए जाते हमें मलकिन कह के तो बुलावत है
5: हाँ।
4: कहाँ हूँ मलकिन
5: मलकिन हाँ कहाँ ऐसे हमने गाँव में जब हम रही थे अपने तब हुआ हम जब जाये थे अपने ससुरलिया तब वो हुआ कहे मलकिन आई कि नहीं आई हम कह रहे काहे के मलकिन दादा झाड़ू बहारी करे खड़ते आए है अब्बा लगाई थे मलकिन का है खड़ते नाव के हमरे सबे खाली मलकिन दे दिला
4: मलकिन
5: कि मलकिन के तो बस खुश हो ही जई है और दो दो कमो करे लगी
4: चलियो मलकिन मलकिन आज ही बनाई डारो मलकिन आज भी बना तो बताओ मलकिन कही के सब काम कराए
2: लेते थे
4: पूरा कही थे बहनी
5: हां सब पूरा यहां होते है मलकिन ने कह के आदमी अपन काम कराए लेते बहनी और हम सब है देहात मने सिर साथ
3: जाते मलकिन कही के थे
5: हम लोग खुश हो जाए थे
4: तो देखो भैया सब मेरे शिव जी का परचेक रहा था
5: हाँ
4: मलमा जब चला गया है
5: एक ठो शंकर जी के गाय दे तू शंकर जी के मलमा सवा चला थे भाई
4: हाँ ये तो गावे चाहिए और का
5: हाँ एक ठो गौराई कही
4: दे तो चलो सुनाई दे थे ना
5: सुनाई दो हाँ
4: तो सबे पुरवाई लियो ढंग से
5: हाँ हाँ पुरवाई ले भाई

0: सब नई दुल्हन के लिए है जो नई नई ब्याह ब्याह के आए हैं इस समय। हाँ,
1: हाँ,
0: हाँ, तो उन्हीं हाँ, के लिए ये गाना है।
1: हाँ
0: कि भाई पूजा करने काबिल नहीं हूँ, इतना सोने गहना से लदी है।
1: बड़ा तो नहीं कहाँ से क्यों चटपटाओ?
0: अरे मंदिरिया में होत रहा हो।
1: हाँ
0: तो आवाज पड़ा करे कनु हम।
1: अच्छा
0: तो एक दो लाइन सीख लिया।
1: नहीं तो बड़ा नीक बहुत नीक गईबो की हुए हो।
2: खूब नवा नवा गाना सीख आवत हूँ।
0: तब का करिए, जब अच्छा लागत है तो सीख ली थे।
2: हाँ तो ठीक करा तू, हमो सिखा दी हो।
0: तब कहे ना सीखी,
2: अब आज गाय ली है ने, तब काल हमें सिखा दी हो।
0: बिल्कुल सिखाए। अब देखो भंडारा हो जाए दिन।
1: हाँ,
0: है तो तैयार रखियो तू ही लोग
3: गावा जाये।
0: हाँ तो भंडारा सब गाना आना भी नीक लगी। हाँ, जब पूरी उड़ी हम लोग बेला जाये तो हनुमान जी का गाना
3: जल्दी जल्दी।
0: हाँ तो वह में ध्यान रही तो ये मतलब गर्मी अर्मी ना ही महसूस हुई।
1: अच्छा
0: है ना।
1: हाँ, हाँ।
0: और का जब गनवा में भगवान जी में ध्यान लगी रही, हनुमान जी में ध्यान लगा रही तो कौनो गर्मी अर्मी ना लगी।
2: हाँ ना लगी तो बहनी जानी नहीं पड़त है,
0: जान नहीं पड़त है।
2: उनका ही परताप रहा थे, परताप।
0: और का
2: तो परताप से जान नहीं पड़त है कि हाँ का होता है। तो बहनी तू दूजे नहीं आई जायो।
3: हम लोग आई चाची,
2: मगर
0: शक्ति बहाय दे है हनुमान जी की शक्ति से हम लोग कर।
2: हाँ शक्तियाँ तो वही दे है पूरा। हाँ। कहा तू बहनी तब मंगरवा का हम लोग आवा जाये।
0: हाँ आ जाए और सब तैयारी हम रखा।
2: पतरको बुलाई ली हो? पतरको बुलाई ली।
0: हाँ पतरक देखो तबीयत ठीक रहा है तो बुलायो बहनी। और कौनो
3: चाची उनका तबीयत ना ठीक रही, अगर वो जनी है कि हम दो जनी आई थे तो वो आई है।
0: भंडारा नीक लागत है वो सब है। चरफर
3: बहुत जरा थी चाची।
2: हाँ ही बहनी जरा तुम्हारी है
3: आप लोगों से ना, हम लोगों
4: से जरा थी
2: तो तुहार जुन के तो सखी हो तब का है जरा
3: थी।
4: यही तो जरा थी सखी हुए तब भाई।
2: अरे तो काव
0: ये सब बचपने की बातें हो यार।
2: सखी लोग नहीं जरा थी,
0: बहुत चरफर बिटेवा हो।
2: बिटेवा ठीक ही कमों बड़ी चरफर ही कुल कमों करत थी, बात नहीं है। हमरो घर आवत थी एक दिन आए रहा तो आधा बोरिया आम लेके छीले थे कुल छील जा रही बैठ कर।
0: आधा बोरिया आम का है छिलवाए रहो?
2: खटाई डाय ना खटाई
0: सुखवाए हो?
2: सुखवाए हन। हाँ खटाईवा
0: तो सूख जाए तो नहीं हमको दे दियो। हाँ
2: दे दे दे।
0: अबे हम नहीं सुखवावा है।
2: अच्छा तो हम वही छीला थन बैठी तब कहीं काव कर रहती हूँ काकी वही बढ़िया जात रही।
0: अब हम चाहे तो नहीं जौन जाली वाली ठीक से पड़ जाए।
2: हाँ तब हम असल में ना उका सुखवाए ने पीस के वो बनावे अमचूरो।
0: अच्छा जौन बतावा रहा है।
2: हाँ
0: ठीक
2: तो वहाँ थोड़ा खटैया बना के रख ले।
0: हाँ, तो
2: थोड़े वही अमचूरवा बन जाये
0: बढ़िया रही।
2: हाँ
0: पूरे साल चला
2: सलावा भर चला कर रहे थे और कुछ बनाओ ना तो मन डारे खोए ये शुद्ध रहा थे बहनी।
0: और का
2: तो एक बनाए के डब्बा भर के धरे तो तुम ही तो सिखाए रहे।
0: कद्दूआ सब्जी बनी जहिया वही दिन दियो।
2: हाँ
0: बहुत भीख लागी
2: बहुत मजा आ जाते बहनी जब बनाते
0: तो गुड़ा ना दे तनिक।
2: हाँ तू गुड़ा ना तो हमें ना ही नीक लागत है मीठा
0: ना तनिक गुड़ा ना दे ना।
2: हाँ
0: स्वाद और बढ़िया बन जाता है।
2: अच्छा आई बहनी झोरवा कहाँ से लायो? बड़ा नीक लागत है तुम्हारा झोरवा।
0: झोरवा हमारा बहुत नीक है ना।
2: कहाँ से लायो?
0: अब दिल्ली गए रहा।
2: ये दिल्ली से लायो हो?
0: ये दिल्ली का है।
2: अब पनिया इमन धाई ले थू?
0: हाँ ठंडा रहा थी पनिया इमा।
2: अच्छा ये बने पानी के झोरा हुए
0: पानी के तो? अब यहाँ ही कही लो पानी वाला झोरा
2: पानी का झोरा। हाँ पूरा ही कहूँ पूरा।
0: हाँ ये के अंदर पनिया जो है।
2: हाँ
0: ठीक रहा था
2: ये तो काम
0: हैंड पंपुआ से निकाल लो जैसे रही।
2: तो आप सी जाए तो हमारे खटिन
0: लाई आए लाई आए। अब मैं तो जाए नहीं देखो देवर आए वाले हैं तो हम कहीं दे
2: बता दू की भैया दू छो
0: लाइफ तो दे दे
2: पैसा वजन हो तो हम दे भाई।
0: अरे पैसा कौन बात हो
4: सखी सखी वो तब वो पैसा दे
0: ये पैसा पीछे बहुत लावत है हमें बड़ा नीक लागत है इनकी बतिया।
2: इसके बारे कहा थी बड़ा नीक
0: लागत नीक लागत थी जब ये पैसा देख बात कहा थी।
2: अरे तो अब सखी है तो भैया आप जानी थे सबके खर्चवा है तो मंगाए दी हो तो हमें पहले तू।
0: हाँ तो पैसा वैसा बात ना किया करो।
2: अरे अच्छा ना कर भाई
0: गरीब ना ही हन
2: ना ही बहनी
0: पैसा मांगा
2: बहुत अमीर हो तोरे। हाँ। बहुत है भगवान इसे तुम्हें दिहा रहा है काहे गरीब
0: और का भगवान दिए तब तो दे थे
2: नहीं तो अब
0: जितना देखो जितना दे हो जितना ले हो
2: उतने बाढ़ी
0: बाढ़ी
2: नहीं गरीब कहा तो हमें गाना हमारे याद आवे तुरंत है
0: तो गाय दो
2: किसी गरीब।

0: एक जने हमारे आवत है
1: ममऊ का एक गरीब वाला गाना आवत है
0: गाय तो दुलैनिया ऐसे हमरन घस गाय दो गाय दो गाय दो चटपटो गाय दो
1: नहीं
0: गाय दो
1: नीक नहीं लागत
0: लेउ नीक कई नहीं हम तो हमरा मना माउ तो हम तुरंत गाय दे थे हम ही नहीं सोची थे गाय दो
2: गाय दियो काकी
1: नहीं नहीं
2: अरे गाय दियो
0: बेकार है गनवा बेकार है
1: भाई गनवा बहुत नीक फिल्म का गाना
0: फिल्म गाय हो ना ही हमरे यहाँ एक जने आवत रहे भाई गावत रहे फिल्म के ना कोई हमरे यहाँ जने आवत रहे भाई गावत रहे तो बहनी अब हमारे लोग टीम होएगा चला जाए घर का
1: हाँ तो चलो भाई टीम होएगा तो चला जाए भाई अब तो हम तो कोई रोक ना ही सकी थे
0: हाँ
1: हैं
2: टीम यहाँ यहाँ भाई काकी
0: तोरे सुके बहनी जो है छुट्टी होएगा है आज
2: हाँ
1: अब तू लोग जब हमारे चौपाल में आई जाती तो हमें बड़ा नीक लगा था बहनी
0: अब आज पकड़ ली हैं दोनों जन का
1: आवा करो अरे धुपिया उपिया देखो हम तो ठंडा लगाए घर में
2: हाँ,
1: तो चलिए आवा करो यहाँ बैठा करो
2: हम उन लोग का बहुत अच्छा लागत है
1: हाँ तो
2: एक से एक चीज सीखे का मिलत है
1: तो निकस आवा करो बहनी
2: अब चलिए आवा करो
1: हाँ बैठा करो आई के और का
0: तो चलो अपने घर
1: देखो कौनो कहम ना आयो
2: ठीक है
1: दुलारी और चटपटी दोनों बहुत जोन है परपंच करती ये सब बहुत फैला है गांव में तू भी कौन कोई के सुने हमरे मुंह से बुरैया
2: ना चाची काकी ना सुने
1: बताओ हम लोग तो पूरे बात कही थे अब वह हम जोन है बुरे बने हैं
0: हाँ सही हम लोग पूरे बतवा अपने दुखा बतवाई थे एक दूसरे से वह हम होता की ये दूजे गांव भर के पंचायत
1: जोर के
2: अरे चाची कहे वाले तो बहुत कुछ कही देते हैं
0: गांव भरे परपंच करी था
1: हम लोग कब्बो कोई की बुराई नहीं करा
0: कब्बो नहीं करी था जानू नहीं
1: का हुईगा
0: जिन बगलियां पाड़े रहा था गवा
1: हाँ हाँ तो का हुआ
0: अरे पाड़े बिटीवा भाग ही गए हो
1: ये मुरी या
2: बताओ थी करा थी फिर भी कहा
0: नहीं बतिया बतिया
1: बतिया हो मतलब
0: बतिया बताई और जानी नीक है चटपटाओ नीक करिस भाग गई ओके भाईवा का बहुत मारत रहा और बपवा पी के आवत रहा वाह मारत रहा और भागीस ही एक ठो बड़ा नीक के एक ठो कोनो लड़का चक्कर रहा लड़का रा रेलवे में काम करत है
1: तब तो ठीक है कहीस
0: और कहीस कि तू हमरे से भागते हो तू यहाँ मार डरी है और भाग गवा लेके बहनी और ब्याह कहलीस मजम रहा थी वही
1: चलो ठीक है
0: मारा
1: हाँ एक बार जो है हम तो यहाँ कहे की बिटियन का एक बार अपने महतारी बाप का बताए जरूर दो
0: हाँ महतारिया जानत रही हो कहीं
1: अच्छा
0: महतारिया बताए रही महतारिया खुद ही कही कि तू भागी जा
1: भागी जा
0: नहीं तुम्हें मार डाली है दोनों मिलकर
1: ठीक है तब तो फिर अब ना ही पुलिस दरोगा हुई है
0: हाँ
1: पुलिस दरोगा जो हुई जात है
0: हाँ
1: वैसे इज्जत चली जाती
0: इज्जत चली जाती ये बात तो पूरे कर
1: तो वहाँ कहा कि बताए दो महतारी बाप हाँ। कि हम जाए थे फलाने संगे
0: देवी तू ना भागे हो तू कहो ना भागे तू सब ना कहूँ भागे लागे हो बहनी
2: यहाँ ना करब चाची
0: नहीं तो फिर हम कही की एक बिटिवा रही जगह
2: कैसे रह काकी हम लोग कोई बनाई खवा ना पाए कुछ होते ना काकी से आई तो सीख ली तो बता दिए थी थोड़ा था
0: तो अब तो सीख ही गयु बहनी अब आज देखो का सीखियो सिकंजी बनावे सीखियो आमे के सत्तू के पानी बनावे सीखियो गलका बनावे सीखियो आम के पना सीखियो और कटहरे बरिया सीखियो
1: ऐसे आज की
2: और तीन चार टू गाना सीखियो
0: गाना सीखियो तो कहते ना नीक नीक चीज सीखियो ऐसे अगली बाजी फिर आईबो तब फिर कुछ चटपटो नवा लेके आए हैं ये चटपटो तो अब की तू बताई हो आमे का चार और कटहरे का चार
1: अरे बता दे मैं कौन हाँ, बड़ी बात है
0: कैसे बनावा जाता
1: है नहीं नहीं अब हम बता देते हैं लेकिन अब यही बहाने आ जाइए
0: हाँ समझे हो।

0: सफर से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं, मोहब्बत के नाम ये प्यारा सा गीत, और मिलेंगे संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में, क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश के 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। यहाँ से हमने शुरुआत की, हमारे साथ भाई मनीष शर्मा जी उपस्थित हैं, नीना जी दिखाई पड़ रही हैं हमको, नव्या जी हैं गोंडा से, और क्या जी हाँ वाओ नाइस लाइन, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? जी हाँ नव्या जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो। मनीष शर्मा जी ने तो भाई दिल और स्टार्स की एकदम लाइन से लगा दी है, इतने सारे दिल, क्या बात है। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो शायद ये हम दिल को कहाँ तक पहुँचाते।

जी हाँ, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। और दिल बिछा करके हमने आपकी प्रतीक्षा भी की। क्या बात है भाई, श्री अनिल शास्त्री जी हैं, गुड इवनिंग मनु जी, शुभ संध्या आपको भी। और श्रीमती सरिता जी हैं, नमस्कार सर जी, शुभ संध्या, आपने बहुत बहुत अच्छी गीत सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है, पहले तो हम ये जानेंगे। मतलब दादा हमारे थोड़े से दुखी लगे उस दिन, जिस दिन आपका स्वास्थ्य खराब था, वो स्वाभाविक है। और अब आप बताइए कि अब आप कैसी हैं। चलते हैं साहब, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कोई उलझन ही रही होगी जो वो भूल गया, कोई उलझन ही रही होगी जो वो भूल गया, मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी लिखना। आते जाते हुए मौसम से अलग रह के ज़रा, आते जाते हुए मौसम से अलग रह के ज़रा, अब के खत में तो कोई बात पुरानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क के यशकों को दरिया की रवानी लिखना। इस इशारे को वो समझा, इस इशारे को वो समझा तो मगर मुद्दतों बाद, इस इशारे को वो समझा तो मगर मुद्दतों बाद, अपने हर खत में उसे रात की रानी लिखना। जी हाँ, कोई इंसान किसी इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये या तो वो जानता है और या तो फिर परमपिता परमेश्वर ही जानता है। और जो मोहब्बत होती है वो तो साहब अमर होती है, शाश्वत सत्य है वो। और प्रशांत सोनी जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग मनु सर, आपको भी शुभ संध्या। और थोड़ा थोड़ा ठीक है, चलिए ईश्वर आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और रेडियो गणेशलीट 9.6 एफएम परिवार की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल तक एकदम ठीक हो जाएंगी। दादा आपके साथ हैं तो समझिए आधी परेशानियां तो आपकी, अगर उनको आप कायदे से गाते हुए सुन लें तो दूर हो जाए। और हारमोनियम लेकर अगर वो बैठ जाएं तो मुझे लगता है किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संगीत अपने आप में बहुत बड़ी औषधि होती है। जी हाँ, आइए आपको फिर संगीत की ओर ले चलते हैं और बताते हैं कि प्यार अमर होता है। कैसे होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

जी प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। और वास्तव में हमको भी लगता है कभी कभी कि इंसान मोहब्बत के साथ समझौता नहीं कर सकता है। प्यार को बढ़ते हुए देखना या प्यार को टुकड़ों में पाना शायद सबसे बड़ी बदनसीबी में से एक बदनसीबी है। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या हुए, वो सुबह आते आते रह गई कहां, जो काफिले थे आने वाले क्या हुए। मैं उसकी राह देखता हूं रात भर, मैं उसकी राह देखता हूं रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए, वो दिल में खुबने वाली आंखें क्या हुई, वो होंठ मुस्कुराने वाले क्या हुए। इमारतें तो जल के राख हुईं, इमारतें तो जल के राख हुईं, इमारतें बनाने वाले क्या हुए, अकेले घर से पूछती है बेकसी, तेरा दिया जलाने वाले क्या हुए। ये आप हम तो बोझ हैं जमीन का, ये आप हम तो बोझ हैं जमीन का, जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। जी हाँ, उनके हाथों में हमको लगता है भाई, जब कहा जाता है कि ये लो चूड़िया पहन लो, अगर नहीं कर सकते। अच्छा, कहीं कहीं ये जो चूड़िया होती हैं वो श्रृंगार का प्रतीक भी होती हैं, और सावन के महीने में तो अगर ये चूड़ी आ जाए तो लोग कहते हैं हरी हरी चूड़ी। चलिए ज्येष्ठ के महीने में सावन का मजा लेते हैं और आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिल्म आज का अर्जुन। कलाइयाँ गोरी हैं और चूड़ियाँ हरी हैं।

जी हाँ, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की, क्या बात है भाई। और अब तो वो वक्त आ गया जिस वक्त की प्रतीक्षा आप सभी को होती है। जी हाँ, हमारे साथ ममता कसौधन जी उपस्थित हैं। गुड इवनिंग। और भाई कैसे हैं आप? आशु मिश्रा जी प्रणाम करते हैं आपको। नियति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भाई नमस्कार आपको। क्या बात है भाई। के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से हमको सुनते हैं, बहुत ही प्यारे श्रोता, धन्यवाद भाई। गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी भाई। और सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। और भाई के गुप्ता जी ने बहुत सारे दिल इमोजीज, क्या बात है, दिलदार सांग, जानदार सांग और एक से एक बरकस जी गीत सुनाने हमने आपको। और अब गीत तो बजेंगे लेकिन वो बजेंगे जो आप चाहेंगे। तो अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब हम इंतजार करेंगे आपके फोन का। और अब जो गीत बजेंगे वो वही बजेंगे जो फिलहाल आप चाहेंगे। तो इस गीत के बाद मैं मेरे पास विष्णु प्रमिला जी का भी मैसेज आ चुका है, प्यार हमको भी प्यार तुमको भी है, चलते चलते क्या बात है भाई बहुत। और प्यारे आर्य मनुष्य जी प्रणाम। जी हाँ प्रणाम आपको भी। कह गुप्ता जी कैसे हैं आप? और एसआर के फैन क्लब से भाई जी, ये काली काली आंखें सांग जी बिल्कुल। अब चलते हैं आपकी फरमाइश की ओर, एक गीत के बाद आपकी फरमाइश करते हैं। प्रारंभ सुनते रहिए और रेडियो गणस्लिट 9.6 FM यह गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये पैसा गीत आपके लिए, उस गीत के बाद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ।

ऐसे गीतों का कार्यक्रम करते हैं। प्रारंभ और पहली फरमाइश है निशा जी की, जो हमको सुनती हैं पटेल नगर से, और उन्होंने गीत फरमाइश की है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। चलिए भाई, अब आपको सुनाते हैं शीशे का था दिल मेरा और दिल कैसे टूट गया। फिलहाल ये प्यार सा नगमा।

जी हाँ, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। ये बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया निशा जी की फरमाइश पे, जो सुनती हैं। पटेल नगर से अब चलते हैं, आशु मिश्रा जी की फरमाइश है भाई, बहुत ही प्यारी फरमाइश है लखनऊ से। हाँ, मैं तेरे दर पे आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा, बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा गीत ये आशु मिश्रा जी की फरमाइश, जो हमको सुनती हैं लखनऊ से।

जी हाँ, ये जिद होती है एक भक्त की भगवान से, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊँगा। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा नगमा ये हमने इन्जॉय किया अपनी बहन जी जी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं भाई, हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता हैं अमित कुमार जी, और उन्होंने कहा है सारा सारा दिन तुम काम करोगे। ठीक है, तो भाई सारा दिन काम नहीं करेंगे, फिलहाल फरमाइश शानदार है, देखते हैं अमित कुमार जी ने क्या भेजा है।

जी हाँ भाई, अमित कुमार जी की चिंता तो जायज है कि जब सारा सारा दिन काम करेंगे तो भाई प्यार कब करेंगे। बहरहाल वक्त निकाल लीजिएगा अमित जी, बहुत ही प्यारी फरमाइश आपकी। और अब चलते हैं भाई, हमारी अगली फरमाइश है नियति जी की, कब आएगा मेरे बंजारे। जी हाँ, तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत मोहिनी तिवारी जी की, सॉरी नियति जी की फरमाइश पर, कब आएगा मेरे बंजारे। और उसके पश्चात चलेंगे मोहिनी तिवारी जी की फरमाइश, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा।

जी हाँ, वास्तव में जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया। श्री के गुप्ता जी की फरमाइश पर अब चलते हैं। मोहिनी जी की फरमाइश है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, और जिसके पश्चात राकेश वर्मा जी की फरमाइश है, आदमी खिलौना है।

जी हाँ, अब बढ़ते हैं भाई हम अपने बहुत ही प्यारे श्रोता इम्तियाज जी की फरमाइश है मेरा वाला डांस। जी हाँ, फिलहाल आपने कई लोग का डांस देखा होगा, लेकिन अब देखते हैं इम्तियाज जी का डांस।

जी हाँ, मेरा वाला डांस के बाद अब चलते हैं आपको रेशमी जुल्फों की तरफ। राजू सलमानी जी की बहुत ही प्यारी फरमाइश है, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें ही देख

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, इसके पश्चात भाई चलते हैं श्री राजेश सिंह जी मालवीय नगर की तरफ। बाजी किसने प्यार की जीती है यार। जी हाँ, चलते हैं आपको, बाजी किसने प्यार की जीती है यार।

प्यार की बाजी जीती या हार दी, वास्तव में बहुत ही प्यारा सा गीत ये हमने सुना श्री राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। तो चलते हैं भाई, श्रीमती शशि जी की फरमाइश है, हसीन वादियाँ फिजाओं से कह दो हवाओं से। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत है, अब हम सुनने जा रहे हैं श्रीमती शशि सिंह जी की फरमाइश पर। जी हाँ, सुनते रहिए और रेडियो गाना स्लेट 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है और गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

0: लहरा के वो चले, बलखा के वो चले।
1: जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा गीत श्रीमती सुशील सिंह जी की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया, और आपको ले चलते हैं भाई अब अगले गीत की तरफ, जिन फरमाइश है श्रीराम हेयर कटिंग सैलून से आवास विकास कॉलोनी में आनंद जी हैं, और उनकी फरमाइश है जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत ये श्रीराम हेयर कटिंग सैलून आवास विकास कॉलोनी से आनंद जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत, ये आनंद जी की फरमाइश पर हमने सुना। और अब चलते हैं भाई हमारी नीना जी की तरफ। और गीत के बोल बहुत शानदार हैं, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। जी हाँ, शायद आप में से कई लोग ये गीत पहली बार सुन रहे होंगे, तो चलिए ज़रा सुनते हैं कि कौन सी बात सुनना बहुत ज़रूरी है।

जहाँ ये बहुत ही चुलबुला सा गीत हमने एंजॉय किया। नीना जी की फरमाइश पर अब चलते हैं भाई, हमारे दर्द कुमार और सुरेश कुमार की तरफ। बहुत ही प्यारा गीत चुना, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत, और लता जी और रफ़ी इन दोनों की आवाज़ का एक अनूठा संगम इस गीत में सुनने को मिलेगा। जी हाँ, फिलहाल सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर ये प्यारा गीत आप सभी के लिए।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
11: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप। इस्तकबाल है आप सभी का आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। आप सुन रहे हैं और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और आज का दिन तो होने वाला है बेहद खास, क्योंकि आज IPL का फाइनल भी है और बहुत सारे लोग तो वहां पर भी भाई देख रहे होंगे कि देखते हैं क्या होता है। 155 रन, और जहां तक मुझको याद आता है कि ये वही स्टेडियम था जिस स्टेडियम पर भारत लगातार 10 मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया से 2023 में आखिरी मुकाबला हार गया। तो ये जो स्टेडियम है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से हमको एक कचोटता है कि मतलब एक 10 मैच हम जीत चुके थे और एक मैच नहीं जीत पाए, जिसका मलाल अभी तक है। लेकिन नज़र झुकाया है, सिर तो नहीं झुकाया है, और आज तो भाई दोनों इंडियन हैं। आज तो शुभमन गिल भी हमारे भारतीय हैं और भी, और इधर रजत पाटीदार जो कप्तान है RCB के, वो भी भारतीय हैं। तो आज दो भारतीयों की लड़ाई है और देखना है कि इसमें भाई राक्षस जीतता है या शाक्षस जीतता है, यानी रजत पाटीदार और शुभमन गिल के बीच की लड़ाई। अब देखिए यहाँ पर जब हम आज बात करेंगे तो आज बात करेंगे हार और जीत की। आज नो टोबैको डे भी है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया जाता है 31 मई को, और आज बहुत से लोग कसम खाए होंगे कि हाँ आज के बाद फिर हम कभी तंबाकू को हाथ नहीं लगाएंगे। तो आज वो विशेष दिन भी है, रविवार भी है, IPL का फाइनल भी है, हम हैं आप हैं और है ये खूबसूरत सी महफिल। तो कुछ जो हमारे श्रोता हैं उनका ध्यान कहीं ना कहीं उनकी टीवी पर भी होगा, और कुछ सारे श्रोता सुन रहे होंगे केवल रेडियो गणेशली, जिनको मैच की दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। पियरेडी काबर्टिन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम कहे जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आधुनिक ओलंपिक गेम का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा द एसेंशियल थिंग इन द लाइफ इज नॉट कॉन्क्वायरिंग बट फाइटिंग वेल। जिंदगी में महत्वपूर्ण चीज जीतना नहीं होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है ठीक ढंग से लड़ना। हम जीते या हारे यह और बात है, हमने लड़ाई कितनी अच्छे ढंग से लड़ी ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो ये रात का वक्त है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो ये चाहने वालों की रात है, चाहने वालों की रात में आप सभी का इस्तकबाल है। और चलिए आपको ले चलते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको हम इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन लगता है जैसे उस इंसान में कोई फरिश्ता बसता हो। जी हाँ, कुछ ऐसी ही थीम लेकर हम बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं चंदन दास की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल, और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल दो धुरंधर मैदान पर उतरने वाले हैं और जब ये देखना बनता है कि यहाँ से कौन रनर अप होता है और कौन विजेता होता है। बहुत सारे लोग प्रशंसक दोनों टीम के होंगे अलग अलग, तो चलिए देखते हैं किसकी दुआओं में असर ज़्यादा है, किसका
खेल अच्छा है और जो निश्चित रूप से बेहतरीन खेलेगा वो जीतेगा। अब देखते हैं आज बेहतर और बेहतरीन के बीच में कौन जीतता है। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हाँ, ये और बात के इंसान बन के आया है, मगर वो शख्स जमी पर खुदा का साया है। क्या बात है। और वास्तव में अगर हम पढ़े भगवान को कि भगवान क्या है, तो कहा जाता है छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छित मतलब पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, वायु हवा। छित जल पावक गगन मतलब आसमान, समीरा मतलब वायु। इन्हीं पांच तत्वों से हम बने, अंत में इन्हीं पांच तत्वों में विलीन भी हो जाना है। और अगर भगवान को देखें तो भा से होता है भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। यानी जिन पांच तत्वों से हम बने, उन्हीं पांच तत्वों से वो बने। इसीलिए कभी कभी इंसान को भगवान की पदवी दी जाती है। जैसे क्रिकेट की दुनिया में हम सचिन को, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। हम जब गायकी के क्षेत्र में आते हैं तो पाते हैं कि रफ़ी साहब का मंदिर बना हुआ है, तो उनको गायकी का भगवान मान लिया जाता है। हमारी लता जी हैं जिनको हम माँ शारदे का, माता सरस्वती का साक्षात स्वरूप मान लेते हैं। तो ये है साहब कि कुछ लोग अपनी दुनिया में ऐसे होते हैं जो लगता ही नहीं है कि एक साधारण मनुष्य से थोड़ा सा ऊपर हटकर, और तब वो व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व तो बन जाते हैं। इंग्लैंड जिसने क्रिकेट को जन्म दिया, वहाँ पर सचिन रमेश तेंदुलकर की मूर्ति लगा होना, उनका स्टैचू लगा होना, इस बात का प्रमाण है कि अगर आप बेहतरीन काम करते हैं तो दुनिया आपको हमेशा याद करती है। और हमारे साथ जुड़े हैं भाई मनीष शर्मा जी। भाई क्या बात है, आज तो बहुत टेंशन में होंगे। रवि जी आपका गीत हमने भी देखा नहीं, अभी देखते हैं। और इसके बाद अगर कोई पुराना गीत हो, गज़ल हो, तो आप भेज दीजिए, जरूर प्ले कर देंगे हम। बिल्कुल, यह आपसे वादा रहा, क्योंकि जब हम बैठने के लिए बोलते हैं कि ये गीत, तो इस समय इस कुर्सी पर कोई और बैठा होता है और आपका चैट, आपकी चैटिंग हम नहीं पढ़ रहे होते हैं, खाली हमको गीत बताना होता है। तो इसलिए अगर रविवार को गीत आपके नाम से में हम आपके संदेश न पढ़ पाएँ, तो आप ये समझ जाइएगा कि हम दूसरी वाली सीट पर हैं, इसलिए आपका संदेश नहीं पढ़ा गया। और हमने कहा भी है कि भाई अगर आप फ़ोन कर सकते हैं तो 6391 3464 29। आप में से किसी को लगे कि हमारा गीत नहीं प्ले हुआ है, तो प्लीज़ आप में इस दूरभाष क्रमांक पर फ़ोन कर दें और हम आपका गीत ज़रूर बजाएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी को भी दुखी या किसी को भी उदास न करें। आपने अगर हमें समय दिया है, इस लायक समझा है, तो हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करें। जी हाँ, मेरे साथ नव्या जी भी हैं गोंडा से। सर जी प्रणाम जी आपको भी। और जिंदगी का राज कोई समझ न पाया, हर किसी ने बस से जीने का ढोंग निभाया, कभी हंसी कभी आंसू का सफ़र है ये, जो डूबा इसमें वही गहराई को पाया। क्या बात है। जिन खोया तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जी हाँ, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मल्लिका नेहा जी मेरे साथ हैं। नमस्कार, आपको आदाब करते हैं। और न मैं इसके काबिल हूँ कि ना हक है मेरा, न ये ज़मीन है मेरी, ना ये फलक है मेरा, किस बात का गुरूर करता है आदमी, कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी कल तक मेरा। क्या बात है भाई रवि जी, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। हर घड़ी घड़ी घड़ी कट रही है ज़िंदगी, अपने ही दायरे में सिमट रही है ज़िंदगी, हज़ार कोशिशों का भी असर नहीं हुआ है, हर एक लम्हे में बस कट रही है ज़िंदगी। जी हाँ, नव्या जी ने कहा नाइस लाइन, और वाह वाह। जी हाँ, अब चलते हैं भाई, देखते हैं रवि जी का कौन सा गीत है। अगर ये कोई पुराना गीत है या गज़ल है तो इसे ज़रूर प्ले करते हैं रवि जी, और अगर ये नहीं है तो आप दूसरा कुछ भेज दीजिए, हम उसे प्ले कर देंगे। अब ये क्षमा कीजिएगा हमको, लेकिन ये जो आपने हमको लिंक भेजी है वो बाहर एक गज़ल के तर्ज पर नहीं है। आप
कोई ऐसा गीत भेजिए जो हम बहादे गजल में बजा सकें, आपसे अनुरोध है। और आइए अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी आवाज़ की तरफ। जी जी, मैंने बताया कि रफ़ी जी का मंदिर बना हुआ है गुजरात में, और अब एक प्यारी सी गज़ल उनकी सुनते हैं, और उसके पश्चात रवि जी आप कोई प्यारी सी गज़ल भेजिए और आपकी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप

जी हाँ, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, क्या बात है। नव्या जी ने गुड नाइट, अरे अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं नहीं भाई, हाँ गुड नाइट कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमको है, और ये हमने आपसे अनुमति मांग कर लिया है। नेहा जी आपका शुक्रिया हम कबूल करते हैं, और सविता शास्त्री जी जी प्रणाम आपको, जी जल्दी स्वस्थ हो आप। चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। मैं बात कर रहा था हार और जीत की। कभी कभी इंसान हार कर भी खुश होता है, और कभी कभी जीतने के बाद भी वो खुशी नहीं मिलती। हारने में कौन खुश है? आप सोचते होंगे कि ये हारने में किसको खुशी मिलती है। जी खुशी मिलती है, किसको?

हारने में खुशी मिलती है पिता को, वो भी अपने बच्चों से। एक नज्म सुनाता हूं आपको कि मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पर खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की नई तस्वीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, बिछड़ने का बहाना चाहता हूँ। अब एक शब्द इसमें आएगा पोशीदा, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। बिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, यानी मेरी जीत इसी में छुपी है, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। जी हाँ, पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे निकले। वायुनंदन द्विवेदी जी हैं, प्रणाम करते हैं आपको, चरण स्पर्श करते हैं। जी मिलती है खुशी उससे हार कर।

से आप जीतना चाहते हैं जी, और हम तो ये मानते हैं कि दूसरों की जीत में अपनी खुशी तलाशना ये बहुत बड़ी बात है। कभी चराग कभी तीरगी से हार गए, तीरगी मतलब अंधकार, कभी चराग कभी तीरगी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए, अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। कभी कभी आप जिसको जीत लेते हैं उसी से हार जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, नेहज ने कहा कि एक पिता है जो आपको कामयाब देखना चाहता है, वालिद वालिदैन। और चले भाई, रवि जी ने गज़ल भेज दी है और इनको नाराज़ न करते हुए देखते हैं भाई रवि जी ने कौन सी प्यारी सी गज़ल भेजी है। हालांकि पसंद आपकी अच्छी होगी ये मुझको उम्मीद है, और आपकी पसंद को पूरा करते हैं। क्या बताया यार, हो सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बशीर बद्र की लिखी हुई ये प्यारी सी गज़ल है। वाह भाई सल्यूट है आपको रवि जी, क्या गज़ल चुनी। अभी कुछ दिनों पहले ही बशीर बद्र साहब का इंतकाल हुआ, उन पर हमने कार्यक्रम भी किया था, और ये उनकी प्यारी सी गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में है, और ये आपका लिंक है। तो भाई वाह रवि जी, आपको दिल से सल्यूट है, आपको नमस्कार है, प्रणाम है, और ये गज़ल आपको हम सुनाते हैं तत्काल।

जी हाँ, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। और वास्तव में कहा भी जाता है कि परखना मत, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। यही साबित शब्द है जगन्नाथ दास रत्नाकर को मैं पढ़ रहा था, हिंदी साहित्य में उद्धव शतक। तो उन्होंने लिखा कि जब उद्धव आए मनाने गोपिकाओं को, तो जगन्नाथ जी ने लिखा, उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि अपने आप को छोड़ करके हम ईश्वर की तरफ चले जाएं, अच्छी बात है। एक पंक्ति दी उन्होंने कि जई है बन बिगड़िना बाधिता बारिद की, बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की। उन्होंने कहा देखिए, अगर पानी की एक बूंद है हम, और जो परमात्मा है वो मतलब कई सारे आत्माओं का समूह है, तो अगर हम उनमें विलीन हो गए तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पानी की एक बूंद को समंदर में फेंक दिया जाए तो लोग बूंद नहीं कहेंगे, उसे समंदर कहेंगे। लेकिन अगर वो पानी की बूंद एक अलग से है तो उसका एक एग्जिस्टेंस है, उसका एक अस्तित्व है। तो उन्होंने कहा भी हम कृष्ण के वियोग में हैं तो हम विरह वाली गोपिकाएं हैं, और अगर हम कहीं उधर निकल गए जहां आप बता रहे हैं तो हमारा अपना अस्तित्व खो जाएगा। तो बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। जी हाँ, हमारे साथ वायुनंदन द्विवेदी जी हैं, प्रणाम करते हैं आपको। मैं नाइजीरिया से आपको सुनता हूँ। अरे वाह, क्या खुशकिस्मती है हमारी कि आप वहाँ से सुन रहे हैं, और आप बहुत अच्छा बोलते हैं जी। नहीं, बस आप अच्छा सुन लेते हैं, और रवि जी का धन्यवाद दे दिया है जी। जितने भी लोग गणेश जुड़े हैं सभी को प्रणाम। ये गज़ल सच दिल को छू कर गुजरती है जी, सच में ज़्यादा चाहना भी नुकसानदायक होता है जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ए जी गार्डनर अंग्रेजी साहित्य के मतलब अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते उन्होंने लिखा कि अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ने कि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता और दया की भी अपनी सीमाएं होती हैं, और अगर उस सीमा को छोड़ करके आप दया करेंगे तो नुकसान आपका।

क्योंकि जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना करना होगा, जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना करना होगा। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा। क्षमा धर्म है, क्षमा करना चाहिए लेकिन किसको? क्षमा धर्म है लेकिन किसको? साधु सज्जन सेवक जन को क्षमा करना चाहिए, लेकिन किसको? साधु को, सज्जन को, सेवक को। क्षमा धर्म है लेकिन किसको? साधु सज्जन सेवक जन को। अगर जयद्रथ को छोड़ोगे अभिमन्यु को मरना होगा। तो सबको छोड़ने के लायक नहीं, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो मतलब ऐसा होता है, यह मनीष पीएचडी जी मेरे साथ हैं। सर नमस्ते जी। हाँ नमस्कार आपको भी, और पिंटू जी यूपीएससी लवर है। भाई क्या बात है, ईश्वर करे आज आप लवर हैं, कल आप यूपीएससी क्रैक करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आइए अब ले चलते हैं फिर आपको एक बार बहुत ही प्यारी सी गज़ल की ओर। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि ऑप्शन मत लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आसे के प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहारे गज़ल में ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेशली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार। फिलहाल चलते चलते ये प्यारी सी गज़ल।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: हेलो आरजे सिंपल, कैसे हो?
2: हेलो आरजे बीना, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
1: ठंडी बहुत है। मेरी आवाज से ही लग रहा होगा ना कि मैं बहुत खुश सी हूँ। एंड खुश होने के पीछे जानते हो क्या है कारण है?
2: क्या?
1: मैं जंगल सफारी करके आ रही हूँ। यू नो कि जंगल जहाँ पेड़, हवाएं और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डाइवर्सिटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, जहाँ पेड़ पौधे जानवर सब अलग अलग तरह के और अपनी आजादी से रह रहे होते हैं ना।
2: वाओ, इतनी ही आजादी से तो मैं भी रह रही हूँ, लेकिन एक आजादी जो चाहिए मुझे अभी वो पहाड़ों पे जाने की। जैसे आप जंगल के लिए एकदम से पैशनेट हो ना, वैसे ही मैं पहाड़ों पे जाने के लिए एकदम से पैशनेट रहती हूँ, लेकिन अभी जाने का चांस ही नहीं मिल रहा है।
1: यस, यू आर राइट सिंपल। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कि जब नेचर की बात होती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो,
2: चाहे
1: नदियां
2: हो,
1: हम हमेशा से अफेक्शनेट हो जाते हैं। एक अलग ही सा नाता है हमारा नेचर से, नेचर के साथ, और शायद वो नाता हमें आपस में भी फील होता है, ह्यूमन ह्यूमन का। ह्यूमन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर,
2: या ऑब्वियसली।
1: एंड इस नेचर को फील करते हुए काश ऐसा होता कि हम भी पहाड़ों पे रह रहे होते, जंगलों में ही रह रहे होते।
2: हाँ, लकड़ी का घर होता, वुडन हाउस होता, और खास तौर पे वो जो पेड़ों पे घर बने नहीं होते, एक छोटा सा कमरा,
1: ट्री हाउस।
2: यस,
1: इट साउंड्स गुड। और वो बचपन के जो सुनहरे सपने होते थे ना कि पेड़ पे चल के घर बनाएंगे, और वो ट्री हाउस हमको बहुत अच्छा लगता था। बट रियली में हम कहाँ हैं यार, कभी नहीं पहुंच सकते जंगलों में। और अर्थी सिंपल, आपको पता है कि अगर हम जंगलों में रहते तो लोग हमें क्या कहते?
2: दैट जनजाति टाइप?
1: Yes.
2: या फिर कोई आदिवासी?
1: हाँ, हम जनजातीय जरूर होते, लेकिन हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हम अफेक्शनेट होते। क्यों आरजे सिंपल?
2: बिल्कुल, उतना ही प्यार, उतना ज्यादा लगाव, और उतना ही फीलिंग्स को समझना,
1: और एक दूसरे की वैल्यूज को केयर करना।
2: वाओ, ऐसे ही एक इंडोनेशिया की जनजाति है टोराजा, वहाँ पे स्ट्रेंजेस्ट ड्रेथ रिचुअल्स होते हैं, क्या आपको पता है?
1: हाँ, इस जनजाति के बारे में मैंने भी सुना है, जिसमें लोग मरते तो हैं शायद, लेकिन वो शायद सोल उनकी जाती है, बट उनका जो शरीर है वो अभी भी दुनिया में रहता है, शायद ऐसा कुछ।
2: हाँ बिल्कुल ऐसा ही, और वो लोग उनको मरने का टाइटल नहीं देते हैं, वो लोग उनको टाइटल देते हैं बीमार होने का।
1: ओह माय गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मतलब शॉकिंग सा मुझे लग रहा है कि इंसान मर जा रहा है, लेकिन उसे ये कहा जा रहा है कि वो बीमार है। वैसे दुनिया के हर कोने में इंसान एक ही सवाल से भागता है आरजे सिंपल, वो है मौत का सवाल।
2: बिल्कुल,
1: कोई उसे विज्ञान में छुपाता है, कोई धर्म में, तो कोई डर में।
2: और कहीं मौत का आखिरी सच माना गया, कहीं उसे भगवान का फैसला कहा गया, और कहीं उसे एक लंबी यात्रा, मीन्स लॉन्ग जर्नी।
1: यस, जस्ट इमेजिन कि अगर किसी समाज के लिए मौत कोई अंत ही ना हो,
2: अगर मौत सिर्फ एक पड़ाव हो जहाँ इंसान रुकता है, चलता नहीं।
1: बिल्कुल, और आज हम आपको किसी डरावनी कहानी में नहीं ले जा रहे, हम आपको एक आईना दिखाने जा रहे हैं जिसमें दुनिया ने टोराजा जनजाति को देखा, जज किया, समझा, और कई बार गलत भी समझा।
2: और ये कहानी उस समाज की है जहाँ मौत को छुपाया नहीं जाता, उसे घर में जगह दी जाती है, जैसे हम अपनों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, और जो जीवित होते हैं उनको देते हैं।
1: यस, और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया इस जनजाति को देखकर एक साथ हैरान भी हो जाती है, और अनयूजुअल भी। इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। किसी किसी की तो मुझे लगता है कि जो रिएक्शंस है वो इतने शॉकिंग होते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने भूत देख लिया हो।
2: ऑब्वियसली बहुत हॉरिबल होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है ये कुछ लोगों के लिए, जो हम लोगों की तरह बहुत ही ज्यादा दिल के प्यारे होते हैं।
1: यस,
2: तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टोराजा है कौन,
1: और ये जनजाति कैसे इतनी स्पेशल बनी, और आखिर वो ये रिचुअल्स करते कैसे हैं?
2: बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अगर ऐसे सोचने समझने बैठ जाएंगे तो।
1: टोराजा जनजाति इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी द्वीप के पहाड़ी इलाकों में रहती है। हरे भरे पहाड़, घुमावदार रास्ते और लकड़ी के ऊंचे घर, जिन्हें वे टोंगकोनन कहते हैं।
2: और ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, ये वंश, पहचान और आत्मा का सेंटर होता है।
1: यस, आत्मा का सेंटर ढूंढना इतना आसान तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि ढूंढने चलो तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो आत्मा का सेंटर ढूंढना कौन सी बड़ी चीज है। लंबे समय तक ये जनजाति बाहरी दुनिया से कटी रही। शायद इसी वजह से इनके विश्वास आज भी वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले थे।
2: और इन विश्वासों में सबसे गहरा विश्वास जो जुड़ा है वो है मौत से, मींस डेथ।
1: जब मौत को मौत नहीं कहा जाता तो एक अलग ही परिभाषा बनती है। टोराजा समाज में जब किसी की सांस रुकती है, दिल धड़कना बंद करता है, तो उसे मरा हुआ घोषित नहीं किया जाता,
2: उसे कहा जाता है तोमकुला, यानी बीमार।
1: मतलब वह व्यक्ति अभी भी परिवार का हिस्सा है।
2: अच्छा अर्जिबीना, ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन उनके लिए आत्मा अभी घर में होती है?
1: आत्मा तो घर में नहीं होती, लेकिन हाँ शरीर जरूर घर में होता है, और उस शरीर को प्रिजर्व करते हैं वो अपने तरीकों से। पहले के जमाने में एक केमिकल होता था जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं। वैसे इस केमिकल का आज भी यूज किया जा रहा है बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे एनिमल्स के ऑर्गन, ह्यूमन के ऑर्गन, और ना जाने क्या क्या।
2: लेकिन उस टाइम पे ये केमिकल्स कैसे मिलते थे?
1: ठीक उसी तरह जैसे पहले कार्बन डेटिंग होती थी और आज भी होती है। ये केमिकल्स बहुत सारी चीजों से निकाले जाते हैं, और फॉर्मेलिन का प्रयोग करके वो पूरे शरीर को प्रिजर्व कर देते थे। इससे जो डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर है, यानी कि सड़न क्रिया, ये रुक जाती है, और शरीर जो है उसे आप काफी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी और फ्रेश शरीर बना रहेगा।
2: अच्छा तो यहीं से शुरू होती है वो जिंदगी जो हमें बहुत ज्यादा हॉरिबल लगती है और उन लोगों के लिए बहुत सारा प्यार होता है
1: और नॉर्मल भी। वैसे आज सिंपल आपने देखा होगा हमारे इंडिया में,
2: हाँ,
1: या और कंट्रीज की भी बात करूं, जब किसी की डेथ होती है तो हम उसे बॉडी बुलाते, वी कॉल इट बॉडी।
2: ये आपने सही कहा,
1: आफ्टर द डेथ। लेकिन जब बात हम करते हैं इस जनजाति की, जहाँ पे एक मृत शरीर को तोमकुला बोलते हैं, जैसा कि आपने बताया बीमार, वो उस शरीर को एक बीमार इंसान की तरह ट्रीट करते हैं जो कि मरा नहीं है, जिंदा है उनके लिए, इमेजिनेशन में बस, और उस पे वो प्रिजर्वेशन का प्रोसीजर करके उसकी केयर करते हैं कि वो शरीर हमारे घर में रहे। सुनने में थोड़ा अलग साउंड जरूर कर रहा है, लेकिन इससे एक चीज तो पता चल रही है कि अफेक्शन बहुत हाई है।
2: अब हम लोग इमेजिन करके देखते हैं मैम कि हम लोग घर में अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं और हमारे घर में एक डेथ बॉडी रखी हुई है और सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, उस डेड बॉडी से हम बात भी कर रहे हैं, बात करने के बाद में फिर हम अपना डेली का काम कर रहे हैं,
1: उसे खाना ऑफर किया जा रहा है, उसकी केयर की जा रही है, उसको समय समय पर उसकी बॉडी पे फॉर्मेलिन लगाया जा रहा है। कितना नॉर्मल लग रहा होगा ना उन फैमिलीज के लिए। और वहीं अगर हमारे घर में एक चूहा भी मर जाता है तो घर में कुछ देर के लिए अशुद्धि हो जाती है ना,
2: कुछ लोग तो गंगा जल भी छिड़कने लगते हैं।
1: यस, पर ये थोड़ा सुनने में जरूर अजीब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग होगा, बहुत अच्छा होगा, और शायद कुछ समय के लिए ही सही, उस इंसान से एकदम से रिश्ता नहीं टूटेगा।
2: आपको पता है तिब्बत में एक रिचुअल है कि वहाँ पे डेड बॉडीज को पहाड़ पे छोड़ के आते हैं और उस डेड बॉडी को चिड़िया चुग चुग के खाती है, और ऐसे ही उनके यहाँ डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता है। एक वो रिचुअल देख लो और एक ये रिचुअल।
1: अच्छा आज सिंपल, हमारे पूरी दुनिया में अर्थ की अगर बात करें, अर्थ पे लाइफ अलग अलग तरह से ओरिजिनेट होती है और अलग अलग तरह से एंड होती है। लाइफ अगर है तो एंड भी है, डेथ भी है,
2: ऑब्वियसली
1: इट्स अ ट्रुथ
2: एंड इट्स अ साइकिल।
1: यस, इट्स अ साइकिल, एंड इसमें किसी भी तरह का कोई हेर फेर या कोई चेंज नहीं हो सकता। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगी आज सिंपल कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद ये दो चीजें होती हैं। साथ तो सभी निभा लेते हैं, लेकिन जिंदगी खत्म होने के बाद हम कितना याद करते हैं ये तो शायद किसी को नहीं मालूम। इनफैक्ट घर का इंसान आज डेथ हो जाती है, कल के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक याद बन के रह जाता है। लेकिन इस जनजाति ने हमें ये मैसेज तो जरूर दे दिया कि लोग एकदम से नहीं जाते, धीरे धीरे जाते।
2: जैसे धीरे धीरे यादें जाती हैं, वैसे ही धीरे धीरे लोग भी जिंदगी से जाते हैं, और इसीलिए टोराजा से मेरा अलग से अटैचमेंट हो चुका है।
1: और इतना ही नहीं, आज सिंपल वो जो डेड बॉडी जो उनके घर में होती है, जिसे वो लोग बीमार के नाम से बुलाते हैं, उसे वो लोग रोज खाना सर्व करते हैं एक प्रतीक के रूप में, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं। और यहाँ तक कि चाव उनकी फेवरेट चीजों को ऑफर करते हैं। जैसे कभी कभी कोई इंसान सिगरेट पीता है तो उसे सिगरेट ला के देंगे, कोई चावल खाता है तो उसे चावल ऑफर करेंगे, उसे मीठा पसंद है तो उसे मीठा ऑफर करेंगे। और इतना ही नहीं, आज सिंपल लोग उनसे बातें भी करते हैं, और जैसे वो सुन रहा हो, जैसे वो सारी चीजें फील कर रहा हो, क्योंकि उनके लिए वो सुन रहा है और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है।
2: हाँ, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ दिन भर का अपना सारा काम करने के बाद में उनके पास आके बैठती है और अपने दिन भर का सारा स्केड्यूल उनसे शेयर करती है, फिर उसके बाद में सोती है। कितना स्ट्रांग बॉन्ड है ना दोनों के बीच में। लेकिन फिर जहन में एक ही सवाल आता है कि उनको घर में रखते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, सारे काम वो करते हैं, सारे प्रोसेस होते रहते हैं, तो उनको दफन कब किया जाता है? दफन किया भी जाता है कि नहीं किया जाता है,
1: या पूरी जिंदगी उनके साथ रहते हैं? ये सवाल आरजे सिंपल आपके जहन में, मेरे जहन में, और मुझे लगता है व्यूअर्स के जहन में भी आ ही रहा होगा, क्योंकि सुनने में थोड़ा सा अजीब है। जब परिवार तैयार होता है, और यहाँ तैयार होने का मतलब है फाइनेंशियली तैयार होना, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जब परिवार तैयार होता है इस बॉडी का, यानी कि इस बीमार शरीर का जो है अंतिम संस्कार किया जाता है।
2: मैंने तो सुना है कि तोराजा में अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा आयोजन होता है।
1: यस, ऑफ कोर्स, ये अंतिम संस्कार एक आयोजन, जैसा आरजे सिंपल आपने कहा, बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ ये आयोजन धूमधाम से मनाया जाता है, लोग सालों तक इसकी तैयारियां करते हैं, पैसे जमा करते हैं। जैसे हमारे देश में शादियों के लिए, मतलब बच्चा पैदा होते ही पैसे जोड़े जाने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पे डेथ के बाद पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उस आयोजन को करने के लिए। यहाँ पे भैंसों की बलि दी जाती है, माना जाता है कि भैंस आत्मा को परलोक ले जाती है।
2: इसका मतलब आप जितने ज्यादा अरेंजमेंट करेंगे, आप जितने ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, आप जितना ज्यादा फाइनेंशियली आयोजन को भव्य करने की कोशिश करेंगे, आपकी समाज में, उस तोराजा समाज में वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, सम्मान आपको ज्यादा मिलेगा।
1: यस, हम लोग में भी देखो, जितना ज्यादा हम लोग शादियों में खर्च करते हैं उतनी हमारी पहचान होती है। जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान बहुत पैसे वाला है, भाई इतना तगड़ा अरेंजमेंट था। ऐसा इस जनजाति में भी है, जितनी ज्यादा भैंसों की बलि दी जाती है, माना जाता है कि उस इंसान ने उतना भव्य अरेंजमेंट किया। और इस आयोजन के बाद क्या आरजे सिंपल, क्या आयोजन तक ही ये जो यात्रा है सीमित रहेगी या उसके बाद भी कुछ होगा?
2: मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा हैं, इसी आयोजन पे कुछ रुकने वाला नहीं है। जैसे मैंने सुना है कि ये तोराजा लोग जमीन में दफन नहीं करते हैं, वे लोग पहाड़ काटते हैं।
1: जी, मैंने भी सुना है कि चट्टानों में कब्रें बनाई जाती, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानों में एक छोटे से कमरे की तरह एक कब्र बनाते हैं, और वो पहाड़ों में, यानी कि बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानों में कब्रें बनाते हैं, और वो कब्रें जो होती है वो एक कमरे के नुमा होती है, और उसी के अंदर जो है उस बॉडी को, उस बीमार शरीर को वहां पे दफन किया जाता है।
2: लेकिन आपको नहीं लगता कि पहाड़ों को भी काटने में बहुत समय लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से बॉडीज को इतने दिन तक वो रखते हैं अपने घर में। पहले पैसों का कलेक्शन करते हैं, पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, चट्टाने काटते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल आयोजन नहीं होता ये अंतिम संस्कार का?
1: मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होगी वो इस आयोजन के लिए कुछ सालों तक इंतजार भी करता होगा। और जब बात हम उस शरीर को दफन करने की करते हैं, तो लाश को चट्टान में बनी कब्र जो होती है उसमें रखा जाता है, और बाहर रखी जाती है लकड़ी की एक मूर्ति जिसे वो ताऊ ताऊ कहते हैं। ये लकड़ी की मूर्ति हमें बताती है कि ये कब्र है वो किसकी है। बेसिकली एक आइडल बना के लकड़ी की मूर्ति का रख दिया जाता है
2: आइडेंटिफिकेशन के लिए
1: कि हाँ भाई ये कब्र किसकी है। और जब मरे हुए लोग लौटेंगे तो वो अपने, मतलब लोगों को पहचान पाएंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है।
2: हाँ, मैंने सुना है कि हर कुछ सालों में तो राजा लोग एक रस्म मनाते हैं जिसका नाम है मनेनी। मनेनी मीन्स जब मरे हुए लौटते हैं, तो क्या वो लोग दफन करने के बाद भी बॉडीज को बाहर निकालते हैं?
1: हाँ, कुछ सालों बाद जो पुरानी कब्रें होती हैं उन्हें खाली कर दिया जाता है और शरीर बाहर निकाले जाते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उनकी फोटो खींची जाती है, परिवार के साथ उन्हें खड़ा किया जाता है। ये ये डरावना नहीं है, ये बिल्कुल प्रेम है।
2: क्यों नहीं डरावना है? अब यहाँ आप देखिए, हम लोग कब्रिस्तान की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। रात के टाइम पे हम अपना रास्ता बदल लेते हैं और ये लोग दफन करने के बाद में उस स्केलेटन को आप निकालते हो बाहर। बाहर निकालने के बाद में मैंने कई वायरल वीडियोस भी देखे हैं तो राजा के भी, वो लोग सिगरेट मुंह में निकालते हैं, चश्मा पहनाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, पार्टी करते हैं, वीडियोस देखते हैं, डांस करते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सीन नहीं हो जाता है?
1: यस, लेकिन जिसकी रस्में हैं वो अपनी रस्मों को पूरा करता है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वियर्ड जरूर है सुनने में कि उस मरे हुए शरीर को कुछ सालों बाद बाहर निकाला जाता है और उसके साथ परिवार वालों का फिर से मिलन होता है। ये उनकी एक प्रथा है और प्रथाएं हमेशा अलग होती हैं।
2: जैसे हम लोग क्या होता है कि कोई शहर से बाहर चला गया तो रक्षाबंधन और होली पे घर आता है, ऐसे फिर इन मरे हुए लोगों को डेथ बॉडीज का वो रीवेलकम करते हैं।
1: यस, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसा कि आपने कहा उनके साथ फोटो खिंचवाई जाती है। और आपको पता है आरजू सिंपल, ये जो चट्टानों में इनकी कब्रें बनती हैं, इन कब्रों के बाहर इनकी फैमिली की फोटोज भी लगाई जाती हैं।
2: क्यों?
1: कई कई तो कब्रें इतनी बड़ी बनाई जाती हैं जिसमें पूरी की पूरी फैमिली को एक साथ डाल दिया जाता है। ऐसी कब्रें भी बनाई जाती हैं जिससे कि पता चले कि इस परिवार के लोग इस कब्र में ही हैं।
2: और जैसे एक फैमिली पूरा घर में रहता है, ऐसे ही पूरी की पूरी फैमिली एक कब्र में है।
1: और आरजे सिंपल, जैसे कि हमने ये बात की कि जो टोराजा जो जनजाति है वो किसी इंसान के मरने के बाद जो कहते हैं ना कि बॉडी को प्रिजर्व करती है काफी समय तक, तो वो जो प्रिजर्वेशन का टाइम है वो कभी कभी बहुत लंबा चला जाता है। जानती है क्यों?
2: क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, पैसे इकट्ठा करने में दिक्कत होती है।
1: और कई बार आज सिंपल ऐसा भी होता है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करते करते घर में एक दो और मौतें हो जाती हैं।
2: oh
1: और एक साथ
2: God.
1: घर में दो दो तीन तीन डेड बॉडीज को बीमार व्यक्ति की तरह ट्रीट करना, उनका ख्याल रखना, उनके साथ रहना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहते हैं ना कि अपने रिचुअल्स को वो लोग दिल से फॉलो करते हैं और ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है।
2: मैंने सुना है कि तोराजा जनजाति का मानना है कि जब तक सही से विदाई नहीं होगी तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्या ये सही है?
1: बिल्कुल, और मौत एक अंतिम यात्रा नहीं है उनके हिसाब से। आधुनिक दुनिया जो है उसकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, जैसे कि मोबाइल कैमरा और बहुत सारे जो हमारे टूरिस्ट हैं वो उनकी अलग अलग फुसफुसाहट रहती है कि कैसी जनजाति है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वैसा नहीं करना चाहिए। इस संस्कृति को ग्लोबल बना दिया गया है, लोगों तक पहुंचा दिया गया है, लोग इसका मजाक उड़ाने लगे हैं। पर सवाल ये है, क्या परंपरा इन सब चीजों से बदली? तो आंसर है नहीं।
2: क्यों आर्ट सिंपल? शायद कुछ हद तक, क्योंकि आजकल डेड बॉडीज को सेफ रखने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और कई परिवार बॉडीज को घर में कम समय रखते हैं।
1: लेकिन आत्मा वाला विश्वास आज भी जिंदा है। लोग थोड़ा सा परंपरा को कम कर चुके हैं, कम मतलब कि बहुत ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रखते, लेकिन ये जो परंपरा है ये आज भी वहाँ पे बरकरार है। नई जो पीढ़ियां हैं वो अपनी ही जो कहते हैं ना कि पीढ़ी से सवाल करती हैं, लेकिन पूरी तरह इन परंपराओं को बदला नहीं गया है, यानी कि आत्मा को धीरे धीरे विदय किया जा रहा है।
2: हमने अपना रिएक्शन तो जान लिया, हमने तो राजा के नई जेनरेशन का भी रिएक्शन जान लिया, और हम लोग तो पब्लिक रिएक्शन से भी अवगत हैं ही। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जो डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में और ग्लोबल कवरेज की गई है, क्या ये 100% सही है?
1: अब ग्लोबल कवरेज की बात करें तो हर इंसान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम एक्सप्लोर करें, दुनिया को जाने। अभी विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या है? विज्ञान हर जगह चीजों को डिस्कवर करता है, जो चीजें अंडर कवर हैं उनका कवर हटा के उनके अंदर छुपा जो विज्ञान है वो निकालता है। और कहीं ना कहीं यहाँ भी एक विज्ञान है, कई समय तक बॉडीज को अगर वो रख रहे हैं, हो सकता है उन बॉडीज से आने वाले समय में उस समय की जो प्रॉब्लम थी उससे लड़ने की जो उनकी क्षमता थी उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ये एक विज्ञान के लिए एक बड़ा एक क्लू हो सकता है कि उस समय लोगों की बॉडी कैसी थी, कैसे वो सस्टेन कर सकते हैं। तो विज्ञान के लिए बॉडी की प्रिजर्वेशन हमेशा से सही रही है, लेकिन जब दुनिया के बात करते हैं तो दुनिया इस चीज को थोड़ा सा वियर्ड तरीके से देखती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और वो जहां तक मुझे लगता है कि कर पाना सबके लिए मुश्किल है, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने रिचुअल्स की तो हम बहुत सपोर्ट करके कहते हैं कि हमारा रिचुअल ऐसा है, हम ऐसे करते हैं। जैसे हमारे रिचुअल्स के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी परंपराओं के लिए हमारी सोच है, वैसे ही मुझे लगता है हर किसी की परंपरा के लिए हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट का कॉर्नर होना चाहिए। वी डोंट हैव टू डिसओबे देयर रिचुअल्स। हो सकता है थोड़ा वियर्ड हो, लेकिन उनका वियर्ड होना ही उनकी पहचान है। क्यों आर जे सिंपल?
2: जी हाँ, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस के बाद में, इतनी सारी बातों के बाद में मेरे दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि तो राजा की जैसे और भी कोई जनजातियां हैं क्या? कोई और भी समाज ऐसे अंतिम संस्कार करता है क्या, या फिर उनके अलग डेथ रिचुअल्स हैं क्या?
1: बहुत सारे। हम मौत के कई सारे तरीके मतलब देख चुके हैं। लोग अलग अलग तरीके से मरते हैं और उनके जो कहते हैं ना कि उनके अंतिम संस्कार करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कहीं पे दफनाया जा रहा है, कहीं पे जलाया जा रहा है, और कहीं पे उन्हें मिट्टी दी जा रही है। अलग अलग तरीके हैं। कहीं कहीं हम ताबूत में डाल के रखते हैं। और ये माना जाता है कि शरीर जो है वो आखिरी दान है, और ऐसा कई जगह किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम आरजे सिंपल अपना थोड़ा सा, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी बताया था, रुक करें तिब्बत की ओर। तिब्बत में शव को पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, पहाड़ों पे रख दिया जाता है शव को, और वो जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उस शव को खाते हैं। वहां पे उनकी ये विचारधारा है कि अगर शव कोई इंसान मर गया है तो वो किसी का खाना बन जाए और इससे कई लोगों का पेट भर जाए। हम उसको जला देंगे तो वो एक वेस्ट होगा, और अगर हम उस शव को पहाड़ों पे रख देंगे तो बहुत सारे जानवर उसे खा के शायद उसे दुआएं देंगे।
2: ऐसे ही मेडागास्कर में भी कुछ है। मुझे अच्छे से वहाँ की स्टोरी नहीं पता, लेकिन वहाँ भी अंतिम संस्कार के टाइम पर शोक नहीं, उत्सव मनाया जाता है एकदम तो राजा जनजाति की तरह,
1: और उस उत्सव को कहते हैं डे ऑफ द डेथ। और हाँ, मैक्सिको में मौत डर नहीं, एक रंग है। और अब थोड़ा वापस आ जाते हैं अपनी कंट्री में, क्यों आरजे सिंपल?
2: बिल्कुल।
1: और हमारे देश में मौत के भी बहुत सारे रंग हैं, बस हमने थोड़ा सा कहते हैं ना कि डर से देखा है उस रंग को। थोड़ा फील करें तो शायद लगेगा कि नहीं, मौत भी एक सुहाना सफर है जिसपे हम सब खुशी से जा सकते हैं। और ऐसा वाराणसी में लोग कहते हैं कि मौत जो है वो
2: मोक्ष का रास्ता है।
1: बिल्कुल। और यादों में हम गीत गुनगुनाते हुए किसी को याद कर सकते हैं। सपोज कोई मर गया है हमारा अपना, तो उसे हम वाराणसी में जाके गीतों के माध्यम से गा के याद कर सकते हैं। क्या बोलते हैं?
2: सही कहा आपने। आज हमने तुराजा की बात की, लेकिन सच ये है कि तुराजा अकेले नहीं है। दुनिया भर में इंसान ने मौत को समझने के लिए अजीब अजीब रास्ते चुने। कहीं लाशों के साथ नाच होता है, कहीं उन्हें आसमान के हवाले किया जाता है, और कहीं उन्हें घर में सुलाया जाता है।
1: हमने आज मौत को डर के चश्मे से नहीं, संस्कृतियों की आंखों से देखा है। और ये आंखें जब संस्कृतियों का जो कहते हैं ना कि आड़ में कोई चीज देखती हैं, तो वो खूबसूरती से भरी हुई होती है। और आज मौत के ऊपर से जो डर का साया था, मुझे लगता है वो हट चुका है।
2: और शायद यही सबसे मुश्किल काम है, बिना जज किए समझना, क्योंकि हो सकता है जो हमें अजीब लगे वही किसी और के लिए सबसे पवित्र चीज हो, और जो हमें सामान्य लगे, एकदम नॉर्मल लगे, वही किसी और के लिए अमानवीय हो जाए।
1: बिल्कुल। हमने इतने सारे रिचुअल्स को समझा, लेकिन अगर हम अपने रिचुअल्स के साथ उन रिचुअल्स की तुलना करें तो हमें वो रिचुअल्स थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन उनके लिए हमारे रिचुअल्स कैसे लगेंगे? शायद बहुत ही वाहियात। और बस इसे एक ही पैमाने पे देखा जाए कि रिचुअल्स जैसे भी हों, जिसके भी हों, वो उसके लिए खास हैं, और हमारे जैसे हमारे लिए खास हैं, वैसे उनके रिचुअल्स उनके लिए खास हैं।
2: हाँ, मौत सबकी एक है, लेकिन मैं भी सबसे यही कहना चाहूंगी कि उनके रिचुअल्स को उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनके कल्चर को उनको फॉलो करना चाहिए, और जिंदगी में ऐसे ही हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहिए,
1: और जो मौत की हकीकत है उसे आसानी से एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें कमियों को ना ढूंढते हुए हम उसको एक रियलिटी ऑफ लाइफ समझें कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमारा जाना तय है। अगर जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता लिखी जाए तो वो मौत होगी।
2: ना आगे कुछ और ना पीछे कुछ भी, हाँ मृत्यु एक सुंदर कविता है। ना कोई शब्द, ना कोई सरगोशी,
1: निर्वात एक हादसा कविता कि जमीन ना सुख ना दुख, लिखने वाला एक अंतिम रेखा खींचेगा, धैर्यवान होगा काल, परिस्थिति और जगह जहाँ इसे लिखा जाएगा।
2: इसे लिख जाने के बाद शब्द सब अपनी समापन यात्रा पर ठिठके रहेंगे। मौन लिखना चाहेगा मगर ना लिख सकेगा, ना लिख सकेंगे कुछ और गहरा।
1: सन्नाटा होगा शोक गीत, कविता अब महाप्रयाण पर जाएगी और मौत एकदम अलग सी दुनिया में चली जाएगी।
2: आपने आज क्या सीखा ये आप तय करेंगे।
1: मिलेंगे हम लोग अब अपने अगले एपिसोड के साथ। आप तब तक कुछ नया सोचिए और हम भी कुछ नया लेके आते हैं आपको नया एडॉप्ट कराने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। कहीं हल्की मुस्कान, कहीं गहरी तन्हाई, कहीं इश्क की सरगोशी। दोस्तों, वक्त हो चला है आपके अपने वाले शो का, जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी आरजे अनोखी। मोहब्बत एक सफर है, जिसमें मंजिल से ज्यादा रास्तों की खूबसूरती मायने रखती है। कभी इंतजार की धड़कने, कभी चांदनी रातें, और कभी वो लम्हा जब दिल अपना सब कुछ हार जाए। तो आइए चले इस सफर पर भूले बिसरे नगमों के साथ। इश्क में इंतजार सबसे मुश्किल इम्तिहान है, और दिल बेचारा हमेशा यही पूछता रहता है, किसका रास्ता देखे। रास्ता उन यादों का, उन बातों का, उन लोगों का, जिनको हम कहीं पीछे छोड़ाते हैं जिंदगी के सफर में। इश्क की राह में मंजिल मिले ना मिले, पर इंतजार हमेशा मोहब्बत की शान रहा है। कभी कोई आया नहीं, पर दिल कहता शायद वो आएगा। और कैसे आएगा, आइए इस नगमे को सुन के जानते हैं, जिसके बोल हैं, किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई। आवाज किशोरदा की।

हमें अचानक मिल जाइए प्यारी रातें, ये चांदनी, ये चंचल हवाएं, तो हर लम्हा बस मोहब्बत में डूब जाता है, एकदम इस गाने की तरह जिसके बोल हैं, ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। दिल्ली का ठग 1958 में बनी ये मूवी, किशोर दा और आशा भोसले जी की आवाज़ जिसको अपने म्यूज़िक से सजाया था रवि जी ने, लिरिक्स दिए थे इसमें शैलेंद्र जी ने, और ये वो सॉन्ग है जो चार्म भर देता है हर एक दिल में। आइए इसका आनंद उठाते हैं।

अच्छा दोस्तों, आपने कभी प्यार भरा दिल देखा है? अगर नहीं देखा है तो अगला गाना बस वही दिल आपको दिखाने वाला है। जब हम प्यार में थोड़े पागल होते हैं, थोड़े से बावले दिखते हैं और कभी कभी दिल समंदर बन जाता है और उसकी गहराइयों से बस एक ही आवाज़ आती है, प्यार की। और मन समंदर की तरह बेचैन हो उठता है, उसकी हर लहर बस एक ही पुकार लाती है, क्या? प्यार का राग सुनो रे। सुनेंगे इस गाने के माध्यम से।

भूले बिसरे नगमों में अब जो अगला नगमा मैं आपको सुनवाने वाली हूँ वो उस हकीकत को बयां करने वाला है जो हर प्यार करने वाले की हकीकत बन जाता है, जब किसी को देखकर लगता है कि शायद ये हकीकत नहीं है, ये तो कोई ख्वाब है, तो समझ लीजिए कि दिल पूरी तरह हार चुके हैं आप। जब कोई सामने होता है और हमें यकीन ही ना हो कि ये हकीकत है या सपना, दिल हार बैठते हैं और बस कोशिश करते हैं कि कुछ अल्फाज हम उस तक पहुंचा सकें अपने जज्बातों का। फिर एक नगमा जहन में तो आपके कौंधता ही होगा ना। अगर आपने ये नगमा अब तक नहीं सुना है तो आइए हम सुनाते हैं आपको ये वाला सॉन्ग, जिसके बोल हैं, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। तीन देवियां मूवी 1965 में रिलीज हुई। इसके इस उम्दा सॉन्ग को हम एंजॉय करने वाले हैं आपके अपने वाले शो भूले बिसरे गीत में।

अब ये प्यार भरन जो सिलसिला है वो जब आगे बढ़ता है तो हमारा दिल हर बार यही कहता है मिलने के बाद, जानते हैं क्या, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। मुलाकातें हमेशा छोटी होती हैं लेकिन जुदाई हमेशा लंबी, इसलिए दिल कह उठता है थोड़ी देर और फिर हम ये गाना ज़रूर गुनगुनाते हैं। ज़िंदगी का सफ़र हो या कोई लॉन्ग ड्राइव, जब हम साथ होते हैं और बिछड़ते हैं तो जाते जाते एक बार तो ज़रूर कह के जाते हैं कि अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं।

जब ये नोकझोंक का सफर शुरू होता है, कौन से वाले, हाँ जी, जब रूठना मनाना आ जाता है इस रिश्ते में, किसमें, प्यार के रिश्ते में, फिर बहुत ही प्यारा सा नगमा आपके लिए मैं आज ढूंढ के लाई हूँ, जिसके बोल हैं, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। काला पानी मूवी से देवानंद और मधुबाला जी पर फिल्माया गया, आवाज से इसे सजाया है रफी जी और आशा जी ने, और म्यूजिक दिया है इसमें SD बर्मन जी ने, और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी जी के। इश्क की असली मिठास नोकझोंक में ही होती है, जब कोई रूठे और फिर प्यार से मनाया जाए, फिर तो क्या ही कहने, उस रिश्ते में लग जाते हैं, हाँ जी, पूरे के पूरे जिंदगी को सुकून देने वाले चांद। मोहब्बत का खेल हमेशा नाराजगी और मान जाने से ही तो पूरा होता है, और यही नोकझोंक रिश्तों को और गहरा कर देती है। तो चलिए आनंद लेते हैं इस रिश्ते का, इस नगमे के माध्यम से।

दोस्तों दिल को कौन बांध पाया है, और प्यार में पड़ने के बाद तो ये और भी आवारगी में बढ़ जाता है। ये आवारा ही तो है जो कभी सपनों में भटकता है, कभी हकीकत में, कभी मोहब्बत में तो कभी जज्बातों में, और कभी कभी बेपरवाह बस यूं ही भटकता रहता है। चलिए इस आवारगी का आनंद उठाते हैं अगले नगमे के माध्यम से, जिसके बोल हैं, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। 16 साल मूवी से देवानंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये सॉन्ग। लिरिसिस्ट हैं मजरूह सुल्तानपुरी, म्यूजिक से इसे सजाया है ST बर्मन ने, और आवाज़ से हेमंत कुमार जी ने।

अब हम आपको ले चलेंगे उस नगमे की ओर, जो आपको उस इंसान की याद दिलाएगा जब आप हजारों की भीड़ में होते हैं, हजारों चेहरों में तलाश होती रहती है उस एक चेहरे की, और जब वो मिल जाता है तो बाकी सब फीके लगते हैं। इन शब्दों को पूरी तरह से सजग करेगा, जीवन देगा ये सॉन्ग। हाँ, बहुत प्यारा सॉन्ग है, जिसके बोल हैं, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। हाँ जी, आप ही को कह रही जो इस नगमे का आनंद उठाने वाले हैं। आनंद उठाइए और अपने आप को इस गाने में कहीं तो फिट करके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सफर में भूले बिसरे नगमों के साथ।

अच्छा, आपने एक बात बहुत ही दफा सुनी होगी कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, उनमें छुपा होता है पूरा अफसाना जिसे अल्फाज भी बयान नहीं कर पाते। हाँ, कई दफ़ा जो बातें हम जुबान से नहीं कह पाते वो हमारी आंखें कह जाती हैं। आंखें जब बोलती हैं तो अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं होती। वो पल ही सबसे हसीन होता है जब नज़रें अफसाना कह देती हैं। तो चलिए अगला नगमा इन आँखों के नाम, हाँ जिनके बोल हैं, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना।

तो दोस्तों, मोहब्बत का सफर इन भूले बिसरे नगमों की तरह ही है जो दिल को छू जाता है और वक्त की धूल हटाकर यादों में चमक उठता है। क्योंकि गाने तो पुराने हो सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें हमेशा नहीं रहती हैं। फिर मिलेंगे एक और सफर में। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, लेकिन जाते जाते बतौर तोहफा ये सॉन्ग अपने साथ ज़रूर ले जाइएगा। जिनके बोल हैं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। हाँ जी, बिल्कुल झूठा ही सही। जॉनी मेरा नाम, जो 1970 में आई थी और इसको म्यूजिक से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। चलिए फिर बतौर तोहफा मैं आपको ये सॉन्ग दिए जा रही, और इसके लिए चंद पंक्तियां तो बनती हैं। कभी मोहब्बत जिंदगी भर का साथ नहीं देती, बस एक लम्हा देती है, और वही लम्हा हमेशा यादों में अमर हो जाता है, बिल्कुल इस एवरग्रीन सॉन्ग की तरह। तो सुनते रहिए रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम पर अपने भूले बिसरे नगमे को, और मुझे दीजिए अब इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड के साथ ज़रूर आऊँगी और एक नए सफ़र पर चलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।